0: 6478241485 या फरहान अंसार 6479190645। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
1: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 4166252636। दैट्स 4166252636।
0: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन, 905-232-567। SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पे पेवे। अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने प्यार

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम बट कराही की नई लोकेशन जो पिकरिंग में है वहाँ पे 6 जून से आपके लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप ज़रूर तशरीफ ले जाइएगा। 820 किंग्स रोड पिकरिंग 9058390002 इनके रबते के नंबर है। और अली भाई कहते हैं कि ऐसा जायका आपने कभी नहीं चखा होगा। और आपके विंडोज़ और डोर्स अगर लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं तो यही वक्त है तब्दील करवाएं। आज कुछ डाउन पेमेंट दे के चाहे साल के बाद पेमेंट कर दीजिए, सम कंडीशन में अप्लाई। कॉल कर लीजिए आप 416-206-3200। HMR वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट की मीट एंड ग्रीट होने जा रहा है और ये संडे जून 7th को हिल्टन गार्डन मिसागा में होगा। रजिस्टर आप हो सकते हैं, उसके लिए आपको मैं नंबर बता देता हूँ। आप कॉल किया तो आप waterfrontcanada.com पे hmrwaterfront.com पे जाकर रजिस्टर हो जाएं या नजमा मलिक को कॉल कर लें 647-824-1485 या फरहान अफसार 647-919-0645। अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है चाय खाना। जी हाँ, आपको पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने हैं। पीसी लाहौर की शेफ़ हैं, उनका 14 साल से ज़्यादा इसका तजर्बा है। स्पेशली आप कॉल कर लीजिए उनको 905-514-7877। ईद पे बहुत स्पेशल उनके डिशेज़ हैं। तशरीफ़ ले जाइए रिजवे प्लाज़ा में 3920 ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे प्लाज़ा में। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद लिए चलेंगे आपको पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब हमारे साथ होंगे और कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो आज ईद का दिन है लेकिन चलें हमने कहा थोड़ा सा हालात हाज़रा पे भी बात जो है वो कर लें। कॉल्स आपकी हुई तो ज़रूर शामिल करेंगे वगरना बिलाल साहब से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून।
1: पाकिस्तान टोरंटो की पूरी टीम और स्पॉन्सर्स की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक।
2: मुबारक ईद मुबारक।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
3: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदेद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ। मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ लवी डवी शो का ये सफ़र लवी और डवी फीलिंग्स के साथ शुरू हो चुका है। और कल से लेकर अब तक की अगर मौसम की बात करें तो पूरा पूरा साथ देता हुआ, देर से ही सही समर जो है वो बिल्कुल खूबसूरत तरीके से हमारी ज़िंदगी में कुछ महीनों के लिए आ चुका है, ऐसा अभी तो ऐसा फ़िलहाल लग रहा है। उम्मीद है कि आपका थर्सडे अच्छा जाएगा। बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारे पास आपके लिए, आज का दिन अच्छा गुजरे और ये चंद दिन इस महीने के जो दो चार दिन बचे हैं वो आपको बहुत खूबसूरत सी यादें दे के जाएँ और हम जून के महीने में दाखिल हो जाएं। और हमसे रब्ते का नंबर है 416-303-3639।
1: कैसी हैं आप शिवानी?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, टॉप फॉर्म, आप बताइए कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत। और सुबह सुबह आपका बहुत ही खूबसूरत और जानदार किस्म का तारुफ सुन के बहुत अच्छा लगता है, दिल खिल उठता है। और जो अध खिले से गुलाब हैं वो भी आपकी आवाज़ सुनने के मुंतजर ही होते हैं खिलने के लिए, तो वो भी खिल गए होंगे सुबह सुबह। मौसम भी बहुत खूबसूरत है और छनी हुई खूबसूरत सी सुनहरी धूप उतर रही है टोरंटो पे, और सड़कों पर आज मैं देख रहा था ट्रैफिक रवां दवा है, और ऐसी रवां दवा है कि ज़िंदगी की चहल पहल हर एक पहलू में दिखाई देती है, सुनाई देती है। और इसके साथ ही वीकेंड हैज फाइनली लैंडेड, सो आई ऑलवेज से इजी पीजी लेमन स्क्वीज।
0: आमिर की आवाज की तरह अपनी लाइफ में भी सेंसेशन बनाए रखिए, यू नो यू नेवर नो कि अगले पल क्या हो जाए, है ना?
1: बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जिंदगी डाइवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, तनवों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे एक ही तरह का खाना बार बार हम नहीं खा सकते, एक ही तरह के कपड़े मेरी तरह लोग ज़्यादा नहीं पहन सकते इसी तरह हर चीज़ में, हर पहलू में, हर काम में, हर सरगर्मी में, हर एक्टिविटी में हम और आप, हम सब डाइवर्सिटी चाहते हैं, तनव चाहते हैं, डिफरेंस चाहते हैं, फ़र्क चाहते हैं, और ये फ़र्क ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है, चेंज।
0: जी
1: कहते हैं वन थिंग इज कॉन्स्टेंट, एक चीज कॉन्स्टेंट है, एक चीज मुस्तकिल है, एक चीज मुसलसल रहेगी, हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहेगी, और वो तब्दीली है। याद रखिए, गुजरते हुए पलों के साथ साथ, गुजरते हुए वक्त के साथ साथ हमें और आपको तब्दील होते रहना है। लोगों को तब्दील करें ना करें वो आपके बस में, आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन अपने आप को तब्दील करना, अपने आप को बदलना बहरहाल आपके इख्तियार में रहता है। चेंज कीजिए, और चेंज करना हमेशा बहुत ज़रूरी रहता है। एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस फाइन मॉर्निंग। दिस इज अनदर चेंज राइट इन द मिडल ऑफ इट।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: साहब, हर कोई कारोबार करने की ख्वाहिश रखता है, उसको तमन्ना है कि कारोबार शुरू हो, लेकिन इस कारोबार के शुरू करने से पहले के बहुत से मराहल हैं और उन्हीं मरहलों में से एक मरहला फाइनेंशियल अरेंजमेंट का है कि पैसा कहाँ से आएगा। भाई, बिजनेस को फाइनेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना पैसा चाहिए होगा, कितना टाइम फ्रेम होगा उसके लिए, इस हवाले से बैंक्स क्या हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है, लोन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ये तो एक कंपोनेंट हो गया कारोबार का। दूसरा पहलू, दूसरा हवाला, दूसरा कंपोनेंट ये है कि जब बिजनेस चल निकलता है तो कभी ऐसा टाइम आता है कि चलते हुए कारोबार में आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कहीं से पेमेंट आ रही है और कहीं आपको पेमेंट देनी है, और इस बीच में मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, साल का गैप है, तो वो कैसे कवर होगा। ये बात, ये मामला वही लोग जानते हैं जो इस वक्त बिजनेस चला रहे हैं। तो साहब, आपको बता दें कि आपने बिजनेस करने का प्लान किया है और आपको पता नहीं फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहां से कराएं, पैसे का अरेंजमेंट कहां से कराएं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, कमर्शियल लोन या बिजनेस लोन की जरूरत पड़ गई है, तब भी एक नाम ऐसा है, आजमाया हुआ है, परखा हुआ है, जाना हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ट्राइड एंड टेस्टेड कहते हैं। अगर आप उंगलियों की पोरों पर गिने चंद नाम पूरे ओंटारियो में, तो एक नाम इनका भी होगा, द मोस्ट रिप्यूटेड एंड द मोस्ट रेकग्नाइज्ड मोर्गेज ब्रोकर ऑफ ओंटारियो, वन एंड ओनली राजीव तलवार जी। वेलकम करते हैं सर आपको।
8: थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? मैं सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारकबाद दे दूं। खैर मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली, मेरी टीम की तरफ से, आप सबको, आपके सबके परिवारों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। बात करेंगे कमर्शियल लोन्स के हवाले से, चलते हुए कारोबार के हवाले से कि उसे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कारोबार करने से पहले जाहिर है बैंक से पैसा लेना पड़ता है और तभी कारोबार मुमकिन होता है। आप कैसे हेल्प करते हैं, हाउ डू यू हेल्प?
8: देखिए आमिर भाई, आई एम इन दिस बिजनेस ऑफ मोर्गेज ब्रोकरिंग फॉर ऑलमोस्ट 23-24 years अप्रॉक्सिमेटली. हर तरह की रेजिडेंशियल मोर्गेज के हम माहिर हैं और पिछले 24-25 सालों से कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं. लेकिन कमर्शियल की अगर आप बात करें तो यस, वी डू ऑल काइंड्स ऑफ कमर्शियल मोर्गेजेस. किसी भी तरह की ऑन्टेरियो में वो कमर्शियल मोर्गेज हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो रीफाइनेंस करना हो. लेट्स से आई गिव यू, अगर आप प्लाजा है आपके पास या लेना चाहते हैं, या गैस स्टेशन हो, या रेजिडेंशियल मल्टीप्लेक्सेस हैं जिसमें चार से ज्यादा यूनिट होते हैं, या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टीज हो, उसके अलावा अगर आप कोई वेयर हाउस खरीद रहे हैं या है या उसको रीफाइनेंस करना है, स्मॉल गोल्फ कोर्सेस, फैक्ट्रीज, बैंक्वेट हॉल्स, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट इज अ कमर्शियल. आप रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं, आपको टिम होटल्स या क्विजनोज या मैकडोनल्ड लेना है, उसकी फाइनेंसिंग करानी है, एवरीथिंग दैट, ऑल दीज थिंग्स फॉल इन टू दैट कैटेगरी. हर तरह की करते हैं. इनकी मॉर्गेज रिक्वायरमेंट रेजिडेंशियल से डिफरेंट है, वो आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. बट यस, वी आर डूइंग एवरी काइंड ऑफ कमर्शियल. कितनी भी मुश्किल और कितनी भी इजी डील क्यों ना हो, वी विल डू दैट फॉर यू. उसके अलावा अगर आप कमर्शियल में जाएं, और भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं कमर्शियल मॉर्गेजेस के आमिर भाई, जैसे लोन्स हैं. गवर्नमेंट के इतने सारे लोन्स हैं, बैंक्स के इतने सारे लोन्स हैं जिनमें घर की रिक्वायरमेंट नहीं है
1: जी.
8: घर है या नहीं है, क्योंकि अगर हम सिक्योर्ड मॉर्गेज कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, तो उसमें घर का होना लाजमी है, उसमें एक्विटी जरूरी है. लेकिन ये जो कमर्शियल मॉर्गेजेस हैं या जो लोन्स हम कर रहे हैं, उसमें घर का कोई दखल अंदाजी नहीं है, है या नहीं है, एक्विटी है या नहीं है, इनकम उसके अंदर से है या नहीं है, वी कैन स्टिल डू दैट. सो कितने सारे लोन्स हैं आज की डेट में, लोगों को कैश फ्लो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों का बजट मैनेज नहीं हो रहा है, मॉर्गेजेस पे नहीं हो पा रही हैं, और मॉर्गेजेस सबको आमिर भाई आज की डेट में मानना पड़ेगा कि हर आदमी को एक अच्छी मॉर्गेज नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही. तो कहां से आएगा मनी, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? सो कमर्शियल मॉर्गेजेस के अलावा ये जो लोन्स हम कर रहे हैं, दे कैन इंप्रूव योर कैश. जैसे कोई ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट है $150,000 की आपको मिल जाती है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, सो यू कैन टॉक टू मी अबाउट दैट ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट.

0: सकते हैं। उसके साथ अगर आप लैंड भी ले रहे हैं, लेट से अगर आप कोई मैकडॉनल्ड या कोई और रेस्टोरेंट लैंड के साथ खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर वो जो 500,000 का लोन है वो 1,000,000 का हो जाता है। और उसके साथ छोटे छोटे और लोन्स भी कंबाइन किए जा सकते हैं, तो उस लोन को और बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए। उसके अलावा बिजनेस एक्सेलरेटर लोन्स हैं, पर्सनल लाइंस ऑफ क्रेडिट्स हैं, इक्विपमेंट लोन है, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं या लगी हुई है उसके अंदर और मशीनरी चाहिए, रेस्टोरेंट में फैक्ट्री मशीनरी चाहिए, उसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन लोन कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लोन, और उसके अलावा ट्रकिंग, अगर आप ट्रक खरीद रहे हैं दैट इज ऑल्सो इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंस की कैटेगरी में आता है, तो ट्रक लोन। सो आई वॉन्ट टू से कि किसी भी तरह का लोन या कमर्शियल मोर्गेज अगर आप देख रहे हैं या आपके पास है और उसको रिफाइनेंस करना है या परचेज करना है, उसकी डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मोर्गेज फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसकी इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉल मी बैक, आई कैन हेल्प यू, वी आर डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 24 years. Take advantage of this thing. Lots and lots of things are happening. It can improve your cash flow in 2 to 3 days. So call me, friends. See what I do for you. Thank you very much.
1: बहुत ही कमाल की बात। मशवरे के लिए फोन जरूर कीजिए आप, क्योंकि एक मशवरा आपकी जिंदगी बदल सकता है, हालात बदल सकता है, आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल हो, क्या सिचुएशन हो, ये सपोर्ट जो आज हासिल है बैंकों की तरफ से, लोन्स की जो फैसिलिटी आज हासिल है, कल हो या ना हो कोई यकीनी तौर पर कह नहीं सकता। तो आज जो मौका है उससे फ़ायदा उठा लीजिए। आपको $500,000 चाहिए कारोबार करने के लिए, 150,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं, वो चाहिए आपको कारोबार के लिए, आपका रनिंग बिजनेस है, इस वक्त चला रहे हैं बिजनेस, हालात ठीक नहीं है, पैसा इजाफी चाहिए बेस्ड ऑन दैट बिजनेस, वो भी मिलने की उम्मीद पूरी है, उसके लिए कॉल करना है आपको राजीव तलवार के इस नंबर पर, ये लीजिए 9059 1001। नंबर दोबारा बता रहे हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल लोन्स, बिजनेस लोन्स, हेयर इज द नंबर टू डायल 9059 1001। राजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू अमित भाई। एक चीज ऐड करूंगा क्लाइंट सुनने वाले कि समटाइम्स वन फाइनेंशियल टॉक कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर, कॉल मी बैक एंड सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू,
1: दैट्स वेरी ट्रू। एक बार की गुफ्तगू, एक बार का मशवरा, एक बार की सलाह और जिंदगी की राहत का सबब 9058191001। थैंक यू वेरी मच
0: जनाब, थैंक यू वेरी मच जी, ईद मुबारक आप सबको, बाय।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
3: लवी डबी शो पर आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बैचेस टाइम टाइम पे आप शुरू करते हैं। चार हफ्ते का ये कोर्स होता है
4: जी।
3: और हर हफ्ते में दो दिन बड़ी कन्वीनियंटली सैटरडे और संडे हम ये क्लासेस रखते हैं, 5 घंटे 1 बजे से 6 बजे तक, जिससे कि कन्वीनियंटली हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। और इतने सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन चुके हैं बड़े ही एक महीने में, जो जीरो नॉलेज रखते थे वो 100% नॉलेज के साथ अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर रहे हैं।
4: बिल्कुल ऐसा ही।
3: ये तो बात थी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस की, उन कंपनीज की, जो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना चाहते हैं।
4: बिल्कुल ऐसा ही।
3: और ये पूरा ग्रुप होता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है और उसको उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अपना कॉन्सेप्ट और जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो उनको प्रमोट करना है वो अपने तरीके से और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो आमिर, कैसे हेल्प करता है इसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स?
4: बिल्कुल जी, आपको बता दें शिवानी कि हम ऑन लोकेशन ट्रेन करते हैं लोगों
3: अच्छा।
4: को एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का कोर्स वो है जो वीकेंड ओनली है, सैटरडे संडे है, जिसको हम चला रहे हैं। कोर्स इज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली। और दूसरा वो कोर्स है जो हम ऑन लोकेशन देते हैं
3: अच्छा।
4: मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, दोनों अतराफ की बाहमी रजामंदी के साथ। यानी जिनको हमने ट्रेन करना है वो दे देंगे दो दिन और हम देखेंगे हमारे पास वो दिन है कि नहीं। दो उसके बाद तय पा जाएगा कि ये दो दिन ट्रेनिंग के होंगे। हम उनकी लोकेशन पे जाएंगे, शर्त सिर्फ ये है कि 8 से 10 लोग होने चाहिए
3: अच्छा।
4: उन्हीं के कॉन्फ्रेंस रूम में, उन्हीं के बोर्ड रूम में 8 से 10 चेयर्स लगा के वहीं पे हम एक महीने के अंदर उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे
3: अच्छा।
4: बजाय इसके कि एक ब्रोकरेज किसी रेडियो, किसी टेलीविजन, किसी डिजिटल मीडिया के प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्ट दे, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सारे स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप कन्वीनियंटली अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग ले लेंगे। इसमें मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मीडिया भी है, मॉडर्न मीडिया भी है। और आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप रियल स्टेट में हैं तो अपने वर्चुअल टूर्स हुए, रील्स हुई, घरों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हुई, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है वीडियो के अंदर, वो कैसे बनानी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पोस्टर कैसे बनाना है, आर्टवर्क कैसे बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, और सबसे बढ़कर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप कैसे क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, प्लान क्या बनाना है, ये सब बताया जाएगा। आप ऑन लोकेशन हमारा ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। नंबर ये मिलाएंगे आप 416-303-3639। पूरे GTA में आप कहीं भी हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपके पास आएंगे हफ्ते में दो दिन, आपको ट्रेन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 के बीच की टाइमिंग होगी
3: जी।
4: नंबर अगेन 416-303-3639।
3: नंबर एक बार फिर से 416-303-3639। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को बुक कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए। स्टे ट्यून्ड।
5: क्या आप सुन रहे हैं?
6: क्या आप सुन रहे हैं?
5: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
6: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
5: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
7: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लवी डवी शो, आप है आमिर और शिवानी के साथ। और आज का भी मौसम बड़ा अच्छा है आमिर, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस वक्त और दोपहर में 20 डिग्रीज के आसपास जाएगा विद टन्स ऑफ सनशाइन। और जब सनशाइन होती है ऐसा लगता है कि लाइफ हमें बुला रही है जीने के लिए, अपने आप को हमें समाने के लिए, हमें ज़िंदगी में समाने के लिए एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रगल्स हैं, ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, वो ऐसे मौसम में और ऐसे सनशाइन में और ऐसी ज़िंदगी में अपनों के साथ गुजर ही जाएंगी। और ऐसे ही जब तक ज़िंदगी है हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे लिए क्या लेकर आया है।
4: बिल्कुल। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट शुरू किया है, मौजू बड़ा खूबसूरत है, तो ये मौसम आपके बाहर निकलने से अच्छा होता है या जब आप घर में ही होती तब भी अच्छा ही रहता है?
3: नहीं, दोनों जगह।
4: अच्छा, दोनों जगह मौसम एक सही रहता है,
3: क्योंकि मौसम को पता है कि जब मैं अंदर होंगी तो खिड़की खोल के उससे बाहर देखूंगी।
4: अच्छा,
3: तो
4: अच्छा,
3: मतलब हाँ। मौसम इज़ वेरी फेयर विद मी।
4: अच्छा, मौसम आपके साथ फेयर है, तो आप मौसम के साथ फेयर हैं, इसको एंजॉय करती हैं, बाहर निकलती हैं ऐसी धूप में?
3: नहीं, आई एम नॉट अ वेरी आउटडोर पर्सन।
4: ओह, नॉट एट ऑल। अच्छा,
3: मुझे बस ऐसा मौसम अच्छा लगता है, लाइक मैं यहाँ से देख रही हूँ।
4: अच्छा, खिड़की से देखना अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो इसलिए जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए एक बहुत फाइनेंशियल बर्डन वाली चीज़ होती है व्हेन वी गो टू मेक्सिको एंड एवरीथिंग। कहते हैं तुम्हें लेके जाना इज एडिशनल, क्योंकि दिस कैरिबियन इज ऑल अबाउट सन, सन बैथ और सन में जाना। एंड आई एम नॉट, आई गो आउट आफ्टर 8 इन द इवनिंग।
4: अच्छा,
3: इन द मॉर्निंग मैं शेड में बैठ के आई जस्ट वॉच देम एंजॉयिंग।
4: अरे वाह, क्या बात है। हर किसी का अपना अंदाज है छुट्टियां मनाने का। कुछ लोग सो के ही मनाते हैं, किसी भी मुल्क में चले जाएंगे बस होटल रूम में जाके सोते रहेंगे।
3: Actually,
4: और कुछ नहीं करते।
3: एक्चुअली आई एम मे बॉर्न, तो जो टोरियंस होते हैं वो एक आलसी वाले लोग होते हैं, कंफर्ट पसंद वाले लोग होते हैं, और जिंदगी में जितना भी मिला उसमें सेटिस्फाई हो गए, मेहनत करते हैं लेकिन कंप्लेंट नहीं करते ज़्यादा। और इसलिए आई गो, मुझे आप कहीं भी ले जाइए, आई लव टू गो, पीपल विल थिंक दैट शी विल एंजॉय।
4: तो मई 1937 में जब आप पैदा हुई तो उस वक्त तो हालात बड़े अलग होते होंगे दुनिया
3: जी। वो क्या हुआ कि जब मैं पैदा हुई ना 37 में, तो उससे उस वक्त बशीर बद्र साहब 2 साल के थे, तो वो 2 साल के थे, तो मैं मतलब
4: अच्छा, 2 साल के थे बशीर बद्र
3: जी, तो मैं अब तक इस बात को लेके प्राउड फील करती हूँ कि मैं मतलब मैं उनके इरा में पैदा हुई। तो लेकिन
4: आपकी मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है शिवानी, आप 37 की हैं, तो मेरा ख्याल है मैं कोई 36.5 का होंगे शायद, यानी 1936 एंड हाफ।
3: तो आप भी उसी वक्त के हैं।
4: हम दो पुरानी रूहें बैठी यहाँ
3: आज, हम ऐसा मुझे फील हो रहा है आज ना, मैं बहुत पुराने दोस्त से मिल रही हूँ, अब तक ये फील नहीं आई। तो आमिर इसी बारे में बात करी थी कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब आज हमें अलविदा कह गए। आज ही के दिन बॉर्न हुए, आज 15 फरवरी 1935 को बॉर्न हुए, आज ही के दिन 28 मई को 2026 को उनका इंतकाल हुआ। 91 ईयर ओल्ड थे वो, और उन्होंने अपनी गज़लों से, शेरों के माध्यम से मोहब्बत को, ज़िंदगी को, सोशल इश्यूज को, और सटायर भी बड़ा अच्छा करते थे।
4: हाँ जी, बिल्कुल।
3: वो अपनी पोइट्री में दुनिया के और आजकल के हालात
4: कमाल का अंदाज था,
3: कमाल का अंदाज था। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर उन्होंने शायरी को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया। कहते हैं ना कि अभी उजाला भरपूर था लेकिन ज़िंदगी की शाम हो गई। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब अपनी यादों का उजाला छोड़कर इस जहाने फ़ानी को अलविदा कह गए। मोहब्बत का वो शायर जिसने ज़िंदगी भर तितली, शहद, रेनबो, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, बादल, बिजली और रोशनी के अशार पढ़े, उन्हें गज़लों में पिरोया गया। कंदीलों वाली पतंगे नफ़रतों के आसमान पर राज कर रही हूँ, बशीर साहब की ज़िंदगी इसी इत्तफाकों से भरी रही। वो 7 साल की उम्र में जब बच्चा अपने आप को भी संभाल नहीं पाता तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। एक बार कॉलेज का टाइम था, उनसे एग्ज़ाम में एक शेर का मतलब पूछा एग्ज़ामिनर ने। इत्तेफाक से वो शेर उन्हीं का लिखा हुआ था।
8: ओ।
3: तो उन्होंने बड़े अंदाज से अपना मतलब समझाया, लिखा उन्होंने ही था, तुमको सब पता था। एग्जामिनर ने कहा कि नहीं गलत है ये, तो इस पर बशीर बरजस साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर ये तो मेरा ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कतई नहीं मान सकता कि तुम नौजवान जो लोग सब सब कैंटीन में बैठे हैं तुम इतनी डीप मीनिंग का शेर लिख सकते हो। तो 7 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था, फिर उन्होंने जॉब की, उसको छोड़ा, प्रोफेशन अपनाया।
4: शिवानी आज से
3: जी
4: तकरीबन 25 साल पहले किसी एक खुश गुफ्तार, खुश इल्हान, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश इल्हान, खूबसूरत सी लड़की ने मुझे एक किताब दी थी।
3: अच्छा।
4: और ये कहा था कि ये छुपी हुई पिन्हा पोशीदा किताब है, इसको अपने घर जाके खोलना, इसके सरवर्क को देखना, इसकी पहली गजल पढ़ना, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि जब ये गजल तुम पढ़ रहे हो तो शाम के साए ढल रहे हो। ये छोटी छोटी बदलियों की ओट में छुपता हुआ सूरज अपनी तमाजत, अपनी हिद्दत, अपनी शिद्दत, अपनी गर्मी खो चुका हो, हवा के नीम गर्म से झोंके आ रहे हो और नीम वा खिड़की के करीब बैठे तुम मुझे याद करते हुए इस किताब का पहला सफा पढ़ रहे हो
3: और सोच रहे हो कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे लिए ये शेर पढ़ो इस किताब में से, है ना?
4: मेरे पास इसी किताब की 2 कॉपीज हैं। वक्त तय कर लो, उसी वक्त तुम भी यही करोगे, मैं भी यही करूँगी।
3: क्या बात है।
4: किताब की 1 कॉपी मेरे हाथ में होगी, 2 कॉपी तुम्हारे पास होगी और हम दोनों बैठे इसी शायर की ये पहली गजल पढ़ रहे हो।
3: क्या बात है।
4: और वो गजल थी, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
3: क्या?
4: कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है,
3: फासले से
4: जरा फासले से मिला करो।
3: क्या बात है।
4: यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
3: क्या
4: बशीर,
3: क्या
4: बदर,
3: क्या श्रद्धांजलि दी आपने आमिर। ये चराग बेनजर है, ये सितारा बेजबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। कभी पा के तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियाँ है।
8: वाह।
3: मैं इसी गुमा में बरसों बड़ा मुतमई रहा हूँ, तेरा जिस्म बेतगैर मेरा प्यार जाविदा है। उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है।

0: साहब, सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही सादा, सीधा और आसान है कि सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि सादगी इख्तियार करें अपने मामलात में, खुराक के एतबार से और दवाई को इस्तेमाल करने के एतबार से सादगी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और वो तरीका इलाज जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, फौरी हो, तुरंत हो, स्विफ्ट हो, इमीडिएट हो, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अगर आप ये कहें कि डेडिकेट कर दिया इस प्रोफेशन के लिए, इस प्रोफेशन के लिए दिन रात जागे हैं, मेहनत की है, काम किया है, रिसर्च की है, तहकीक की है, बैक होम इंडिया से यहाँ कनाडा से सर्टिफाइड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, कमाल के इंडिविजुअल हैं और कम्युनिटी के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं, उनकी सेहत के हवाले से कीमती मशवरे और फौरी तुरंत इलाज इसका है वादा, शामिल हैं कुलदीप जी। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: नमस्कार, आदाब एंड गुड मॉर्निंग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम किस सिंड्रोम पे बात करने वाले हैं कुलदीप जी, हमारे सुनने वालों को बताइए कि होम्योपैथी इसके बारे में क्या कहता है।
1: आमिर जी, हमारी बहनों माताओं को जो है बहुत प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके बारे में हम आज की जानकारी देंगे। तो मोस्ट ऑफ जो है जो माताओं बहने हमारी है, ठीक है, उनको जो है मोस्टली हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें कई सी बीमारियां होती हैं, वो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, आपने कह दिया कि डेडिकेटेड, हमको देखिए लगभग 50 ईयर इस फील्ड में हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और हम जो है, और अब 50 साल पहले की, मतलब कि 45 साल पहले की बात करते हैं, तो हमने इसमें डिग्री की है, पढ़ाई की है, और जो भी हमारी एजुकेशन है इक्वल टू जो है फैमिली डॉक्टर के, लगभग जो सब सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाए जाते हैं, उसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, मिडवाइफरी है, गायनेकोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट जो है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है, उसमें जो है हम लोग को जो भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें जो क्या सिम्टम होते हैं, कैसे बीमारी का पता लगता है। तो देखिए, उसमें 95% 99% जो है डॉक्टर को पता होता है क्या बीमारी है, यदि आप जाते हैं डॉक्टर पर, लेकिन उसके जो है उसको डायग्नोस करने के लिए मशीनों को यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए, लेकिन पता होता है उसको, तो इसलिए कोई भी किसी तरह का इशू है, देखिए हम चाहे लकी हैं कि हम यहाँ ब्रैम्पटन में सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की जो है, और यह है पूरी दुनिया से हमारे पेशेंट है आमिर जी, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं आप वहाँ जाएं जरूर ठीक होंगे, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत डेडिकेटेड हैं। डेडिकेटेड कि मतलब कि हम जो चाहते हैं कि हर बंदा हेल्दी हो, सुखी हो, उनका परिवार सुखी हो, तो इसलिए कोई भी किसी तरह का मसला है आपका जो है, आपको पेट का इशू है, कोलाइटिस है, IBS हो गया है, आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, थायराइड, जो आम गोलियां लोग खाते रहते हैं, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अर्थराइटिस है लोग बहुत बड़े, माइग्रेन, हेडेक, एक्जिमा, स्किन के इशू जो है, सराइसिस हो गया, विटिल्गो हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज, और खास करके ऑटिज्म का जरूर बात करेंगे हम जो है, ऑटिज्म पूरी दुनिया से हमारे पास बच्चे हैं, कईयों को जिनको कम प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल मिस आई एम पॉसिबल, ठीक है, ये इसका इसीलिए वर्ड बना है ये, इसलिए कभी भी घबराए नहीं, कोई चिंता नहीं करे, यदि हमारा नंबर नोट करें, केडी होम्योपैथी कुलदीप, केडी होम्योपैथी आप डालेंगे, हमारी वीडियो भी है कई हर जगह पे, टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे, हर जगह जो है केडी होम्योपैथी, हमारे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम लेडीज की बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। इश्यूज कहते हैं हमको, इसमें जो है मोस्टली हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। इसमें ऑस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन, इसमें जो है लेडीज का टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है बॉडी में जो है, इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके एक्नी होगा, वेट गेन होता है, एक्स्ट्रा हेयर आपकी बॉडी पे हो जाते हैं, और पीरियड आपके इरेगुलर होते हैं, और फर्टिलिटी सबसे बड़ी होती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते लेडीज जो है, ये बहुत बड़ा मसला है ये जो है, इस ये प्रॉब्लम जो है। तो हम लोग के पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत बढ़िया दवाई है जो हम लोग आपको आपके जो है हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। और भी कई बीमारियां हैं जैसे एमिनोरिया उसको कहते हैं जिनके बच्चों के कई बार जो है लेडीज के पीरियड रुक जाते हैं कब आ जाते हैं, कभी रुक गए, बिल्कुल रुक गए, तो ये एमिनोरिया कहते हैं। डिसमिनोरिया कहीं पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होते हैं उनको जो है हम लोग डिसमिनोरिया। मेनोरेजिया जिसमें बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, हर 15 दिन पे ब्लीडिंग होती रहती है, एबॉर्शन बार बार हो जाता है लोगों को, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में सिस्ट है, ट्यूमर है आपके यूट्रस में, और लिकोरिया जिसको हम लोग पानी की शिकायत कहते हैं, लिकोरिया लेडीज में बहुत कॉमन है, ये बहुत बीमारी परेशान रहते हैं, और फाइब्रॉइड हो गया आपका यूट्रस में, कोई भी किसी तरह का लेडीज में इशू है, और भी बच्चों का इशू है, मर्दों का इशू है, आप जरूर हमारा नंबर याद रखें, अपने दोस्त मित्रों को दें, जरूर हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा नंबर 6478100055 6478180055 पर कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक 20 मैरिटाइम टोरेबल अवार्ड यूनिट नंबर 2 होम डिपो वाला प्लाजा। जो यदि आपके बेनिफिट है अपने बेनिफिट चेक करें, बेनिफिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 6478100055 6478180055 कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। थैंक यू रमेश जी।
0: यहाँ नंबर है कुलदीप जी का, ये नंबर मिलाइए। होम्योपैथी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं, फौरी तुरंत और आसान विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स इलाज करवाना चाहते हैं, तो नंबर ये मिलाएंगे 6478100055 6478180055। कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
1: थैंक यू।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058 81919-1001. License number 12374.
7: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday,

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: लवी शो पर आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बैचेस टाइम टाइम पे आप शुरू करते हैं
2: जी।
1: चार हफ्ते का ये कोर्स होता है
2: जी।
1: और हर हफ्ते में दो दिन बड़ी कन्वीनियंटली सैटरडे और संडे हम ये क्लासेस रखते हैं, पांच घंटे 1 बजे से 6 बजे तक, जिससे कि कन्वीनियंटली हमारे स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं और इतने सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन चुके हैं बड़े ही एक महीने में, जो जीरो नॉलेज रखते थे वो 100% नॉलेज के साथ अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर रहे हैं।
2: बिल्कुल ऐसा ही।
1: ये तो बात थी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस की, उन कंपनीज की, जो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना चाहते हैं।
2: बिल्कुल ऐसा ही।
1: और ये पूरा ग्रुप होता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है और उसको उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अपना कॉन्सेप्ट और जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो उनको प्रमोट करना है वो अपने तरीके से और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो आमिर, कैसे हेल्प करता है इसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स?
2: बिल्कुल जी, आपको बता दें शिवानी कि हम ऑन लोकेशन ट्रेन करते हैं लोगों को। एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का कोर्स वो है जो वीकेंड ओनली है, सैटरडे संडे है, जिसको हम चला रहे हैं। कोर्स इज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली। और दूसरा वो कोर्स है जो हम ऑन लोकेशन देते हैं।
1: अच्छा।
2: मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, दोनों अतराफ की बाहमी रजामंदी के साथ। यानी जिनको हमने ट्रेन करना है वो दे देंगे दो दिन और हम देखेंगे हमारे पास वो दिन है कि नहीं दो, उसके बाद तय पा जाएगा कि ये दो दिन ट्रेनिंग के होंगे। हम उनकी लोकेशन पे जाएंगे, शर्त सिर्फ ये है कि 8 से 10 लोग होने चाहिए।
1: अच्छा।
2: उन्हीं के कॉन्फ्रेंस रूम में, उन्हीं के बोर्ड रूम में 8 से 10 चेयर्स लगा के वहीं पे हम एक महीने के अंदर उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे।
1: अच्छा।
2: बजाय इसके कि एक ब्रोकरेज किसी रेडियो, किसी टेलीविजन, किसी डिजिटल मीडिया के प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्ट दे, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सारे स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप कन्वीनियंटली अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग ले लेंगे। इसमें मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मीडिया भी है, मॉडर्न मीडिया भी है। और आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप रियल स्टेट में हैं तो अपने वर्चुअल टूर्स हुए, रील्स हुई, घरों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हुई, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है वीडियो के अंदर, वो कैसे बनानी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पोस्टर कैसे बनाना है, आर्टवर्क कैसे बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, और सबसे बढ़कर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप कैसे क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, प्लान क्या बनाना है, ये सब बताया जाएगा। आप ऑन लोकेशन हमारा ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। नंबर ये मिलाएंगे आप 416-303-3639। पूरे GTA में आप कहीं भी हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपके पास आएंगे हफ्ते में दो दिन, आपको ट्रेन करेंगे मंडे टू फ्राइडे, 12 से 5 के बीच की टाइमिंग होगी
1: जी।
2: नंबर अगेन 416-303-3639।
1: नंबर एक बार फिर से 416-303-3639। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को बुक कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए। स्टे ट्यून्ड।
3: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3-5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: मम्मा, why don't you go to work now?
9: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
10: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
9: क्या वो मदद करेंगे?
10: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
11: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
10: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
11: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
1: लवी डेवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639। आमिर, किसी ने एक बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप्स भेजे हैं और हालांकि बहुत सारे इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने ऊपर अभी अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं रिसर्च की बेसिस पे और स्पेशलिस्ट से इस एडवाइस के साथ ही लिखी गई हैं। डे टू डे जो हम कुछ ऐसी चीज़ें हम बड़े आसानी से कर जाते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए, उसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहली चीज़, कोशिश कीजिए कि फ़ोन कोई आप उठाते हैं, किसी का फ़ोन आया, आप फ़ोन रिसीव करते हैं या आप खुद डायल करते हैं, लेफ़्ट ईयर पे रखें। ये हमें नहीं पता था।
2: अच्छा, लेफ्ट ईयर पे?
1: हाँ जी, जैसे आप फ़ोन उठा रहे हैं तो आपकी बातचीत
2: बाएं कान पर लगाएं।
1: मैं देखती हूँ कि हम मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं लेफ़्ट पे ही करती हूँ, मैं राइट से फ़ोन नहीं उठाती।
2: तो फ़ोन महंगा हो या सस्ता हो इससे कोई फ़र्क
1: नहीं
2: पड़ता? अच्छा,
1: कान तो आपका महंगा है ना?
2: कान महंगा है। हाँ,
1: ये कानों की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात हो रही है।
2: अच्छा,
1: तो आंसर द फ़ोन बाय लेफ्ट ईयर। और कहते हैं कि कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो आइडियली, वैसे तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे मैं चाय की बात नहीं मानूंगी, इसकी जगह चाय लिखी होती तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन कभी कभी जब हेल्थ पे आ जाती है तो इंसान मान लेता है। कहते हैं कि आइडियली अगर आप एक स्टैंडर्ड कप की बात करें, हाँ अगर आप छोटे छोटे कप्स में ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि आपको अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर लेते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अदरवाइज़ रेगुलर में 2 कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो हमेशा मानिए, मॉर्निंग में पीजिए, एक आफ्टरनून में या इवनिंग में पीजिए।
2: तो वो मतलब अपने खर्चे पर पीनी है या किसी के खर्चे की भी हो सकती है?
1: देखिए, हाँ ये नहीं लिखा है इसमें, मेरे ख्याल से दूसरे के खर्चे पे नहीं होगी, अपने खर्चे पे। दूसरे पे तो ज्यादा पी लेंगे।
2: अच्छा, वो तो मतलब 4 भी पी सकते हैं अगर कोई पिलाए तो।
1: जी
2: अच्छा,
1: तो लेकिन दूसरा खर्चा रोज रोज तो करेगा नहीं ना, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
2: तो आपको आदत मुफ्त में पड़ जाएगी, 2-4 दिन वो पिलाएगा, बाद में आपको 4 पीने की आदत पड़ जाएगी और आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगा।
1: जी,
2: मैं समझ गया आपकी बात।
1: तीसरी चीज, डू नॉट टेक पिल्स विद कूल वाटर। अगर आप कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर हो, बिल्कुल आइस कोल्ड पानी के साथ आप कोई भी मेडिकेशंस ना लें, कोई भी आप डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड मेडिकेशंस लेते हैं, और 5 या 6 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं रात में, अगर आप मील्स ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ह्यूज मील ना हो.
2: अच्छा, अच्छा.
1: मतलब एक प्रॉपर पूरा एक मील ना हो, वो थोड़ा सा लाइटर मील हो अगर आप 6-7 बजे के बाद खा रहे हैं. कोशिश कीजिए कि आपके पूरे जो हैवी मील है या जो प्रॉपर आपका पेट भरने वाला खाना है वो 5-6 बजे से पहले हो जाए.
2: यानी वो खाना जिसको खाते खाते थक जाते हैं आप खा खा.
1: हाँ, लेकिन अच्छा. फिर भी दिल नहीं भरता है ना. तो और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयली फूड यू कंज्यूम, वो तो हम सभी को पता है. ड्रिंक मोर वाटर इन द मॉर्निंग, लेस एट नाइट, वी ऑल नो दैट. और कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम हेडफोन चार्जर्स.
2: वेरी इम्पॉर्टेंट है.
1: ये लोग ने बहुत ज़्यादा आपके सब वीडियोस भी भेजते हैं कि कितनी बुरी तरीके से आप बर्न वाले केसेस आए हैं इसमें. और ये भी कहा गया है कि डू नॉट यूज़ हेडफोन्स ईयरफोन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कुछ लोग लगाए घूमते रहते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही ब्लूटूथ बन गया है, वो नहीं होना चाहिए. एंड बेस्ट स्लीपिंग टाइम इज़ 10 to 6 AM इन द मॉर्निंग, जो कि आज की लाइफ में बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन ये शायद एंशियंट टाइम से और आज के टाइम
2: 10 to 6. अच्छा, अच्छा.
1: क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो एक मेलाटोनिन होता है, जो हमारी बॉडी एक मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है नेचुरल तरीके से, वो एक स्लीप हार्मोन होता है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ गुड स्लीप. और इसको पूरी करने के लिए, इसकी लैक ऑफ सप्लाई को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स भी मेलाटोनिन के मिलते हैं.
2: शाम को यानी रात को 10 बजे आप सोइए और सुबह 6 बजे जाइए.
1: हाँ, उसमें रात में 10 से सुबह मेरे ख्याल से 10 से 11 बजे से 2 बजे के बीच में, रात में 2-3 घंटे. अच्छा. हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन बनाती है.
2: राइट,
1: तो वो टाइम आप सोने में अगर लगाएंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे. और बाकी बहुत अच्छा है कि व्हेन बैटरी इज डाउन टू द लास्ट बार, कभी कभी होता है ना कि बैटरी बिल्कुल रेड पे आ जाती है, फिर भी हम चार्ज करने से पहले कुछ कॉल्स ले लेते हैं कि मिस ना हो जाए, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है. तो कहते हैं व्हेन बैटरी इज डाउन टू द लास्ट बार, डू नॉट आंसर द फोन एज द रेडिएशन इज 1000 times मोर.
2: ओह, ये तो आपने चौंका दिया मुझे. वाह.
1: या कहते हैं कि जो रेडिएशन है वो 1000 times ज़्यादा होता है, इसलिए जब आखिरी वो हो तो आप कायदे से उसको चार्ज पे लगा दें.
2: और ये बहुत बुरी आदत है. हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब फ़ोन डाई होने वाला होता है, उसकी बैटरी डाई होने वाली होती है, वी टेक मैक्सिमम कॉल्स एट दैट टाइम. बल्कि खुद करते भी हैं बहुत सी कॉल्स कि भाई ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी, अभी के अभी कर लें जितना भी करना है आपने. आपने बहुत अच्छी तरफ निशानदेही की.
1: मैंने तो इतना नोटिस किया है कि अभी पार्टीज़ वार्टीज़ में मैं देखती हूँ कि कुछ लोग आपको बहुत प्रोमिनेंट लोग ज़मीन पर बैठे मिलेंगे कॉर्नर में. अब ढूंढने जाते हैं कि क्या हुआ, पता चलता है कि वहाँ चार्जर लगा था, तो वो चार्जर और मतलब कि जब आधा हो तब नहीं चार्ज करेंगे कि अभी तो बहुत है.
2: जी बिल्कुल ठीक कह रही
1: है ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए.
2: मुझे लगता है कि हम गैर दानिस्ता तौर पर यानी अनडेलिब्रेटली ना चाहते हुए बहुत से ऐसे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, और उसी में ज़िंदगी की छोटी छोटी टेंशन्स लेना भी शामिल है. आप आज के दिन पर गौर कीजिए, एक पैमाना बनाइए कि मुझे कोई भी टेंशन लेने से पहले ये सोचना है कि क्या ये काम, ये मसला, ये दिक्कत इस काबिल है, इतनी बड़ी है कि मैं इसके लिए टेंशन ले लूं.
1: इज इट वर्थ इट.
2: तो इसलिए पहले देखिए वो कितना छोटा सा मामला है जिस पर आप टेंशन ले लेते हैं, कितनी आम सी बात होती है जिस पर हम टेंशन ले लेते हैं. तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए. लॉन्ग रन में इसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो अवॉइड टेंशन्स वेयर एवर You can stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
4: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
7: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
8: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
9: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
10: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
9: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
11: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

जज्बे बड़े बेनाम होते हैं, उनको हजार रिश्तों का नाम देना चाहें आप दे नहीं पाते। कुछ बड़े कोमल से, बड़े अजीज से, बड़े करीब से, बड़े नाजुक से जज्बे जो आपकी उम्र भर का असासा होते हैं, जब ये जज्बे बेदार होते हैं और उन बेदार जज्बों में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाती है जो जज्बों का महवर है, उसी के गिर्द ये जज्बे घूमते हैं, तवाफ करते हैं, और फिर वही तवाफ मोहब्बत की हल्की सी हिद्दत बन जाता है। उस हिद्दत में आप तपते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उसी हिद्दत में आप जीते रहते हैं, उसी शिद्दत में आप मखमूर रहते हैं, और इतना मखमूर कि आपको उसके सिवा किसी रुत किसी मंजर में कुछ और दिखाई नहीं देता। वो इश्क भी होता है, वो मजबूरी भी होती है। इश्क और मजबूरी जब मिल जाते हैं तो फिर आप दिल हार देते हैं। यही जिक्र है इस खूबसूरत से गीत में भी, जहां हम दिल हारते हैं और फिर कुछ भी आपका नहीं रहता, सब उसका हो जाता है जिसके लिए दिल हारा जाता है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Don Platinum, the better grease getter.
7: Sif Mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya apne credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
8: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आमिर किसी ने बड़ा खूबसूरत से कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब है ज़िंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल ही गए कि खुद का दिल कहाँ रखा।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसे में एक तफरी वाला, एकदम केयरलेसनेस वाला, फोकस ऑन ओनली वन थिंग वाला गाना, पंजाबी गाने बहुत जस्टिस करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो वो गाना लगा दीजिए आप।
1: शिवानी, आपकी बात बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात है। हम हिंदी उर्दू म्यूज़िक की बात करते हैं, उसको अगर आप एक तरफ रख दीजिए तो ग्लोबल सेंसेशन की बात करते हैं, यानी बैनुल अक्वामी सतह पर जिन गानों ने या जिन धुनों ने या जिस म्यूज़िक ने या जिस ढोल की थाप ने तहलका मचाया है, वो दरअसल पंजाबी म्यूजिक ही है। अगर आप ग्लोबल स्टेज की बात करें तो उसमें भंगड़े को एक खास अहमियत हासिल है, ढोल को एक खास अहमियत हासिल है। एक तो ये हमारी सकाफत और तहजीब से जुड़े हुए हैं, और दूसरा जो पंजाबी सिंगर्स ने अपने ऊपर वाले नोट्स यानी हायर नोट्स से गाने को जो सेंसेशन दी है, शायद अंग्रेजी के अलावा किसी और जुबान में वो इसको नहीं मिली है। मतलब हायर नोट्स पे अगर आपको गाना चाहिए तो हिंदी में या उर्दू में जो गाने गाए गए हैं वो हायर नोट्स पे निस्बतन कम है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, निस्बतन कम है। और वो जो हैं उन्होंने भी इतना तहलका नहीं मचाया है, उनके हिस्से में इतनी शोहरत नहीं आई है, उनके हिस्से में इतना नाम नहीं आया है, वो जुबानों पे वो इतने नहीं आए हैं जितने के पंजाबी गाने आए हैं। आज यहाँ कॉन्सर्ट करा लें, कनाडा में आप, इंग्लैंड में करा लें, आप जर्मनी में करा लें, आप मलाइशिया में करा लें, आप ऑस्ट्रेलिया में करा लें, पंजाबी का कॉन्सर्ट सुपर हिट, ओवरनाइट सेंसेशन। आप उर्दू हिंदी के किसी गुलूकार को बुलाएं तो बड़े चुनिंदा लोग आएंगे जिनको उर्दू हिंदी लिटरेचर या अदब से कोई दिलचस्पी है। गजल की बात करें या गीत की भी बात कर लीजिए तो वो ऑडियंस बड़ा लिमिटेड है। मैंने साउथ इंडियन कम्युनिटी को पंजाबी गानों पे भंगड़े डालते हुए देखा है।
0: अच्छा?
1: मैंने इटालियंस को देखा है, नॉर्वेजियंस को देखा है, ब्रिटिश को तो देखा ही, और कैनेडियंस को तो आप छोड़ दीजिए बात। यानी पंजाबी म्यूजिक ने हर तरह की कम्युनिटी को साथ में जोड़ दिया है। कहते हैं जैपनीज टेक्नोलॉजी और पंजाबी म्यूजिक दोनों का कोई तोड़ नहीं।
0: देखिए, आपने बहुत एंड में जाके जो अपने संजीदा बात कह के जो छोड़ा है उसी से मैं उठाती हूँ। ये आपने, आप यूके से ताल्लुक़ रखते हैं बहुत वक्त, आपने अपनी लाइफ का बहुत हसीन पल लम्हे प्रोफेशनल तरीके से और वैसे भी यूके में गुजारे हैं। एक लफ्ज़ है जो आप अक्सर यूज़ करते हैं यहाँ भी, हम जब एक दूसरे से यहाँ पे कहते हैं कि आई यूके, यहाँ आप ऑल राइट वर्ड यूके का बोलते हैं ना, यूके का वर्ड है,
1: वेरी कॉमन
0: वर्ड है, यूज़ किया जाता है। तो जगजीत सिंह, पंजाबी म्यूज़िक की बात है तो जगजीत सिंह जी का नाम हमेशा बहुत इज्जत के साथ और बहुत एक बड़ा नाम रहा है, बहुत बड़ा नाम रहा है। उनका गाना लॉन्ग द लिश्कारा मूवी का गाना है, राज बब्बर पर फिल्माया हुआ, जो प्ले कर रही हूँ मैं आपके लिए। वो अपने जब कॉन्सर्ट किया करते थे तो बीच में बहुत अच्छे अच्छे से जोक्स किया करते थे।
1: अच्छा।
0: और उनके जोक्स ऐसे होते थे कि वो उनसे किसी फ्रेंड से रिलेटेड होते थे। मैं अपने दोस्त में घर में गया तो उसको शो ऑफ करने की आदत है, उस पर उन्होंने जोक बना दिया तो फ्रेंड समेत सब लोग हंसते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तकिया कलाम है यूके का, ऑल राइट। तो मैं यूके में, उस दिन यूके में ही कॉन्सर्ट कर रहे थे, कहते मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो दोस्त मिला मुझे, तो मैंने कहा कि सब ठीक है यार, तू सब ठीक है? बोले हाँ सब ऑल राइट। कहते अच्छा, भाभी ठीक हैं? कहते हाँ ऑल राइट है, वो भी सब बच्चे ऑल राइट हैं, और अंकल जी उनको तो ऑल राइट हुए 2 साल हो गए।
1: Yeah, it is very frequently used in day-to-day life. Yes, you're right.
0: और सर, हर circumstances में all right fit हो जाता है।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और शिवानी ये नाम कर रही हैं गीत, तमाम सुनने वालों के। Stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: सर एक शख्सियत जिसने मैंने देखा भी है, मैंने जाना भी है और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का विटनेस भी हूँ, बहुत से लोगों को कारोबार करा के दिया है। याद रखिए, कनाडा को कहा जाता है कि कनाडा इज़ द वेयर हाउस ऑफ अमेरिका। दिस इज़ व्हाट दे कॉल इन बिजनेस सर्कल्स, इन बिजनेस कम्युनिटीज़। तो जो है ही वेयर हाउस, वहाँ आप पैकिंग का काम कर लें, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर लें, वहाँ आप किसी भी तरह का कोई भी कारोबार कर लें, वो चलेगा ही चलेगा। कुछ मुल्कों में जॉब करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और कुछ मुल्क, कुछ देश, कुछ कंट्रीज जॉब्स के लिए, कुछ कारोबार के लिए अच्छी होती हैं। तो ये कनाडा, आप जितना टाइम भी जॉब्स करते रहें, आपकी 20 साल सर्विस है, 25 है, 30 है, 50 है, यू विल एंड अप मेकिंग नथिंग। इधर से पैसा आ रहा होगा, उधर कुछ ग्रोसरी में चला जाएगा, कुछ इंश्योरेंस में चला जाएगा, कुछ गैस डलवाने में चला जाएगा, कुछ बैक होम चला जाएगा, कुछ मोर्टगेज दे देंगे आप, और एंड ऑफ द डे, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, यू विल एंड अप हैविंग नथिंग इन योर पॉकेट्स। कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, ऑल गॉन, डन एंड डस्टेड। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कारोबार कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी डील मिल जाती है, कोई ऐसा काम मिल जाता है, कोई ऐसी प्रमोशन लगा देते हैं आप कारोबार पे, कि 2-3 महीनों में पूरे साल का खर्चा निकल आता है। कारोबार कीजिए, आप तरक्की करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए नहीं करेंगे। और बिजनेस करने के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे करना है, आपने बैंक से क्या बात करनी है, फंडिंग कैसे करवानी है, बिजनेसेस कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्टिंग कौन कौन सी है, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, ड्यू डिलिजेंस तक आपको उस कारोबार की कुंजियां, उसकी चाबियां, उसकी कीज देने तक ही विल बी स्टैंडिंग विद यू, फॉर यू, एवरी स्टेप ऑफ द वे। हसीब शेख, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू सर, को हिंदू भारत में जी, थैंक यू वेरी मच जी।
0: सुना है हसीब भाई, आपने बहुत गोश्त खाया, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे पुराने इस दफा।
1: हाँ जी सर जी, वो रिकॉर्ड तो बहुत टूटे हैं, लेकिन वो ये है कि आपकी कमी बहुत महसूस
0: गोश्त खाने में मुझे तो बंद है शेख साहब, मैं खा नहीं सकता
1: खत्म करने में, वो आपने कहा था ना मैं बोतल लेके आऊंगा
0: हियर इज अ टिपिकल हसीब शेख। सो हसीब भाई, बात हम बिजनेस की कर रहे हैं, कारोबार की कर रहे हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कनाडा क्या बिजनेस करने वालों का मुल्क है या जॉब करने वालों का?
1: बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको ना एक अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन ना एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी देता हूँ,
0: जी।
1: अगर बंदे उसमें फिट है तो वो कामयाब है, अगर नहीं है तो फिर मेरे पास आ जाओ। तो ये है कि हमारे 4 वीक्स होते हैं, कहते हैं 1 वीक ऑफ योर अर्निंग इज फॉर योर यूटिलिटीज एंड इंश्योरेंसेज एंड पेइंग दोज बिल्स, 1 वीक इज फॉर द ग्रोसरी एंड 1 वीक इज फॉर द मॉर्गेज एंड 4th वीक इज योर सेविंग।
0: अरे अरे अरे अरे,
1: वीक की इनकम आपकी सेविंग नहीं है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग,
0: यस,
1: तो राइट करना जरूरी है इससे पहले कि वक्त निकल जाए।
0: बहुत अच्छी बात,
1: उसको राइट करना है तो फिर मेरा नंबर जो है वो आपने नोट करना है, मुझे कॉल करनी है, मेरे पास आना है, अपने सोर्सेस को, अपनी जो सोच है ना उसको लिमिटेड करके ना आए, देखें कि भाई आप कौन सी अपॉर्चुनिटी से बेस्ट
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है हसीब शेख का, ये कह रहे हैं कि आप वीक बाय वीक चल रहे होते हैं, 1 वीक इंश्योरेंस का है, 1 वीक घर की मॉर्गेज का है, 1 वीक घर की ग्रोसरी का है, और कोई आधा वीक ही बचता है फिर उसके बाद सेविंग के हवाले से। अगर आप बात करें इस सर्कल में से निकलें जो 9 to 5 का है, अपना कारोबार कीजिए, अपना काम कीजिए, ये नंबर लीजिए। 6478844449। शेख साहब, बात करते हैं अब बिजनेस बैकग्राउंड की। तो काम, कारोबार, बिजनेस करने के लिए क्या बिजनेस बैकग्राउंड का होना, यहाँ कनेडियन एक्सपीरियंस होना जरूरी है?
1: नहीं नहीं नहीं सर जी, ये कंट्री बाय चॉइस है, कंट्री बाय डिजाइन है कि हम लोग जो आते हैं वहाँ से बैक होम से कोई डॉक्टर आके यहाँ पे ट्रक चला रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: वहाँ से इंजीनियर आके यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं, कोई वहाँ से आके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो ये उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थे। लेकिन ये कंट्री बाय चॉइस है, अगर आपको मिल गया है, जो अपॉर्चुनिटी मिली आप उसमें अपने आपको ईज होके एडजस्ट किया टू रन द अपना हाउस होल्ड। अगर आपको चांस लेना है, अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज को यूटिलाइज करना है, तो डेफिनेटली उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी क्रिएट करती है। हर बंदा चाहता है मैं लेगेसी क्रिएट करूँ, बजाय ये कि आप किसी के लिए काम करके उसकी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने लिए काम करें और अपनी लेगेसी क्रिएट करें। और आपको ये बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं कारोबार नहीं कर सकता। इंसान जो है वो पैदा ही ट्रेड करने के लिए हुआ है, तो इसलिए आप इस तरह से कहें हम आपको भरपूर थोड़ी आपको साथ कॉपरेट करेंगे, जो भी हमसे आपको बेनिफिट हो सकता है हम आपको जरूर देंगे ताकि आप अपना कारोबार शुरू कर सकें।
0: अब जरा बात हो जाए शेख साहब लिस्टिंग की, कई कारोबार अवेलेबल कौन कौन सा है, जरा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए।
1: हाँ जी सर जी, कुछ हमारे पास अपनी लिस्टिंग्स हैं, कुछ मार्केट में लिस्टिंग्स हैं जो इस वक्त हमारे पास अपनी है। हमारे पास नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट है ब्रैम्पटन में, ब्रांडेड रेस्टोरेंट है ब्रैम्पटन में। हमारे पास ये शवरमा का है, बर्गर का है। तो अगर हमारे पास देखा जाए, हमारे पास मेफील्ड प्लाजा जो है, जो कि आपको पता है कि इस वक्त बहुत बूम कर रहा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एक ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के साथ। तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त हमारे पास, कुछ नई लिस्टिंग्स आ रही हैं कन्वीनियंस स्टोर की, डॉलर स्टोर की आ रही हैं। पहले कुछ आई थी आपके प्रोग्राम पे शेयर की थी, वो सारी सोल्ड हो गई है। तो इस वक्त कुछ नई लिस्टिंग आ रही है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जो भी दोस्त देना चाह रहे हैं, अगर मैकेनिकल वर्कशॉप का काम करना चाह रहे हैं, कोई भी काम है, कोई काम बुरा नहीं होता, बस ये होता है कि आपकी नीयत हो। हम आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे, करवा के भी देंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छे प्लान दिए हुए हैं, जिसमें बीडीसी लोन भी है, कनाडा स्मॉल बिजनेस लोन भी है। आप उनके टर्म्स को मीट करते हैं तो बेसिक तीन टर्म होती है, एक होती है कि 35% डाउन पेमेंट, एक होता है कि आपको क्रेडिट स्कोर जो है 750 से ऊपर हो, थर्ड होता है कि आपके पास इक्विटी में कुछ हो। अगर ये आप तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली आप लोन को भी करते हैं। हमारे पास इन हाउस लोन देने वाली पूरी टीम है।
0: अरे वाह,
1: वो आपको भरपूर तरीके से कोऑपरेट करेंगे। आपको सिर्फ नियत करनी है, टाइम बनाना है, आप मेरे पास तशरीफ लाएं। और लवी डोवी शो के रेफरेंस से एक बात एडिशनल कर सकता हूँ कि अगर आपने कुछ और बिजनेस करने का भी सोचा हुआ है तो एक दफा फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप आ सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है, आप उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, आपको कोई भी कारोबार लेना है, कोई भी बिजनेस लेना है, एक बार शेख साहब से बात जरूर कर लें। मशवरे का मकसद और मतलब ये होता है कि आपको जो भी सीक्रेट्स हैं, जो छुपी हुई पिन्हा बातें हैं, जो ट्रेड सीक्रेट्स कह लें, उनका पता चल जाता है। रिसर्च कर लेते हैं आप काम पे, काम करने से पहले अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेते हैं। और मैं शेख साहब के बारे में बता दूं एक बात जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि जब तक शेख साहब किसी भी कारोबार के बारे में खुद मुतमइन नहीं हो जाते, तब तक ये आपको मशवरा नहीं देते वो कारोबार लेने का, ना ही वो कारोबार आपको दिलाते हैं। सो काफ़ी स्टेप्स हैं बिफोर यू बाय द बिजनेस, बिफोर ही gets you the business, he follows many steps. First, he has to like the business. He has to do his due diligence. Then you will do your due diligence. And then there will be a deal done. यहां नंबर दे रहा हूं शेख साहब का, बहुत सी लिस्टिंग्स, डॉलर स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, मेनी बिजनेसेस, चंद ही के बारे में आज बात कर सकते हैं ऑन एयर. इसके अलावा आप शेख साहब से मिलिए जरूर जाके. ये नंबर लीजिए 6479884449. नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 6479884449. शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच.
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज. आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना. बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर. रूहानी कॉलेज, रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं. 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Don Platinum, the better grease getter.
7: मम्मा, why don't you go to work now?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
10: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
11: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट वेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
12: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
13: लवी डवी शो पर आमिर और शिवानी अब लेंगे आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फ्राइडे को होती है आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मौसम एंजॉय कीजिएगा, अपनों के साथ खूबसूरत से लम्हे एंजॉय कीजिए और उन लम्हों में, अपनी यादों में, अपनी दुआओं में हमें शामिल ज़रूर कीजिए। 416-303-3639। किसी भी जानकारी के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया प्रमोशन के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं या फिर शो के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, नंबर यही 416-303-3639। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार।
1: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम इस पैगाम के साथ इख्तिताम को पहुँचता है कि आपकी सारी जहानत, आपकी सारी अक्ल, आपकी सारी शाइस्तगी, आपकी सारी तरबियत, आपकी सारी हैसियत, आपका सारा किरदार, आपका सारा पस मंजर और आपकी सारी खूबियाँ, आपकी सारी खामियाँ सब आपकी ज़ुबान के नीचे छुपी हैं। इसका इस्तेमाल ठीक रखिए। आपके किसी लफ्ज़, किसी हर्फ़ के किसी मानी, किसी सयाक, किसी सबाक, किसी पस मंज़र से कहीं कोई जहर आलूद नश्तर बरामद ना हो जो दिलों को चीर के निकल जाए, इसलिए कोशिश कीजिए एक एक लफ्ज को तोल कर, समझ कर, जान कर, परख कर इस्तेमाल कीजिए। गुफ्तगू अच्छी होगी तो आपकी बात, आपका ख्याल, आपकी सोच, आपकी थॉट्स लोगों के जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अपना ध्यान रखिएगा। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू आई लव यू।

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कार्बरो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कार्बरो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफरोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Oh, ho!

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: अज बोतला खुलण दो, दारू शारू डुलण दो।

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
2: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
1: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
3: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
1: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सोचना तो फिर भी पड़ता ही है और हम सोचते रहते ही हैं। बट फैक्ट ये है कि सोचने के बावजूद भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो होना होता है वो होके ही रहता है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ टू जस्ट लीव इट टू गॉड, और अगर सोचने की प्रॉब्लम है तो फिर सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। वैसे आज वेंसडे का दिन है, कल फ्राइडे है, तो अगर सोचने को मंडे तक के लिए थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल। बाहर का तापमान राइट नाउ 18 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 18, मैक्सिमम टेम्परेचर्स 20 तक होंगे। रात के टाइम में 10 डिग्रीज, टुमारो 25 एंड 9, नाइस ब्यूटिफुल डेज आज से लेकर ऑल द वे नेक्स्ट वेंसडे तक, एंड देन वीकेंड अगेन सैटरडे 20 डिग्रीज एंड 10, ब्यूटिफुल वेदर। एंड ये गीत था सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, फ्रॉम द मूवी घायल, फिल्म आया ऑन राज बब्बर, मौशमी चैटर्जी, सनी देओल एंड मीनाक्षी शेषाद्री। वो अमेजिंग फिल्म जो कि राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी, एंड ऐसे अमेजिंग फिल्म्स जो हैं आजकल बहुत कम बनती हैं, और अगर नई जनरेशन ने घायल नहीं देखी है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट वॉच। एंड द सेगमेंट इज़ ब्रॉट यू बाई ब्रैम्पटन टी वी एंड अपलायंसेज सुल्तान जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकुसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828, और जहाँ पर हम आपको अमेजिंग डील्स दे रहे हैं फॉर कल ईद के मौके पर भी टीवी, अप्लायंस, लॉन्ड्री पर अमेजिंग डील्स चल रहे थे। दिस इज़ गोइंग ऑल द वे टिल संडे, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एशियंस एक पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम रोड और लॉरेंस पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू स्कारब्रो में, जहां पर लेटेस्ट फैशन डिजाइन 2026 वाले साड़ीज, लहंगाज के लिए आ चुके हैं, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, 416-438-6568। एशियंस नाम आपने रखना है याद, एशियंस। एंड इसके अलावा जो है काफ़ी खबरें जो हैं हमने आप तक पहुंचानी हैं, एंड साथ ही साथ आईपीएल के आखिरी अब कुछ डेज चल रहे हैं, बट द एक्साइटमेंट इज़ अनलिमिटेड, और वैभव सूर्यवंशी ने जो करिश्मा किया है बंदे ने, लड़के ने, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल जिस तरह से वो लड़का खेलता है 15 साल का, और जिस तरह से वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स की पिटाई करता है फील्ड के ऊपर, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। 29 बॉल्स में 97 रन्स बनाने, एंड अगर 3 रन और बना लेता तो क्रिस गेल का ग्रेटेस्ट T20 वाला रिकॉर्ड भी वो तोड़ देता, लेकिन ही इज़ यंग, ही इज़ ओनली 15, ही इज़ गॉट लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू गो। अभी फिलहाल जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, ही कुड प्रूव टू बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, एंड लेट्स होप यू नो विराट और सचिन जैसा महान खिलाड़ी साबित हो, बट बिट टू यंग, नीड्स अ लॉट ऑफ गाइडेंस, क्योंकि इस उम्र में 15-16 साल की उम्र में जब आप बे इंतहा पैसा देखते हैं, नेम, फेम, मनी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू जस्ट गो क्रेजी, सो होप दैट डज नॉट हैपन। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से 100% प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग। आगे चलकर मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे, हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है 12:30 से 3:30, आप अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लें। प्लीज डोंट वॉक इन, 905-206-1008 बहुत ही आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बहुत ही जल्द वापस आते हैं। और ओंटारियो की एक महिला है, उन्होंने एक कंपनी, रिपेयर कंपनी को कॉल किया था फॉर हर ओवन, एंड दे आस्क्ड हर फॉर एज मच एज $1,600 टू फिक्स $1,000 ओवन। इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग जब आपका अप्लायंस ब्रेक डाउन होता है, वी ऑल नो दैट, एंड इफ़ यू नीड टू हैव समथिंग रिपेयर्ड, कॉस्ट कैन एस्केलेट क्विकली अगर प्रॉब्लम जो है इज़ नॉट प्रॉपरली डायग्नोज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन। ये महिला जो है मारखम की है, इन्होंने CTV को कॉन्टैक्ट किया था, आफ्टर अ 4-year-old ओवन क्विट वर्किंग अर्लियर दिस मंथ। एंड यू नो इस कंट्री में तो वैसे हम सबको पता ही है कि छोटी सी चीज़ होती है, सबसे पहले हमें बता दिया जाता है कि भैया नया खरीद लो, इट्स प्रॉब्ली गोना कॉस्ट यू लिटरली एज मच एज यू गोना स्पेंड इन द रिपेयर वर्क, विच इज़ सो ट्रू, अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू। शॉर्ट ब्रेक, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज।
1: This is dangerous. Into the box. Into the
2: टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
3: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 4573232 Clear Optical by Varun Kanda.

0: जोशी।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Khanda, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Win Lifetime Trading, Brampton TV and Appliances, Home Life Miracle ke superstar realtor Sarabjit Gill, CP Chatwal. Shuru karte taza tareen headlines. Russia ne dawa kiya discovery of US-linked bioweapons program in Ukraine. North Korea ne Quad Nations denuclearization wale push ko reject karte hue kaha, never ever. एक्टर मैथ्यू पेरी के असिस्टेंट को पेरी के डेथ केस में 3 साल की सजा सुनाई गई प्लस 2 ईयर्स प्रोबेशन. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की इंडिया विजिट ने क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी और टेक की लैंडमार्क डील्स को सील किया. चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने देश में सिगरेट स्मोकिंग को कम करने की कसम खाई थी मगर सेल्स इन चाइना टेल अ डिफरेंट स्टोरी. ईरान के अनुसार यूएस के साथ फिर से युद्ध की संभावना काफी कम लगती है मगर यूएस अटैक हुआ तो हम पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे. ट्रंप ने कहा ईरान की डील से फिलहाल यूएस नॉट सेटिस्फाइड. गाजा सिटी में हुई इजरायली स्ट्राइक में हमास की मिलिट्री विंग का नया हेड मारा गया और ईरानियंस के लिए रिलीफ की बात. एज इंटरनेट शटडाउन खत्म हुआ लोगों ने कहा इट्स लाइक अ प्रिजनर बीइंग रिलीज्ड. एंड न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार यूएस हंगर क्राइसिस वर्सन्स बियॉन्ड crisis years of pandemic. And dusri aur local samacharon mein, FIFA World Cup se pehle intelligence agency ne human trafficking risk ki di warning. And Rogers Stadium noise complaints wapas shuru hui. Mayor Olivia Chow kehti hai ki is saal Toronto ke subway station ke platforms par barriers install kiye jayenge. New HST rebate ne Toronto ke new home sales ko encourage kiya hai. Lithium ion battery fires ke baad se Toronto chief fire chief ka kehna hai ki we need to be really careful. And missing boater ki khoj shuru हुई इन लेक ओंटारियो. भारतीय समाचारों में लद्दाख में बॉर्डर सिचुएशन को लेकर इंडिया चाइना ने कंस्ट्रक्टिव टॉक्स को अंजाम दिया. असम के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर मिक्स रिव्यूज देखने को मिले. जम्मू कश्मीर के एक शख्स को हनी ट्रैप किया गया बाय अ पाकिस्तानी वुमन स्पाई, शेयर्ड मिलिट्री पिक्चर्स एंड हैज नाउ बीन अरेस्टेड. विमेंस बॉडी ने मुस्लिम लॉ रिफॉर्म को पुश किया, फेयर डिवोर्स रूल्स की मांग की. सिक्किम बिकम्स द फुली लिटरेट स्टेट, फिफ्थ इन द कंट्री. 4 कब्स की मौत के बाद 14 लायंस को आइसोलेट किया गया, मैसिव सर्वेलेंस इन गुजरात. सूरत में एक 13 साल की लड़की ने 4th फ्लोर से कूदकर जान ली, शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक डिस्प्यूट बनी वजह. बीजेपी ने कांग्रेस को एक एंटी हिंदू पार्टी कहा ओवर दिग्विजय सिंह.

saves merchant ship, and lawmakers ke liye Delhi workshop mein Ayushman Bharat aur education policy ko discuss kiya gaya. Ma mati manush to mutiny. Trinamool Congress mein election haar ke baad bagawat ke sur nazar aaye. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से इस्लामाबाद के E12 सेक्टर का डेवलपमेंट वर्क फाइनली कम्स अंडर द रेडार. करंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनकम्प्लीट वर्क को प्रायोरिटी बेसिस पर खत्म करने का ऐलान किया. पीएम शरीफ ने सर्विसेज के चीफ्स और पॉलिटिकल डिग्निटरीज को ईद ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की. आर्म्ड फोर्सेज की प्रोफेशनलिज्म को ट्रिब्यूट दिया गया. पीएम ने यह भी कहा कि मुल्क को अपने सैनिकों पर गर्व है. पीएम शरीफ का कहना है कि यूएस ईरान पीस डील का फायदा पूरे रीजन को होगा. ऑफिशियल्स और इस्माइली कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स के बाद आगा खान ने 7-day पाकिस्तान विजिट को रैप अप किया. विजिट के दौरान आगा खान यूनिटी, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स को लेकर उन्होंने आवाज भी उठाई. पीएम शरीफ ने प्रेसिडेंट जरदारी को भी ईद की ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की. चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज अंडरवेंट अ मेजर सर्जरी एट द लाहौर हॉस्पिटल. मिनिस्टर के अनुसार चीफ मिनिस्टर रिकवरिंग आफ्टर द ऑपरेशन. सऊदी काउंटर पार्ट ने नकवी के साथ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के रीजनल डी एस्केलेशन एफर्ट्स की तारीफ की है. और 28th एनिवर्सरी ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान पाकिस्तान आर्म फोर्सेज रीअफर्म डिफेंस प्लेज. चीफ्स कॉल अचीवमेंट्स सिंबल ऑफ National unity, resilience, and resolve. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से T20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर ने कहा कंसिस्टेंसी ऑलवेज गिव्स यू रिजल्ट्स. और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स क्विट करने को कहा गया. रीजन इज वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल्स में 97 रन्स बनाए. ही जस्ट नीडेड 3 रन्स ऑफ जस्ट वन बॉल टू ब्रेक क्रिस गेल्स ग्रेटेस्ट T20 रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट IPL टर्न इन 30 बॉल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स इन 2013. और मगर वैभव ने क्रिस गेल के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द सिंगल IPL सीजन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बॉलीवुड खबरों से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डिक्लाइन किया टू डायरेक्ट संजय दत्त खलनायक रिटर्न्स. आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर सोनी मैक्स पर 31 मई को प्रीमियर करेगी. ऑथर लीना धनकर की द गुरुग्राम स्कूल मर्डर सेट फॉर स्क्रीन एडेप्टेशन बाय मैचबॉक्स शॉट्स. जयंतीलाल गाडा ने लीगल बैटल जीत लिया है एज मेहुल कुमार गेट्स कन्विक्टेड इन 9 चेक बाउंस केसेस आफ्टर 19 ईयर्स. रणवीर सिंह के डॉन 3-4 अ फॉल आउट ये प्रूव करता है कि बॉलीवुड नाउ नीड्स हॉलीवुड स्टाइल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट जस्ट हैंडशेक स्टारडम. जैकी श्रॉफ ने बेटे टाइगर श्रॉफ की बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस फेलियर्स पर कहा सम थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, आप बस मेहनत कर सकते हैं. दैट्स अबाउट इट. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताज़ा तरीन हेडलाइंस. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. आपकी रिक्वेस्ट हम एक एक करके प्ले करेंगे. बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. मैक्सिमम टेम्परेचर गोइंग टू बी अराउंड 21. एंड ड्यूरिंग द हज स्टोनिंग ऑफ द डेविल हुआ एंड दैट हैज बीइंग शोन बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल. एंड कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, आप ही की रिक्वेस्ट है, हमने प्ले कर दी है फ्रॉम द मूवी कुली नंबर 1 ब्रॉट टू यू बाय डॉन वैली नॉर्थ हांडे जो कि आपको फीफा की टिकटें दे रहे हैं. इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन जून. ऑफर एंड्स 31st में. अगर आप हांडे की गाड़ी खरीदते हैं 2 टिकट्स के लिए विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ. अगर आप विंटर टायर्स खरीदते हैं फ्रॉम देम विद स्टोरेज 1 फॉर 1 टिकट विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ. सिमिलरली एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज अगेन 1 फॉर 1 टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ. 7537 Avenue in Markham, Steeles Woodbine Wala Major Intersection, Don Valley, North Hyundai. Enjoy the song.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: 3 मीटर बस इन्ना को याद रखो, तुहानू उपरों लंघदियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 मीटर दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। जेकर तुसीं बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघदियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ। अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्ना तों घट्टो घट 3 मीटर दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों सुनेहा esasafe.com/stoplooklive ते होर जानो।
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cottrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
6: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
7: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
6: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
8: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
9: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: हर एक कपड़े का टुकड़ा मां का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक इसमें ना शामिल हो, जफाओं की कहानी जब तलक इसमें ना शामिल हो, वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता।
10: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो चुका है एंड अतीक खान साहब हमारे साथ हैं। अतीक भाई ने कितना कल ईद के मौके पर दावतें खाई हैं, दी हैं, ली हैं, और वो तो अब पता चल जाएगा जब वो ऑन एयर आएंगे। बट अतीक भाई को ईद मुबारक करके ही हम शुरुआत करते हैं सेगमेंट की। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट सेगमेंट जो आपके लिए बहुत बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। 416-666-2745 इज़ द नंबर। अतीक भाई, ईद मुबारक आपको। हमने एडवांस में भी आपको दे दिया था ईद मुबारक का, जितनी भी मुबारकबाद है, और अब भी दे रहे हैं।
11: अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ईद की खुश मुबारकबाद। आपको, आपके लिसनर्स को भी ईद मुबारक हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसिंग एंड सरेंडरिंग योरसेल्फ टू योर क्रिएटर।
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट डे विद द फैमिली। और वैसे तो आजकल अच्छी बात अतीक भाई ये भी होती है कि हमारे जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होते, विच आई रियली इन्जॉय। इट्स लाइक अ 3-4 day अफेयर जो कि हम सब परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर इन्जॉय करते हैं।
11: सर, मुझसे पूछें, 2 दिन में शुगर लेवल हाई हो गया।
0: अच्छी बात है कि फिलहाल शुगर लेवल हाई है, आप एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर लेवल हाई होना ज्यादा खतरनाक होता है। दिस इज, ये खुशी का शुगर लेवल है जो सेवई खा के आपका हाई गया है। बट आई नो द काइंड ऑफ फिट पर्सन यू आर, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, यू विल बी ओके इन द नेक्स्ट 3-4 days।
11: थैंक यू सर।
0: अतीक भाई, क्या आज ईद के मौके पर जब बात करते हैं तो खुशियों की बात करते हैं। हमारी टेंशंस तो लाइफ भर चलती आई हैं, चलती रहेंगी, इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन जब हम ईद के मौके पर बात करते हैं तो हम ग्रोथ की, सेविंग्स की, खुशियों की, सुख की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के जरिए हम कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आज इस पर रोशनी डालिए।
11: सनी साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो मैं आज बता रहा हूँ वो एक लाइफ टर्निंग और लाइफ चेंजिंग इवेंट बन सकता है उन सब लोगों के लिए कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है।
0: एक्सेलेंट।
11: और उसको मैं जस्टिफाई इस तरह से करूँगा कि द अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ऑन योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विच इज योर होम, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 times कर लीजिए तो भी शायद ये होगा कि एग्जैजुरेशन नहीं है, इट इज मोर रियालिटी।
0: वाओ।
11: और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। नॉर्मली आप कोई चीज करते हैं तो आप आमतौर पे घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस खरीद लेते हैं, शॉप खरीद लेते हैं, एंड यू बाय इट इधर थ्रू कैश और यू बाय इट थ्रू मॉर्गेज। कैश पे बाय करने वाले बड़े कम लोग हैं, मेजोरिटी लोग उसको मॉर्गेज पे ले रहे होते हैं। बट अगर मैं आज आपको एक टिप दूं कि द बिजनेस आई एम इन, आई बाय मॉर्गेजेस on discounted price. So something which is, let's just say hypothetically, something which is worth of $10 million and it has a $5 million mortgage and you are buying that mortgage for $3 million, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास ग्रोथ मार्जिन कितना है कि एक चीज जो ऑलरेडी अच्छी वैल्यू पे थी उस पे 50% का मॉर्गेज था और उस 50% मॉर्गेज को भी आप डिस्काउंट करके परचेज कर रहे हैं। सो currently it's a 100-acre land zoned for residential commercial purposes. Is pe teen mortgages the aur wo tino ke tino mortgage default hue aur ab main usko court ke through I am buying the mortgages. To jab mortgages aap purchase kar lete ho to wo 100 acres bhi aapke ho jate hain.
0: Wow.
11: So right off the bat, aapne ek cheez 50-70% discount mein khareedi hai aur अगर मैं, हम लोग कुछ भी नहीं करें, सिर्फ इसको रख के वेट कर लें अगले 2-3 साल में जब मार्केट चेंज हो जाएगी, वही चीज जो आपने 50-60-70% डिस्काउंट पे ली है वो वापस अपनी 100% वैल्यू पे आ जाएगी एंड दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड सिक्योर्ड फॉर यू। सो वो लिसनर्स जो बड़ी लैंड में इंटरेस्ट रखते हो कि जिसके ऊपर, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई थिंक उसमें होम्स जो होंगे कोई मे बी 2,000 or 3,000 होम्स हो जाएंगे.
12: Wow.
11: और होम्स का मतलब उसमें सब कुछ होता है, डिटैच, सेमी, टाउन, अपार्टमेंट, इस टाइप के. और एक छोटा आपके 100 acre के इस लैंड को कवर करने के लिए समझ लीजिए 5 या 10 acre का आप एक छोटा प्लाजा बना सकते हैं. एक्चुअली 5-10 acre छोटा नहीं होता, इट्स लाइक अ मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ प्लाजा विच इज ह्यूज. बट पॉइंट मेरा क्या था, आप उस पॉइंट पर वापस आइए कि ऐसी कोई चीज कोई आपको बताएगा और कहेगा कि जी मैं आपको 20%, 40%, 50% प्रॉफिट बना के दे सकता हूं, वो बिल्कुल सही कह रहा होगा या कह रही होंगी. बट इस बिजनेस का फायदा ये है कि आपको पूरी लाइफ वेट करने की जरूरत नहीं है कि जी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी तो मेरे हाथ में पैसे आएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द राइट टाइम कि जैसे ही मार्केट चेंज हुई वो चीज जो आपने 3-4-5 million में खरीदी है उसको आप 10-20 million में सेल करें. और ये मुझे आता है, यही मेरी एक्सपर्टीज है. गिव मी अ कॉल, ये आपकी जिंदगी बदल देगी. क्योंकि 100 acre की लैंड सनी साहब बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी. 416-666-2745. आई रिपीट, 416-666-2745. ये कॉल आपकी लाइफ चेंज करेगी.
12: जी दोस्तों, ये कॉल आपकी लाइफ चेंज करेगी. अतीक भाई ऑन एयर ये बात कर रहे हैं और उनके, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी बंदा जो इतने लंबे अरसे से कोई प्रोफेशनल, कोई एक्सपर्ट जिस चीज़ को करता आया है और जिस चीज़ में उन्होंने फ़ायदा किया है, बार बार किया है, एंड इफ़ दे आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड समथिंग लाइक दिस, इट्स समथिंग टू पॉन्डर. इट इज़ समथिंग जो आप ऐसा ना करें कि भैया सुन लिया और फिर सोचें कि हो सकता है, नहीं हो सकता, हो गया होगा. I would say the best thing to do is Atiq bhai se ek appointment. Talk to him. Don't make your assumptions because duniya mein sabse khatarnak cheez hoti hai. Hum jo us cheez ko presume kar lete hain, assume kar lete hain aur hum uske upar se skeptical bhi hote hain. I come across these kind of people on a daily basis jo jinhone kuch nahi karna par unhone negativity phailani hai. And negativity is tarah se phailani hai ki khud bhi nahi kuch karna, kisi ko bhi nahi kuch karne dena aur baad mein ghar baith ke ye kehna ki bhai kaash main kar leta, main ye kar leta. I say just make an appointment with Atiq bhai. उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिर आप खुद डिसाइड करोगे. पर पहला स्टेप मेरे कहने पे एवरीवन दैट्स लिसनिंग एंड इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन समथिंग शुड बी डूइंग इट राइट अवे. 416-666-2745, 416-666-2745. अतीक भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, अभी हम कह रहे हैं अपॉइंटमेंट बना लो, पीपल आर प्रॉबली थिंकिंग अरे यार अनसर्टेन टाइम है, अभी तो रेट्स ऐसे हैं, कल का क्या होगा. दिस इज द टाइम पीपल आर मोस्ट स्केप्टिकल. जब तूफान आंधी आ जाती है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती है, मल्टीपल ऑफर्स चल रहे होते हैं, दैट्स द टाइम एवरीबडी वॉन्ट्स टू जंप इन टू द मार्केट. इन एक्चुअलिटी दैट इज नॉट द राइट टाइम. Correct me if I'm wrong.
11: Absolutely right. और ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं ना कि जिस टाइप के लोग होते हैं सर, ये वो होती हैं अपना WhatsApp यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और Facebook ग्रुप ग्रेजुएट होते हैं. एंड अगेन आई मीट दीज काइंड ऑफ पीपल एवरी डे इन माई लाइफ ऑल्सो. पॉइंट उसका है ही नहीं कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव. कमाल तो ये है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स को मैं पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करूं, ये मुझे आता है. और जो अभी आपने बात करी कि स्केप्टिकल होते हैं, 14% का मॉर्गेज इंटरेस्ट वो क्लाइंट पे कर रहा था जो इस 100 acre की लैंड का ओनर था. जरा सोचिए आज की मार्केट में जिसमें आप 4-5% को कह रहे हो कि रेट इतने हाई हो गए हैं, दे वर पेइंग 14% और उसका बेनिफिट अब मुझे मिलेगा क्योंकि मैं उसको कैश पे खरीद रहा हूं. पूरी की पूरी हमारी सेविंग है. वो सेलर भाई साहब ने तो शायद $1-1.5 million सिर्फ लोन इंटरेस्ट में ही दे दिया होगा पिछले साल 2 साल में, जो सबका सब राइट ऑफ हो गया. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्गेज परचेज एट 50% डिस्काउंटेड. सो गिव मी अ कॉल, आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू सो मच. 416-666-2745, नाम और नंबर जरूर छोड़ें अगर आपकी कॉल में उठा नहीं पाता हूं, एंड आई विल रिटर्न योर कॉल राइट अवे.
12: सुपर अतीक खान, 416-666-2745. Atiq bhai, bahut bahut shukriya. Have a wonderful day.
11: Thank you. थैंक
12: यू ब्रदर। 416-666-2745 आखिरी बात यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, ये सारा कुछ जो अतीक भाई ने कहा है, मैं खुद यू नो आई एम अ कंजर्वेटिव गाय व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, और सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में नॉट ओनली ग्रोथ तो आती ही आती है, उसके अलावा ये होता है कि यार किस तरह से ये सारा पेपर वर्क जो है लीगली होता है, लॉयर के ऑफिस में किया जाता है, एग्जैक्टली दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज़ डन। यू बिकम अ पार्टनर, यू बिकम अ ओनर ऑफ द लैंड, आप टाइटल पर आपका नाम होता है, वो लैंड खरीदी जाती है, बाय की जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय योर लॉयर। अतीक खान साहब को कॉल करें 416-666-2745। और छोले भटूरे खाने हैं अतीक भाई को कॉल करने के बाद, तो चार लोकेशंस हैं छोले भटूरे .ca की, दो ब्रैम्पटन, वन मिसागा में, दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे मिलते हैं, टाइन इन टेक आउट ऑप्शन दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए गीत संगीत का कारवां चलेगा ऑल द वे टिल 2 o'clock, एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब भी हमारे साथ होंगे, आगे चलकर रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली से राज जोशी भी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक बैंग बैंग का ये बैंग बैंग वाला टाइटल ट्रैक बेनी दयाल नीति मोहन की आवाज में हमने लाइनअप कर दिया है।
9: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक, लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 months, सिलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें, जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th, विजिट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस.com टुडे। A proud member of Vane's Auto Group.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्रेडिट कार्ड, GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल, ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty, 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM, बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस. रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं. राज जी से बातचीत करते हैं और आज एक बहुत ही अहम सवाल भी पूछते हैं हमारे लिसनर की तरफ से. ये क्वेश्चन कल आया था, आई एम गोइंग टू आस्क राज जी टुडे. राज जी, आपका स्वागत है.
4: सनी जी नमस्कार, सबसे काल आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून.
3: जी गुड आफ्टरनून. और हमारे लिसनर काफ़ी अरसे से सुनते हैं आपको और उन्होंने, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, उन्होंने कहा कि अगर उनके पास किसी भी घर के लिए तकरीबन 15% डाउन पेमेंट है, क्रेडिट गुड है, जॉब्स अच्छे हैं, क्या उन्हें इंतज़ार थोड़ा सा और करना चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं टू बाय देयर फर्स्ट होम? आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अ सेमी. या फिर इंतज़ार और करना चाहिए, या मे बी दिस इज़ द टाइम एक्चुअली कि बंदा कहता है कि यार फाइनली अब घर ले ही लेते हैं. बिकॉज आई थिंक बायर के दिमाग में, खासकर फर्स्ट टाइम होम बायर के दिमाग में ये बहुत आ रहा है कि मार्केट और जो है ड्रॉप हो सकती है.
4: सनी जी, जो मार्केट के नंबर्स हैं अगर उसको हम वेरी वेरी प्रैक्टिकली प्रूडेंटली देखें तो एक ही सवाल है कि इस वक्त एक बायर्स मार्केट है. प्लेसेस लाइक ब्रैम्पटन हो या स्कारब्रो हो या आप वेस्ट में चले जाएं किचनर वॉटलू या ऑल द वे ईस्ट में चले जाएं पिकरिंग, एजैक्स, ओशवा का एरिया, हर तरफ आप देखें डील्स ही डील्स मिल रही हैं इस वक्त. ऑब्वियसली एज ए बायर हम चाहते हैं हमेशा कि हमें रॉक बॉटम प्राइस मिले और जब हम सेल करने जाएं हमें टॉप प्रीमियम प्राइस मिले. हमें ऐसे बायर्स मिले जो मतलब परवाह ना करें 3-4-5 लाख डॉलर आपको ज्यादा दे जाएं. बट रियलिटी ये होती है कि जो मार्केट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही प्राइस तय होता है. मार्केट ही डिसाइड करती है. जैसे आप वापस 2021 के टाइम को देखें, उस फेज में मल्टीपल ऑफर्स आ रहे थे और 100, 200, 250,000 ओवर आस्किंग जा रहे थे घर. आज ना तो इतनी यू नो मल्टीपल ऑफर्स की सिचुएशन है. अगर प्राइस राइट है तो आपको प्राइस या उससे थोड़ा ऊपर अभी भी एज अ सेलर मिल सकता है और एज अ बायर आपके लिए कंप्लीट विन विन सिचुएशन है. अगर इंटरेस्ट रेट को देखें वो स्टेबलाइज हो गया है, मार्केट कंडीशंस में बहुत ज्यादा इन्वेंटोरी नहीं है लेकिन इनफ है एंड बायर्स बहुत ज्यादा नहीं है. सो आपके कंपटीशन में ओनली सीरियस बायर्स आर देयर. जो पहले बहुत सारे लोग टेस्ट करते थे वाटर्स को कि ऑफर डाल देते हैं देखेंगे क्या होता है, वो सब अब बहुत कम नजर आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा, वेदर आप रीसेल के घर को देखना चाह रहे हैं या प्री कंस्ट्रक्शन को देखना चाह रहे हैं, टाइम इज राइट। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज दूंगा, मोर अफोर्डेबल देन रीसेल, टाइम है इस वक्त एजैक्स में डेयर टू कंपेयर 499,000 में बेस्ट डील इन एजैक्स। इसको कह सकते हैं आप मोर स्पेस फॉर लेस विद अ ब्रांड न्यू टू बेडरूम अर्बन टाउन होम। इस वक्त एवरेज कॉस्ट टू बेडरूम स्टैक टाउन की है 582,000, टू बेडरूम कॉन्डो देखें तो ऑलमोस्ट 730,000, लेकिन इस वक्त आपको ये सिर्फ मिल सकता है 499,000 में। आप अगर अपनी तलाश को एक जगह फोकस करके आप अपने रेजिडेंस या अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। एजैक्स रोसलैंड रोड और हार्किन ड्राइव के इंटरसेक्शन पर ये डेवलपमेंट बन रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एजैक्स में हमें कांटेक्ट करें, अदरवाइज ऑल ओवर सदर्न ओंटारियो इस वक्त बहुत जबरदस्त प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत जबरदस्त डील्स हैं और हमारी टीम की ओर से एक स्पेशल पैकेज है। आपने सिर्फ फोन उठाना है, हमें कॉल करना है एंड वी गेट द रेस्ट डन फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
3: जी बहुत ही नॉलेजबल रियल्टर रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के राज जोशी जी, एक बार संपर्क करें, होम बाइंग हो या सेलिंग हो, यू नीड अ रियल्टर लाइक राज जोशी जो कि आपको सही तरीके से आपके फ़ायदे की चीज़ को समझते हुए देखते हुए गाइड करेंगे, नॉट कि भाई बस प्रॉपर्टी बिक जाए और अपनी कमीशन बन जाए, दैट्स नॉट हाउ ही वर्क्स। 6478661086। मैंने राज जी को नेगोशिएशन टेबल पर ये करते हुए देखा है कि किसी को 1.1 मिलियन का घर चाहिए और राज जी कह रहे हैं कि नहीं भाई आप 950 से ज़्यादा का घर ना लें, दिस इज़ समथिंग बेस्ट डिसीजन फॉर यू, जो कि ज़्यादातर कई बार रियल्टर्स शायद ना ये करना चाहें क्योंकि 1.1 मिलियन का आप घर लेते हैं तो कमीशन रियल्टर की ज़्यादा ही बनती है, बट जो रियल्टर सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बारे में सोचता है वो शायद आपको ये राय दे सकता है या एक ओपिनियन दे सकता है कि भाई गो फॉर समथिंग दैट इज़ अ लिटिल लोअर बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड 1.5 मिलियन इन द फ्यूचर वेन टाइम्स गेट टफ। एंड आई थिंक ये चीज़ें अगर शायद प्रोफेशनल्स ने थोड़ा ज़्यादा की होती बैक इन द डे तो हम कुछ और आज के हालात देखते जहाँ पर लोगों से भी गलतियाँ हुई हैं और कुछ गलतियाँ रियल्टर्स से भी हुई हैं, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया।
4: सनी जी थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू जी। 6478661086 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉर्ज टाउन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं एंड दो लोकेशंस में आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। चलिए उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में क्यामत से क्यामत तक का ये ब्यूटीफुल सा गीत ए मेरे हम सफ़र, फिल्माया और नन अदर देन आमिर खान एंड जूही चावला।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
7: खैरात में मिली हुई खुशी हमें पसंद नहीं, क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं. मुझे एक ने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, औकात में. साले ने फिर पूछा, कब तक? मैंने कहा, सामने वाला रहे तब तक. दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे. लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर. लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर.
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी. एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान सुल्तान जी हमारे साथ हैं. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 905-450-2828. कई घरों की दोस्तों क्लोजिंग्स चल रही हैं, और क्लोजिंग्स में सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होती है अप्लायंस लॉन्ड्री. एंड मैं सोचता हूँ कि वहीं से शुरू कर लेते हैं सुल्तान जी से. सुल्तानिक डील्स को आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
9: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई. और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी. आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंट और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं. उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है 2999 में. $2,000 कस्टमर सेव करेंगे. किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये. और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी, तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ 1099 का है. और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला $1,499 का है. $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है. और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं. कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ. इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com. हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं. 905-450-2828 हमारा नंबर है जी. 905 450 2828 जी
8: 905-450-2828। यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूँगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द इंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें।
9: जी बिल्कुल, डेफिनेटली जी, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली 499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला 799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला 899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा, कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है, $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी, 905-450-2828 905-450-2828 जी।
8: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट। और जिस तरह से हर हफ्ते, हर महीने, हर त्यौहार पर, फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए। सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
9: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग, उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त, इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2,000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1,299 में मिलेगा, $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं, इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ 399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ 699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का, 98 इंच जो $3,500 वाला सिर्फ $1,999 में मिलेगा, सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1,999 का बोवेड एंड चंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3,000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1,999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
8: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
9: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
8: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
10: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
11: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
10: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
11: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
10: दैट्स वंडरफुल।
11: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
10: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
11: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
12: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
13: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
14: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
13: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
15: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
16: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
17: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
16: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
17: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
16: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
17: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
16: 647-739-8710, license number M200-34504.
18: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment, walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008, 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040, 289-748-4040.
19: लेक डेदा प्लान सी, पर टोयोटा टंडरा दे बिना सगुन नहीं शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ, ता एसडी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा।
20: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रेमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी

वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ये गीत मैंने जो इससे पहले प्ले किया वाज फ्रॉम द मूवी बदलापुर, लेकिन ये गीत जो है अगेन वरुण धवन की आने वाली फिल्म में है, बट दिस इज द ओरिजिनल वन। अभिजीत अनुराधा की आवाज में चुनरी चुनरी, एंड ये फिल्माया गया था बीवी नंबर वन में ऑन सुष्मिता सेन एंड सलमान खान। अब रिसेंटली फिल्म आ रही है, डेविड धवन ने डायरेक्ट की है, उनके बेटे की फिल्म रिलीज होने वाली है विद पूजा हेगड़े एंड मृणाल ठाकुर एंड वरुण धवन, और उसमें जो है ये गीत फिर से इस्तेमाल किया गया है। अभिजीत जो कि सिंगर, अभिजीत आई लव द सिंगर, नो डाउट अबाउट दैट, व्हाट अ सिंगर, लेकिन वो कई बार बेबाकी से बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं और परवाह नहीं करते जो वो बोलना चाहते हैं, विच ही हैज़ द राइट टू से एंड डू व्हाटएवर ही फील्स लाइक। लेकिन कई बार बोलने के वक्त आपको ये भी ज़रूर सोचना पड़ता है कि आपकी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें, ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाएं जो आप किसी को बहुत हर्ट करें। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने जिस तरह से इस गीत को किया है एंड वरुण धवन ने जिस तरीके से इस गीत पर परफॉर्म किया इन द अपकमिंग फिल्म, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक सलमान इज़ अमिताभ बच्चन एंड वरुण धवन इज़ असरानी। कम ऑन, यू नो तो आई थिंक इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें या कई बार उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं अभिजीत के जो साउंड करती हैं ही इज़ वेरी बिटर, एंड आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड द एपिसोड दैट हैपेंड बिटवीन फारा खान, शाहरुख खान एंड अभिजीत, जब उनको एंड क्रेडिट्स में उनका नाम भी नहीं था अभिजीत का ये ओम शांति ओम के टाइम में, एंड दैट इज़ समथिंग दैट टिक्ड हिम, एंड उसके बाद उन्होंने शाहरुख के लिए कभी गाना नहीं गाया। बट देखिए बड़े स्टार्स जो होते हैं उनके करियर चलते रहते हैं। शाहरुख खान की वैसे देखा जाए अभिजीत वॉइस वॉज द बेस्ट फॉर शाहरुख खान, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ म्यूजिक और सॉन्ग्स वी हियर इन शाहरुख्स मूवीज एनी मोर, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से अरिजीत सिंह गा देते हैं। बट एनी वेज ये कॉन्ट्रोवर्सी अब कहाँ जाके थमेगी ये किसी को नहीं पता, पर गीत इंजॉय करें द ओरिजिनल वन। आते हैं वापस

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उत्थे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.
6: He's breaking through the midfield.
7: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Dr. Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups, call McQueen Dental Care, 905-794-8883. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल हमारे साथ है विद द रियल एस्टेट रियल अपडेट। और जब हम रियल एस्टेट की रियल अपडेट कहते हैं तो रियल अपडेट का मतलब ये होता है कि भैया आपको वो बताएं जो सच है और नथिंग बट द ट्रूथ। तो आज जो है देखते हैं कि क्या रियल सच लेकर रियल एस्टेट के बारे में सरबजीत गिल, सीपी चटवाल ऑन एयर आ चुके हैं। 416-627-4737, 6478872707 इज द नंबर। दो डेकेड का लंबा एक्सपीरियंस है सीपी चटवाल सरबजीत गिल का इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट और देखते हैं क्या है लेटेस्ट। सीपी जी, सरबजीत जी, दोनों का स्वागत है।
8: थैंक यू सनी, एंड ए वेरी हैप्पी सनी थर्सडे आपको और सभी सुनने वालों को।
1: जी, आप दोनों को भी सनी थर्सडे मुबारक हो। इट इज थर्सडे, सो थर्सडे जब होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ और पूछूं आपसे, मैंने पिछले हफ्ते, पिछले वीकेंड बहुत ज़्यादा अपने इलाके में ब्रैम्पटन में ओपन हाउसेस देखे हैं। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप दोनों क्विकली बता दें कि भाई ओपन हाउसेस अचानक इतने ज़्यादा, मतलब मैंने नहीं, आई हैवन सीन सो मेनी ओपन हाउसेज इन द लास्ट प्रॉली कपल ऑफ ईयर्स। वॉट हैज चेंज ऑल ऑफ अ सडन?
8: कुछ तो मार्केट में पॉजिटिव चेंज फॉर श्योर सनी नजर आ रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग लॉट मोर एक्टिविटीज अराउंड न्यू होम्स। ठीक है, एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो आप ओपन हाउसेज की बात कर रहे हैं, दे आर सीइंग बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द न्यू होम। and maybe they have the plan to upgrade. This is one of the fantastic time to upgrade.
9: जी, सो किसी का अगर आपके हिसाब से किसी का घर है 2000 स्क्वायर फीट का, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं थोड़ी सी हिट लूंगा इन सेलिंग माय हाउस, बट द फैक्ट इज इफ आई गेट समथिंग 3000 स्क्वायर फीट होम, तो वो भी मुझे बेटर कीमतों में मिलेगा.
8: जी, मैं अभी आपको लास्ट वीक में एक मैच्योर नेबरहुड में डिटैच होम जो है विद इन 6 डेज में वो सोल्ड हो गया.
9: वाओ,
8: इट केम टू द मार्केट and I think second day or third day pe hi wo sold conditional tha and overall 6 days mein that property got sold on a very very low 800,000 pe. It's a beautiful house with a one car garage ke sath, theek hai, and because they see a bigger and better opportunity in the new homes.
9: Ji ji. अच्छा, एक सवाल और भी आया है हमारे लिसनर का, आप दोनों से पूछते हैं कि सीनियर सिटीजन है हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे आर आस्किंग दैट दे वांट टू डाउनसाइज, कहते कि क्या ओपिनियन रखते हैं आप दोनों इस पे?
8: इट डिपेंड्स ऑन देयर इंडिविजुअल सिचुएशन. फॉर अ सीनियर सिटीजन टू से ओवर द रेडियो और ओवर द एयर इज डिफिकल्ट, बट इन अ जर्नल इफ दे करंट हैव द पेड अप प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव टू टेक एनी मॉर्गेज and they want to set up a life in a better way. So I think a lot of bungalows are available with a one or two car garage at a very reasonable prices.
9: Ji, jiske liye dosto 416-627-4737 par ya 6478872707 par aapne call karna hai CP Chatwal Sarabjit Gill ko, aur Sarabjit Gill CP Chatwal aapko guide karenge to find what is best for you, and that's exactly what they do. CPG, quickly, aap bhi jump in karein, and I want to hear what you have to say. Why are we seeing all of a sudden so many open houses happening? Mere neighborhood mein tha, isliye maine dekha. Maine bola, I haven't seen so many of those signs go up in the last couple of years.
10: Sunny ji, do cheeze chal rahi hain. Number one, ki agar last year mein comparison dekhe, to bade bahut hi naye ghar bahut kam bike the.
9: Ji.
10: Is saal GTA mein mere khayal 940 या 920 घर ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, तो काफी ज्यादा मूवमेंट्स चल रही हैं. और ब्रैम्पटन के अगर मैं आपको फिगर्स बोलूं तो मोर देन 60 to 70% जो प्रॉपर्टीज हैं वो 850 से बिलो सोल्ड हो रही है. तो दैट मींस कि 600 टू 850 देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स.
9: जी,
10: अभी मैंने फर्स्ट टाइम बायर को एक घर लेके दिया है, वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कैम्ब्रिज में.
9: जी,
10: पर कैम्ब्रिज में घर उनको अच्छा मिल नहीं रहा था, जबकि उनके हस्बैंड की जो जॉब है वो हैमिल्टन में है.
9: जी,
10: मैंने उनको ब्रैंडफोर्ड में ब्रांड न्यू घर लेके दिया है, जो लोग अभी जिन्होंने पीक पर क्लोज में बुकिंग की हुई है, दे आर नॉट एबल टू क्लोज द डील्स, वो घर उनको 660 में लेके दिया है माइनस HST.
9: जी,
10: तो 580-590 के अंदर उनको सेमी डिटैच 1600 स्क्वायर फीट 9 फीट सीलिंग ब्रांड न्यू, दे आर एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी.
9: जी जी,
10: तो हर वक्त हर नॉलेज और हर इंफॉर्मेशन का होना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट द रियल्टर हु इज एवरीडे वर्किंग फुल टाइम एंड डेडिकेटेड, दे आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ देयर क्लाइंट्स.
9: अच्छा, मैं एक सवाल आप दोनों से पूछूंगा और पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप दोनों बिल्कुल सच बोलेंगे. सवाल के जवाब जो हैं इसमें कुछ घुमा फिरा के मुझे जवाब नहीं मिलेगा. आई वॉन्ट एज ऑलवेज कि आप लोग ट्रूथफुली बताएं, आपको आज क्या चैलेंज महसूस हो रही है? दो डेकेड हो गए आप दोनों को इस बिजनेस में, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज आर यू एक्सपीरियंसिंग व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज फॉर योर क्लाइंट्स?
8: Pricing of the property, that is the one challenge. Okay.
9: How is that?
8: From the eyes of the buyer. Okay.
9: पर वो तो अच्छे वक्त में भी, सरबजी जी, वो तो अच्छे वक्त में भी वो चैलेंज रहा होगा, जहां पर बायर को ऑलवेज, जैसे आप ही कहते हैं कि भैया मुझे वही वाली पिंक शर्ट, या क्या एक एग्जांपल आप ऑलवेज देते होते हैं,
8: मेरे वाला पिंक.
9: हाँ, मेरा वाला पिंक. तो फिर वो वाली चैलेंज तो इवन यू प्रॉली हैड लाइक 4 years ago, 10 years ago.
8: 100% द चैलेंज इज द सेम.
9: या
8: बिकॉज अब जो उस चैलेंज के अंदर एक्सपेक्टेशन ज्यादा और एड हो गई है. आई हैव ए क्लाइंट who is having more than half a million available. And all the willingness to buy. But jis property ko wo abhi aaj market mein jo hai wo 1.3 mein dekh rahe hain, the challenge here is they want to buy that property in a 1 million.
9: अब वो तो असंभव बात है ना, ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता.
8: अब दे आर थिंकिंग कि आई हैव द मनी एंड हैव द विलिंगनेस, आई विल फाइंड समबडी हु इज रेडी टू गिव मी एट दैट प्राइस. सो माय चैलेंज इज टू कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन लुकिंग एंड कीप ऑन फाइंडिंग.
9: मैं चाहूंगा कि इस सॉरी प्लीज गो अहेड.
8: उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, so I have to serve in the best interest of what they are looking.
10: अच्छा, अगर इस चीज को दूसरे तरीके से देखे ना समी जी, जो छोटी प्रॉपर्टियां है 6.5 से 8.5 लाख की
9: जी,
10: बायर को ये कॉन्फिडेंस है कि प्राइस और टूटेगी. जब लेने जाते हैं तो चीज मिलती भी नहीं है. अभी मैंने लास्ट वीक में एक डील की है ओशवा में, मैंने 22 घर दिखाए हैं अपने क्लाइंट को, और 22 घर में से 13 घरों पे मल्टीपल ऑफर है. तो ये भी सिचुएशन है.
9: अच्छा, ऐसा होता है, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ अमेजिंग लिस्टिंग्स ले लूं आप दोनों से, ऐसा होता है आप दोनों में से जिसने भी सवाल का जवाब देना है दें, कि आपने कोई क्लाइंट को घर दिखाया, क्लाइंट को जैसे 22 घर आपने दिखाए, 22 प्रॉपर्टीज दिखाई, क्लाइंट को जो प्रॉपर्टी पसंद आई वो एक्चुअली आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के लिए सही नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू एट दैट टाइम?
10: नहीं, मैंने उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये घर बहुत या तो पुराना है, इसे थोड़ा बेटर ले लो, अगर 25,000-50,000 हमको एक्स्ट्रा भी देने पड़ते, बट कई बार क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए.
9: सो व्हाट इज इट दैट यू एंड सरबजीत डू एट दैट पॉइंट?
8: सनी, फॉर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हु आर बाइंग द प्रॉपर्टी, वेदर दे आर फर्स्ट टाइम बायर और सेकंड टाइम बायर, दिस इज यूजुअली व्हाट वी डिस्कस विद देम, दैट नेक्स्ट 36 मंथ्स में what are the major events you are expecting that is coming in your life, especially towards the expense related.
9: Yeah.
8: Do you guys have a plan to buy a new car? Are you planning to visit back home? A major event in the family is happening. Okay. Because financial responsibility jo hai, jab aap le rahe ho, to you need to analyze ki next 3 years tak mere paas koi different disturbance to nahi aa rahi.
9: Exactly. Or sometimes there could be unforeseen things happening in life that we can't even predict.
8: Yes, some backup, or even agar aapke paas apni savings nahi bhi hai, did your leverage got developed so much that any challenge come you can handle it through your leverage? Because if the client comes in a tighter situations, so wo ek unhappiness generate hoti hai between a relationship of a client and a realtor.
9: Exactly.
8: Because wo financial liabilities ko feel karta hai कि अगर ये पैसा मैंने इधर ना डाइवर्ट किया होता, I would have been able to do it that way.
9: बिल्कुल. आज मैंने कई सवाल ऐसे आप लोगों दोनों से पूछे हैं, और इंस्टेंटली जो मेरे जहन में आए या कुछ हमारे लिसनर्स ऑलवेज भेजते रहते हैं क्वेश्चंस जो मैंने आप दोनों से पूछे हैं, दीज आर द यू नो वेरी ऑनेस्ट आंसर्स जो मैं चाहता था कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचे. दोस्तों, इसीलिए होम लाइफ मिरेकल के ये दो सुपरस्टार रियल्टर्स हैं जिनका बहुत लंबा तजुर्बा है, और 365 दिन साल के होते हैं, ये दोनों 366 दिन एक ही काम करते हैं रियल इस्टेट, एंड दे डू इट विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. एंड 6478872707 या 416-627-4737 सी पी चटवाल सरबजीत गिल का नंबर है. सी पी जी, क्विकली जाने से पहले आई नीड सम क्विक लिस्टिंग्स जो आप शेयर करें.
10: सनी जी, मैं सेलर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा उससे पहले
9: जी,
10: कि अगर एक स्ट्रीट पे कोई घर बिक रहा है, जैसे पहले होता था भी अगला घर 10,000 महंगा बिक रहा है या 25,000 महंगा बिक रहा है, वो सिचुएशन नहीं है अभी मार्केट की.
9: ठीक है,
10: अगर एक घर एक स्ट्रीट पे मान लीजिए 800,000 का बिका है, तो दूसरा 825 का नहीं बिक रहा, वो 780 का बिक रहा है, तीसरा 750 का बिक रहा है, चौथा 720 का बिक रहा है. तो ये चीजें देख के अगर आपको आप किसी सिचुएशन में है और आपको घर सेल करना है, तो डोंट डिले,
9: टॉक टू सीपी एंड सरबजीत गिल. दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सीपी जी ने अभी मेंशन की है. ये सिर्फ एक ज़बरदस्त रियल्टर जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो ही इस चीज़ को पिन पॉइंट इस पॉइंट पे मार्केट में कर सकता है. सी पी जी, लिस्टिंग्स ताकि इस वीकेंड हमारे लिसनर्स चेकआउट करें उन्हें.
10: समझिए, हमारे पास एक बहुत प्यारा घर है ब्रांड फोर्ड में, और ये मेरे पास तीन घर रह गए हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टाउन हाउसेज हैं, एक तो एंड यूनिट है, और ये सारे घर जो है 580 से लेके 600,000 तक है
9: जी।
10: तो उसके लिए प्लीज हमको कॉल कीजिए, बहुत कम इन्वेंटरी रहेगी अपने पास एंड वी विल मेक ए वेरी गुड पे।
9: बिल्कुल, एंड टॉक टू सरबजीत गिल सी पी चटवाल 6478872707 या 416-627-4737। मैं तो यहाँ तक भी ये कहूँगा कि सरबजीत गिल सी पी चटवाल के साथ एक मीटिंग कर लें, एंड कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग करने से बिना किसी ऑब्लिगेशन के जब आप मीटिंग करते हैं तो आप भी एक ओपन माइंड लेकर जाते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ मिलते हैं और प्रोफेशनल्स भी आपको उसी तरह से इनपुट दे पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी सेट पैटर्न और गोल इन माइंड, बट आपको ये ज़रूर पता है कि भैया घर खरीदना है। सो घर खरीदने के लिए पहला होमवर्क यही होता है कि प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग करें, बाकी चाय पानी डोनट सारा कुछ सरबजीत जी का जिम्मा होता है, पकौड़े जो हैं वो सीपी ले आएंगे। एंड दोस्तों 6478872707 या 416-627-4737 पर कॉल करें, टॉक टू सरबजीत गिल सीपी चटवाल। जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एंड दोस्तों सी पी चटवाल सरबजीत गिल की तरफ से ये प्यारा सा गीत हमने लाइनअप कर दिया है, कुछ स्पॉन्सर्स के मैसेजेस हैं, बाहर का तापमान है बहुत ही ब्यूटीफुल 19 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 20, और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द।
11: He's breaking through the midfield.
7: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
9: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant. Main khush hoon, koi meri baat to karta hai. बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है दोस्तों। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और अगर दिल पे लगी तो नेचर बदल जाएगा।
7: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक और कहानी मेरी जुबानी। बुद्धिमान बीरबल। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास आया। उन्होंने बीरबल से कहा, मेरे घर में 7 नौकर हैं, उनमें से एक ने मेरा कीमती सामान चुरा लिया है। इसलिए बीरबल उस अमीर आदमी के घर गए और सभी 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाया। उसने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा कि ये सभी जादू की छड़ियां हैं, इनकी लंबाई भी समान है, इन्हें अपने साथ रखो और कल साथ लेते आना। पर ध्यान रहे, जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बड़ी हो जाएगी। जिस नौकर ने कीमती सामान चुराया था वो तो डर गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी छड़ी से 1 इंच का टुकड़ा काट लिया तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसलिए उसने छड़ी को 1 इंच काट दिया। अगले दिन बीरबल ने नौकरों से लाठी एकत्रित की। उसने पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच कम थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। Stay blessed, ladies and gentlemen.
2: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उत्थे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jang mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari. Aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद. मैं हूँ शिवानी और आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर. आज मैं आपके साथ रहूँगी और पूरे दो घंटे यानी कि 2 बजे से 4 बजे तक खूबसूरत से गानों के साथ, बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेर व शायरी के साथ, हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट्स के साथ. दोपहर के तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस वक्त मस्ती की रेलगाड़ी ऑन बोर्ड आ चुके हैं और चलिए आपके साथ मज़े से गुजरेंगे ये 2 घंटे. और मज़े मज़े का मौसम, 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विद फ्यू क्लाउड्स. और आज दोपहर का, शाम का मौसम आपको इतना ही करीब करीब ट्रीट करेगा, यानी वीकेंड पर के नज़दीक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसी शामें, ऐसी दोपहरें मिलती हैं तो दिल चाहता है अपनों के साथ वक्त बिताया जाए, लम्हे गुजारे जाएं, बहुत सारी मेमोरीज बनाई जाएं. तो बने रहिए हमारे साथ 416-569-7812. और ऐसी दोपहर के बाद जब शाम आएगी ना तो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ है, वॉक करने का मज़ा बड़ा अच्छा होता है. कहते हैं वॉक योर सेल्फ आउट ऑफ योर बैड मूड. स्टडीज़ बताती हैं कि इवन अ 10 मिनट्स वॉक इमीडिएटली बूस्ट ब्रेन केमिस्ट्री टू इंक्रीज हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस फ्री में मिल जाए तो किसको नहीं चाहिए, पैसे दे के भी नहीं मिलती है. वॉक कीजिए, फ्री में खुशियाँ बांटिए, अपनों के साथ ढेर सारा वक्त बिताइए और सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी.

0: जानकारी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
6: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
5: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
6: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
5: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
7: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
8: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Aap sun rahe hain Sean Express on CMR FM 101.3. Sean Express, music jo kare aapko impress. क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में? तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। कोई मिडिलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, गुड लुक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। कॉल यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, 416-732-3600। क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के Vanguard Pest Control, your first line of defense against pests and wildlife. Residential, commercial or industrial pest control, wildlife removal and exclusion. Eco-friendly or safe treatments hain, 100% satisfaction guaranteed hai, licensed hain aur insured hain. Intezaar mat kijiye, apne ghar aur business ko rakhiye safe aur pest free. Vanguard Pest Control, Ayan Kashif ji se baat karein. 647-966-4355. क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास?
3: मस्ती की रेलगाड़ी, मैं हूं शिवानी आपके साथ। ट्रैफिक अपडेट पे नजर डालते हैं, देखते हैं कि ऐसे मौसम में ट्रैफिक भी मौसम का लुत्फ उठा रहा है या फिर आपका साथ दे रहा है। दूसरे कोलिजन की खबर आई है, करीब 50 मिनट पहले की खबर है और इसमें और कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो आइए अज्यूम कि अभी यहाँ पर थोड़े सी डिलेज बने हुए हैं। यह है साउथ किंग्सवे और ब्लू स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन है। कोलिजन की रिपोर्ट है, वन व्हीकल हैज फ्लिप्ड ओवर और ऑफिसर सीन पर हैं। इंजरीज अभी पता नहीं चली हैं कि क्या कितनी इंजरीज हैं या नहीं हैं। इस एरिया में ट्रैफिक डिलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उधर 427 साउथ बाउंड कलेक्टर्स पास बर्डम थॉर्प एट ईवा रोड, यहाँ पे स्लो मूविंग मेंटेनेंस के चलते टू राइट लेन्स आर ब्लॉक्ड। और इसके अलावा 401 ईस्ट बाउंड एट डिक्सन एंड मार्टिन ग्रोव, यहाँ पे क्रैश हुआ है राइट लेन में। 401 ईस्ट बाउंड पास डिक्सन एंड मार्टिन ग्रोव, डिसेबल व्हीकल है सेंट्रल लेन। और उधर 401 वेस्ट बाउंड कलेक्टर्स एट बेव्यू, यहां पे व्हीकल फायर क्लीनअप के चलते टू राइट लेन्स आर ब्लॉक्ड। और बढ़ते हैं आगे, और बहुत प्यारा सा थॉट है। ये जो थॉट है कहता है, यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का इंतजार थोड़ी है, नजर मिला के तुम भी गिला करूं कैसे, नज़र मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। मुझे भी नींद ना आए, उसे भी चैन ना आए, हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। लेकिन आप हमेशा प्यार करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी से, और हमें कॉल घुमाते रहिए किसी भी जानकारी के लिए। हमसे कॉन्टैक्ट का, रबते का, संपर्क करने का नंबर है 416-569-7812। गुलजार साहब का लिखा हुआ, सोनू निगम की मेस्मराइज वॉइस से लबरेज, इस मौसम में ये गाना तो बनता है आपके लिए।

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
3: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी चल रही है और ऑन बोर्ड आप लोग पहुंच चुके हैं, लगातार चल रही हैं हर स्टेशन से, हर जंक्शन से, है ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और आज इतने अच्छे मौसम में जब हमारी आंख खुली तो एक ऐसी खबर हमें मिली जिसने जो भी गज़ल शायरी के जानने वाले हैं उनकी आँखें नम कर गई। ये खबर, बशीर बद्र साहब हम सभी को छोड़कर चले गए 15 फरवरी 1935। 15 फरवरी 1935 में जन्मे और आज ही के दिन 28 मई 2026 को हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। ज़रूर जिस्मानी तौर पर हम उनसे जुदा हो गए, वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन ऐसे लोग जुदा कब होते हैं, कब ऐसा होता है कि उनकी ख्याल, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर, शायरी हमारे दिलों में नहीं बना रहे का, ता उम्र हम उनको याद करते रहेंगे, उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, उनकी इज्जत करते रहेंगे, उनको नमन करते रहेंगे। रेस्ट इन पीस डॉक्टर बशीर बद्र साहब, आप हमेशा याद आते रहेंगे। जब शायरी का जिक्र होगा तब आपका जिक्र होगा। और अगर हम बशीर बद्र साहब की बात करें दोस्तों, तो उर्दू गज़ल के अद्वितीय ताज़ा बयान शायर के तौर पर उन्हें जाना जाता है और बड़े संवेदी आकृति तराशे गए नए ज़माने के व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, यानी साइकोलॉजी, इंसान का जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है उसकी, या फिर जो इमोशनल माइंडसेट होता है उसके हिसाब से उन्होंने बड़े खूबसूरत से शेर लिखे। और दोस्तों अगर हम उनकी शायरी की बात करें तो बड़ी छोटी सी उम्र में, महज 7वीं जमात में थे वो, तब उनकी शायरी का शौक़ उनको बचपन से ही था। जब वो 7वीं जमात में थे तो उनकी गज़ल नियाज फ़तेहपुरी की मैगज़ीन निगार में छपी थी, जिस पर वहाँ के जो लिटरेचर का जो हलका था उसमें खलबली मच गई। 20 साल की उम्र तक पहुँचते तो उनकी गज़लें भारत में, पाकिस्तान में, वहाँ की जो प्रेस्टीजियस मैगजीन्स हैं उसमें पब्लिश होने लगी और दोनों मुल्कों के लोग बहुत प्यार से उनको सुना करते थे। और तो हमेशा कहते हैं ना कि जाने वाला ज़रूर चला जाता है, लेकिन जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाता है तो हमेशा हमें वो याद आते रहेंगे, हमेशा हम उनकी गज़लें, हम उनकी शायरी पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये यादें ही तो हैं जो हमें कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं, कभी दे जाती हैं

0: सुकून तो कभी दिल को तड़पाती हैं। चले जाते हैं लोग तो अक्सर ही ज़िंदगी से हमारी, पर ये यादें ही तो हैं जो हमारा साथ निभाती हैं। रेस्ट इन पीस बशीर साहब, ओम शांति।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। ये सिग्नेचर शेर था बशीर बद्र साहब का, और जिंदगी की शाम आखिर आ ही गई। 91 बरस की उम्र में बशीर साहब ने आज आखिरी सांस ली, और उन्हीं के अल्फाज के साथ, उन्हीं के अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो ईरान के साथ मिलकर हॉर्मूज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे उड़ा देगा। ओमान 15वां ऐसा देश है जिस पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने 7 देशों पर हमले भी किए हैं। इसमें वेनेजुएला भी शामिल है, जहाँ अमेरिका ने राष्ट्रपति का किडनैप कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले कराए जाएंगे। यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स संस्था है। इसमें अलग अलग फाइटिंग खेलों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। यूएफसी चीफ डाना व्हाइट ने बताया कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद ट्रंप ने दिया था। उनके मुताबिक इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम से मशहूर सफेद भैंसे की ईद पर कुर्बानी रोक दी गई। इस भैंसे को 3 लाख टका में बेचा गया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भैंसे को जंजीरा के रसूलपुर इलाके के रहने वाले मोहम्मद शौरोन ने 23 मई को ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए खरीदा था। इससे पहले ये राजधानी ढाका के पास नारायणगंज स्थित रबैया एग्रो फार्म में रह रहा था। 700 किलो के इस भैंसे की कीमत 550 टका प्रति किलोग्राम लगाई गई थी। तो अभी यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबर।
1: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई 4 लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810 10 Midda Furniture.
5: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, मैं हूँ शिवानी आपके साथ। और दोस्तों, खूबसूरत सी शाम है, खूबसूरत सी दोपहर है, और दोपहर धीरे धीरे रवा दवा है शाम की तरफ, लेकिन अभी शाम का कोई नामो निशान नहीं है। दिन बड़े हो चुके हैं, शामें लंबी हो चुकी हैं, अपनों के साथ वक्त बिताने का वक्त आ चुका है, और देर से ही सही समर ने दस्तक दे दी है। और समर का वक्त होता है जब हम बहुत सारा टाइम देते हैं अपने घर को, क्योंकि गेट टुगेदर्स करते हैं, हमारा घर हमें वेलकम करता है सारे दिन की थकान के बाद। और जब हम वेलकम करने के लिए अपने घर में फर्नीचर लेकर आते हैं और उसके अपने घर को सजाते हैं, घर वो होता है जहां हमारा दिल बसता है। तो हम हमेशा ऐसी जगह जाते हैं अपनी फर्नीचर की शॉपिंग के लिए जहां शॉपिंग बाद में आती है, रिश्ते पहले बनाए जाते हैं, आपको अपनापन पहले दिया जाता है, आपको रिश्ते के साथ वेलकम किया जाता है, उसके बाद बात होती है फर्नीचर की। जब अपने ही घर का फर्नीचर लेने के लिए आप अपनों क्योंकि अपनों के ही पास जाएंगे तो क्यों नहीं आपको अच्छी डील मिलेगी, क्यों नहीं आपको क्वालिटी मिलेगी। और ये बात याद रखिएगा, क्वालिटी डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव ऑल द टाइम। अगर क्वालिटी है तो महंगा भी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात कर रहे हैं मिन्हास फर्नीचर गैलरी, आपका जाना पहचाना, बेहद प्यार मोहब्बत करने वाला नाम जो हमेशा मोहब्बत को, रिश्तों को सबसे ऊपर रखता है। चार शानदार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं और इट्स ऑलवेज प्लेजर टू वेलकम पवन मिड्ढा जी ऑन मस्ती की रेलगाड़ी। पवन जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
6: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन को पहले सुन के, दूसरे मतलब रेडियो पे सुन के और 101 पे आज मैंने पहली बार सुना आपकी आवाज।
5: थैंक यू सो मच पवन जी।
6: और मेरी बहन ने तो अपनी आवाज, इस मधुर आवाज से सारी कम्युनिटी को बांधा हुआ है। मेरी दोनों छोटी बहनी हैं, चाहे शिवानी हो या शालिनी हो, और कहते हैं ना एक दूसरे का आप एक दूसरे का वो है परूप है, मतलब उससे बात करो, उससे आंसर कर लो, उससे क्वेश्चन करो, तो ये प्यार है आपका जो मेरी बहनें हैं देवियों समान है। तो आज थोड़ी खुशी है, पहले तो मैं सबसे पहले कल ईद गई और जो बहन भाई ईद मना रहे थे उनको सबकी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कहते हैं आपकी सेहत अच्छी रहे, खुश रहें, खुशहाल रहें, आपका अपने परिवार जो है और हमारी, हम भी आपको अपने फैमिली मानते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं, ये प्यार बना रहे। और दोहरी खुशी है, ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है 30 मई को लंदन स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग है, और ये जो ग्रैंड ओपनिंग सेल होगी जी वो चेन वाइड सेल होगी, ब्रम्पटन मिसिसागा स्कारब्रो कैम्ब्रिज, हर परचेज हमने फ्लायर एक अपलोड कर रहे हैं, आज रात को अपलोड हो जाएगा, $500 तक की परचेज से, क्योंकि फर्नीचर में तो 300-400 का तो कुछ आता भी नहीं है, $500 एंड अबव परचेज के ऊपर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है।
5: क्या बात,
6: बहुत सारे स्टोरों की आपने एड दिखी होगी, हमारे फ्लायर पे जो गिफ्ट है वो भी आपकी च्वाइस का, हम आपको च्वाइस दे रहे हैं, और च्वाइस दे रहे हैं साथ में मॉडल नंबर बता रहे हैं कि ये एशले की 5x8 की रग है, इसका ये मॉडल है, आप गूगल में डालेंगे उसके रियल प्राइस, क्योंकि क्या होता था शिवानी जी, हम जब देते थे ना, कल भी गए किसी होलसेलर के पास, कहते ये ले जाओ जी, $7 का फलाना स्टोर है ना, $90 के बता के गिफ्ट दे देता है। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन को चीट करूं, अपने भाई को चीट करूं कि $7 का दे के 90 का सुनाऊं, नहीं मैं वो नहीं कर सकता
5: जी।
6: हमने एशले के ही लैम्प, मतलब ब्रांड नेम आपको लैम्प, रग, उनके स्टूल और जो मेमोरी फोम के पिल्लोज हैं, हमने अलग अलग गिफ्ट आपके लिए रखे हैं, हर परचेज के साथ 500 स्टोर पे आपको गिफ्ट दिया जाएगा।
5: क्या बात है।
6: और जैसे आपने कहा कि क्वालिटी डोंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, तो मिड्ढा फर्नीचर में क्वालिटी जो है जब आप मॉडल टू मॉडल कंपेयर करते हैं हमारी प्राइस सस्ती होती है। तो आए लंदन का जो एड्रेस मैं बता दूं, जो आपके बहन भाई इस साइड में रहते हैं लंदन, वैसे तो मैं चाहूंगा आप सारे आए, आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिले, 3075 वंडरलैंड रोड साउथ, हमारी जो 5वीं लोकेशन है उसकी ग्रैंड ओपनिंग 30 मई को 12 बजे विद ऑनरेबल मेयर ऑफ लंदन, वो आएंगे, उनके आगमन से ही हमारा रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह होगी उसके बाद, और चारों पांचों लोकेशंस पार्टिसिपेट करेंगी। आप जहां भी रहते हैं, जोन सी लोकेशन आपके घर के पास है, हमारा फ्लायर जरूर चेक कर लें, अनबिलीवेबल डील्स हमने लगाई हैं, और गिव अवे जो गिफ्ट आपको दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, और जो बहन भाई वाला डिस्काउंट है वो भी हमने लिखा है कि वो एक्स्ट्रा जो कर पाएंगे, किसी पे कर पाएंगे, किसी पे नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको करके दे देंगे। एक कनेडियन मेड सेक्शनल है और वो हम 1699 का बेचते हैं, मैं एक तो आपको डोर क्रैशर बता ही दूं, तो हम 1199 का आपको हमने रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, मतलब आपको वो जो बहुत जल्दी भी बना के दे सकते हैं, तो वो हमने लगाया है। कुछ एशले के बेड हमने एक 2779 हमने लगाया है, और एक बहुत कुछ है, और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अच्छी मैट्रेस ढूंढ रहे थे तो 365 डेज की स्लीप वारंटी आपको देने जा रहे हैं मैट्रेस आप लिखी से, उसका मतलब ये है कि अगर आप मैट्रेस आपने आज ली, महीना, दो महीने, चार, छह, आठ, पूरा साल सोने के बाद आपको लगा यार गलती हो गई, ये तो सख्त आ गई, नरम आ गई, मतलब आप आए और उसे एक्सचेंज कर लें बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी हिडन कॉस्ट के, आपको ये मिड्ढा फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है, और वो तो हमने नेक्टर कंपनी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की मैट्रेस है, अगर आप 399 की भी पॉकेट क्वाल मैट्रेस लेंगे वो भी 120 दिन की गारंटी देंगे। और हम अवेयर अवेयर हम अवेयर भी हैं कि जो एड सुनने देखने में गेमेक्स में मत जाया करें, कि मैंने कल भी मैं सुन रहा था किंग मैट्रेस जी मतलब $100 की भी वो आपको 800 वाली कोई शो में नहीं देता, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, हम सभी बहन भाइयों ने स्टोर खोले हुए हैं, वो मतलब 80 की लेके ही कोई 100 का देता होगा, और आप मान लें कि 80 वाली और 100 में कितना फर्क होता होगा। हाँ, मैट्रेस तो सोने के लिए है, तो आप हम गिमिक्स नहीं करते, हम आपको आपको अपना अपना बहन भाई से रिश्ता जो आपने कहा था कि वो आपको पहले वही फील आना चाहिए मिड्डा फर्नीचर पे कि आपके परिवार का स्टोर है, आपके अपने भाई का अंकल का बड़े भाई का छोटे भाई का स्टोर है, आए अजमाएं हमें एज ए कस्टमर, अपना बनाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 5 लोकेशन, 416-901-2810, 416-901-2810, और middhafurniture.com से भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।
5: थैंक यू सो मच पवन जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग पर। जैसे नया घर में फैमिली मेंबर आता है तो बाकी घर वाले उसको किस तरीके से वेलकम करते हैं, इसीलिए बाकी जो लोकेशन है मिड्डा फर्नीचर की वो सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं सेल इवेंट में, और हम सारे लोगों का जो प्यार है वो भी शामिल है इस नई लोकेशन को वेलकम करने में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे ये लोकेशन भी आपकी सारी लोकेशन की तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। पवन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 416-901-2810 मिठास फर्नीचर गैलरी। थैंक यू पवन जी।
6: थैंक यू जी। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: 416-569-7812 शॉन एक्सप्रेस मसी की रेलगाड़ी में हूँ शिवानी आपके साथ। देओल ट्रैवल की डील्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज के बेस्ट ऑफर्स आपको मिल रही हैं दिल्ली टू टोरंटो। जून के फेयर हैं वन वे के 799। दिल्ली और या फिर बॉम्बे कहीं भी आप जाना चाहते हैं, दिल्ली या मुंबई टू टोरंटो, जून से अगस्त तक के राउंड ट्रिप का ये फेयर है 1369। अमेजिंग। और टोरंटो टू अमृतसर या फिर टोरंटो टू दिल्ली, ये है सितंबर टू अक्टूबर की राउंड ट्रिप और 1699 टू बैग्स लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। राजवीर देओल जी को कॉल कर सकते हैं 905-588-5100 और टू लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन और एटोबिको। हेड ऑफिस का एड्रेस है 6640 फिंच एवेन्यू वेस्ट यूनिट 10 एटोबिको। मेजर इंटरसेक्शन भी नोट कर लीजिए, हाईवे 27 और फिंच का। और ब्रैम्पटन ब्रांच का एड्रेस है 490 क्राइसलर ड्राइव यूनिट 45 ब्रैम्पटन। मेन इंटरसेक्शन है एयरपोर्ट और विलियम्स पार्कवे। और इटोबिको का फ़ोन नंबर आपको मैं दे दूं 905-588-5100। आई रिपीट, नंबर ऑफ इटोबिको ऑफिस 905-588-5100। ब्रैम्पटन का फ़ोन नंबर है 905-588-4200। दैट्स 905-588-4200। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। आज बशीर बद्र साहब हम सभी को अलविदा कह गए और अपने पीछे इतनी लंबी विरासत और यादें और कंट्रीब्यूशन छोड़ कर गए जो काफ़ी हैं, काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी हैं ज़िंदगी भर के लिए, हमें उनका दीवाना बनाने के लिए, है ना। तो हमारे साथ शिफाली जुड़ रही हैं, जैसा भी आपने हेडलाइंस में सुना, उन्होंने कहा वो वापस लौटेंगी। खुद लिखती भी बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छी वो शायरात हैं और उनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बातें और उनकी कुछ यादें शेयर करेंगी। तो ओवर टू शिफाली।
2: वो ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये ज़रूरतों का खुलूस है कि वो मतलबों के सलाम हैं। बशीर साहब ने 91 बरस की उम्र में इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको सीधे लिए चलते हैं बशीर मंजिल, वो बशीर मंजिल जो बशीर साहब का भोपाल में पहला और आखिरी पता रहा। कैसे बीता आज का दिन? बीते 15 बरस से लापता रहे बशीर साहब। लापता इसलिए कह रही हूं क्योंकि डिमेंशिया ने उन्हें घेर लिया था, याददाश्त जा रही थी उनकी, और धीरे धीरे अपने शेर, अपने जो अल्फाज हैं वो भी भूलने लगे थे। हालांकि उनके बेटे तैयब रोज कोशिश करते थे कि अब्बा को अपने शेर याद आ जाएं, लेकिन बीता एक हफ्ता बहुत मुश्किल का था। मुस्कुराना भी छोड़ दिया था इस महबूब शायर ने। और आज वो गली जो अमूमन बड़ी बड़ी गाड़ियों से घिर जाती तो पता करना मुश्किल नहीं होता था कि मुहाने पर बशीर साहब का घर है, उस गली में सन्नाटा था, इंतज़ार था, दुनिया का इंतज़ार, बशीर साहब के चाहने वालों का इंतज़ार। सोशल मीडिया पर ढेर सारी प्रार्थनाएं बशीर साहब के लिए, यादें, नमन, उनके शेर साझा किए जा रहे हैं। लेकिन मोहब्बत लुटाने वाले शायर का जो आखिरी सफ़र था, जो आखिरी सलाम था, वहाँ वो मोहब्बत दिखाई नहीं दी। बशीर साहब का अपना शेर है जो उनके इंतकाल के बाद मौजू हो गया। 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, एक ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। ये एक शहर की बात नहीं, ये एक शायर की बात नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में ये फ़िक्र की बात है कि हम सिमटते जा रहे हैं, हमारे जज्बात सिमटते जा रहे हैं। जबकि बशीर साहब जैसे शायर तो अब भी हमें मोहब्बत दे कर गए हैं, मोहब्बत सिखा कर गए हैं, और आने वाले वक्त में जब जब हमें अपने जज्बात के इजहार की ज़रूरत होगी, हम हाथ फैलाए खड़े होंगे बशीर साहब के सामने उनके शेरों का सहारा लेकर। अंजुम बाराबंकवी बड़े मशहूर शायर हुए और बशीर साहब को अपने अब्बा की तरह देखते थे। सुनिए ज़रा उन्होंने बशीर साहब को कैसे याद किया।

कोई फूल सा हाथ कंधे पे था, मेरे पांव कांटों पे चलते रहे। बशीर बद्र मॉडर्न गजल के इंतहाई अहम तरीन शायर थे। जब तक नई गजल रहेगी, जब तक बशीर बद्र का जिक्र होता रहेगा। मगर मैं कुछ जाती जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार हम लोग ट्रेन से, एक जमाने में भोपाल से बराह रास कलकत्ता ट्रेन नहीं जाती थी, यहाँ से बोगी लगती थी और जबलपुर में जाके वो बोगी हावड़ा मेल में लगती थी। तो वो थोड़ी कंजूसी उनके मिजाज में थी, इन इन सिक्योर महसूस करते थे हमेशा अपने को। तो मैंने कहा कि खाना मंगा लेते हैं, पैसे हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप खाइए, हमको भूख नहीं है। तो हमने खाना मंगा लिया, तो चावल ज्यादा थे, हम चावल खा गए, रोटी बच गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये अब आपको देन इखलाकन मैंने पूछ लिया, खा लीजिए। तो उन्होंने मुझसे ज्यादा खा लिया, भूखे रहेगा। तो अगले स्टेशन पे फिर बनारस आया तो वहाँ भी खाना मंगाया मैं। तो हमने कहा अभी बता दीजिए वरना खाना मंगा लूंगा, अगर बचेगा कुत्ते को फेंक दूंगा, आपको नहीं दूंगा। और फिर मैंने ये बदतमीजी की, चूंकि वो कंजूसी करते थे। मगर वो बाप की तरह जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी, जो सुलूक बड़े का होना चाहिए, ऐसा नजर नहीं आता है। 100 खलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, एक जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। ये कहने का हौसला सिर्फ बशीर बद्र को हो सकता है।

0: हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
1: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Shagan ka din chadhega, sajna ghar aayenge, toli lekar jayenge, dulhan sajegi, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 9054585300।
4: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफ टाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफ टाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 9052061008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335।
5: आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। ये सिग्नेचर शेर था बशीर बद्र साहब का। और जिंदगी की शाम आखिर आ ही गई, 91 बरस की उम्र में बशीर साहब ने आज आखिरी सांस ली। और उन्हीं के अल्फाज के साथ, उन्हीं के अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे उड़ा देगा। ओमान 15वां ऐसा देश है जिस पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने 7 देशों पर हमले भी किए हैं, इसमें वेनेजुएला भी शामिल है, जहाँ अमेरिका ने राष्ट्रपति का किडनैप कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले कराए जाएंगे। यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स संस्था है। इसमें अलग अलग फाइटिंग खेलों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। यूएफसी चीफ डाना वाइट ने बताया कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद ट्रंप ने दिया था। उनके मुताबिक इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम से मशहूर सफेद भैंसे की ईद पर कुर्बानी रोक दी गई। इस भैंसे को 3,00,000 टका में बेचा गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भैंसे को जंजीरा के रसूलपुर इलाके के रहने वाले मोहम्मद शौरोन ने 23 मई को ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए खरीदा था। इससे पहले ये राजधानी ढाका के पास नारायणगंज स्थित रबैया एग्रो फार्म में रह रहा था। 700 किलो के इस भैंसे की कीमत 550 टका प्रति किलोग्राम लगाई गई थी। तो अभी यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबर।
2: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: दोस्तों 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जानने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच. गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स.
1: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी. और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ट्रेडिंग करने से, तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिस हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाह, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस?
2: एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है सारे का, सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपनी पिकनिक चेयर्स रखें साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. You're never too, young to start, never too early to start. कभी भी आए, आपको ऐसी opportunity हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: Wonderful. तो दोस्तों 10 नंबर के फासले पर है ये opportunity. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. Right away call करें और Saturday के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. Thank you, Rafi जी. फिर आपसे जुड़ेंगे. All the best and take care.
2: Thank you. Take care.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का दौर बीती शाम से शुरू हो गया. हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी और सिरसा समेत 8 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे. हरियाणा के फतेहाबाद में तेज आंधी के कारण मोबाइल टावर टूट कर लटक गया. इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी बारिश हुई है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में तेज आंधी से पेड़ उखड़ कर गिरा. रायपुर में भी तेज आंधी चली, बारिश आई. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी तेज बारिश हुई है. कई जगह ओले भी गिरे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक कल से यानी शुक्रवार से भारत में गर्मी से राहत मिलने के दिन यानी कूल डेज आ जाएंगे. 15 से ज्यादा राज्यों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है, जिसका बेसब्र होकर भारत इंतजार कर रहा है. उर्दू गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र नहीं रहे. उन्होंने गुरुवार दोपहर 12:15 पर भोपाल में फानी दुनिया को अलविदा कहा। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे। उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी दिलों में धड़कते हैं। उनको आज शाम 7:30 भोपाल के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र जब उनके शेर गुनगुनाती तो बशीर साहब के चेहरे पर शादाबी की हल्की सी झलक उभर आती थी। कभी कभी वो खुद भी मिसरा पूरा करने लगते थे। एक वक्त था जब उनके मुशायरे जो होते थे बशीर साहब के बिना अधूरे माने जाते थे। उनकी मौजूदगी महफिल की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। जब भी उन्हें मुशायरे की याद आती थी तो डिमेंशिया में भी, उस टूटती हुई याददाश्त में भी, वो इरशाद इरशाद कहने लगते थे। भारत में बकरीद मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला गया। वहीं यूपी, दिल्ली और बंगाल में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। कई जगह ड्रोन से निगरानी रखी गई। उत्तराखंड और चंडीगढ़ में कुछ नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे, जिन पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। और अब खबर बॉलीवुड से। फिल्म डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच विवाद जो हुआ, उसके बीच में यह दावा किया गया कि मार्च 2026 में हुई एक मीटिंग में रणवीर की टीम ने एक्सेल को 10 करोड़ और भविष्य की फिल्मों के लिए 25 करोड़ की फीस में छूट का ऑफर दिया था, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने इसे मना कर दिया। गौरतलब है कि सोमवार को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी किया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें आमिर खान, साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी समेत कई जाने माने लोग शामिल हुए थे। इसी मीटिंग में रणवीर सिंह की टीम ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा। सोर्सेज बता रहे हैं कि रणवीर की टीम ने एक्सेल को तुरंत 10 करोड़ का ऑफर दिया। ये भी कहा कि अगर दोनों भविष्य में फिर से किसी फिल्म में साथ काम करते हैं तो रणवीर अपनी फीस पर 25 करोड़ का डिस्काउंट देंगे। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
5: Jamming as much variety into your workday as possible.
6: Radio Resync complete.
7: Hit music.
8: Hit after hot hit.
9: फोर वन सिक्स फाइव सिक्स नाइन सेवन एट वन टू। मैं हूँ शिवानी। मस्ती की रेल गाड़ी में आप सभी का वेलकम। एक बार फिर से 3:12 का वक्त है। कहते हैं सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, जिंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए, मौसम का मज़ा लेना है तो किसी का प्यार साथ में रखिए और उसके बाद भी कुछ और मज़ा लेने की कसर बाकी छूट जाए, गुंजाइश बच जाए तो मेरे साथ ये गाना गुनगुनाइए। एंजॉय दिस ट्रैक ओनली ऑन शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी।

0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड. घर हो या बिजनेस, अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए. बिल्कुल फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं, स्टाइलिश डिजाइंस हैं और स्पेशल ऑफर फिर से सुनिए, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. कॉल कीजिएगा 416-831-4790, 416-831-4790, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन. कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल भी, प्रोटेक्शन भी. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी.
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है.
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड.
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232.
4: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5, $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% $4,900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
0: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना. शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.

0: 416-901-2810. भाई जब जैसे जैसे हम वीकेंड के करीब आते हैं ना, ये नंबर हमारी ज़ुबान पे सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने घर को एक नया लुक देना चाहते हैं, घर को पैम्पर करना चाहते हैं। घर इतना कुछ हमारे लिए करता है, सारे दिन की दौड़ भाग के बाद हम अपने घर का मेन डोर खोल के अंदर आते हैं तो हमें लगता है स्वर्ग है तो यही है। और उसमें हमारी बैठने की जगह जिसमें हम पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं और सारे दिन की थकान मिटाते हैं, वो जगह ख़ास होती है, बहुत ख़ास होती है, दिल के करीब होती है। और उस जगह पे जो भी चीज़ रहेगी वो ऐसी जगह से आनी चाहिए जहाँ भी जगह जो है, जहाँ वो डेस्टिनेशन है, वो लोकेशन है, वो इस बात को समझते हैं कि दिल क्या होता है, घर क्या होता है, घर का कम्फर्ट क्या होता है, अपने क्या होते हैं और इन सब के साथ साथ रिश्ता बनाना क्या होता है। तो पवन मिठा जी, जो किसी के अंकल हैं, जो किसी के कज़िन हैं, जो किसी के बड़े भाई हैं, और बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, रिश्ता पहले बनाते हैं, शॉपिंग और प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है। और नंबर एक ही रहता है जो सारी लोकेशन से कनेक्ट करता है, चारों लोकेशन से। बड़ी जल्दी पांचवी लोकेशन जुड़ने वाली है। बहुत बहुत बधाइयों के साथ वेलकम करते हैं पवन मिठा जी का। लेकिन नंबर पहले बता दूँ, 416-901-2810। पवन जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम वंस अगेन।
1: गुड आफ्टरनून जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिडा फर्नीचर, फाइव लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन, ग्रैंड ओपनिंग, सॉफ्ट ओपनिंग तो हमने कर दी थी। अब आज भी आ सकते हैं, मैं लंदन ही आया हुआ हूँ, और लेकिन आपका प्यार जो ग्रैंड ओपनिंग पे, मैंने पिछले लिंक में कहा था कि अगर आप हमारी किसी स्टोर के आसपास से जा रहे हैं तो हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार चाहिए, फोन से भी कर सकते हैं। दिल कहते हैं ना, दिल पास होना चाहिए, मतलब अपने दिल को, दिल की राह होती है, और आप हमारे स्टोर पे आएंगे तो अच्छा लगेगा। और आपका प्यार पहले चाहिए, आपका प्यार के जो है उसके हम ऋणी हैं जो इतने सालों से, और आपको भी क्रेडिट जाता है, शिवानी और शालिनी को भी जाता है कि जब से आपसे रेडियो के माध्यम से जुड़े तो एक तब वो बहन भाई वाला रिश्ता जो उसका, और ये रिश्ता जो बना और फिर एक्सटेंडेड फैमिली बनी, प्यार मिला, वैल्यूएबल बिजनेस मिला, एक दो तीन चार लोकेशंस हुई और आज वो पांचवी लोकेशन होने जा रही है। तो ये सब आपकी, अगर कहते हैं ना आप ना वो बस करने वाला वो है ना, एक कहते ना, करते हो तुम मेरे गुरु देव, करते हो गुरु महाराज, करते हो आप मेरा नाम हो रहा है। सिर्फ नाम मिड्डा फर्नीचर का है, लेकिन करने कराने वाला ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला भी खुद नहीं आता कभी, ना तो बाबा नानक जी आएंगे, ना ही अल्लाह आएगा, ना ही राम आएंगे, वो किसी के रूप में आते हैं तो किसी के द्वारा ही आते हैं, कभी उसको तो निराकार है, किसी ने देखा नहीं है। तो मेरे लिए वो आप सब में है और आप सभी का मुझे प्यार मिल रहा है, तो मैं अपने आप को दुनिया का दौलतमंद, प्यार,
0: बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत सोच है पवन जी आपकी,
1: वो आपको अपने आप का दौलतमंद मानता हूँ। तो ये प्यार बना रहना चाहिए, वो प्यार बिजनेस तो आप देते आ रहे, क्योंकि अगर बिजनेस ना चल, आप ना देते तो बहुत, मतलब भगवान करे सभी का चलना चाहिए। अगर आपने तो एक से दो से हमारी ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है, और हमने भी फिर वापस रिटर्न गिफ्ट भी दिया आपको, हमने कभी गिमिक्स नहीं करा। जो डिस्काउंट मिलता है वो, जैसे कंटेनर लाते हैं 30% सस्ता आता है, आपको 30% सस्ता देते हैं, 20% सस्ता आता है 20% देते हैं,

0: वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, वॉल्यूम डिस्काउंट आपको वापस करते हैं। तो ग्रैंड ओपनिंग है, जब खुशी होती है तो फिर तो कहते हैं ना त्योहार होता है, तो आपको हर परचेज के साथ गिफ्ट देंगे। मैंने पिछले दिन में कहा था वो भी ब्रांड नेम देंगे, एश्ले की वॉल आर्ट देंगे, मॉडल नंबर बताएंगे, तीन में से एक की च्वाइस देंगे ताकि आपको जो पसंद हो, जो आपके घर में लगे, तो वो वाली आइटम होगी। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं भैया ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो रग, मेरे घर में तो बहुत पिक्चर लगी हुई है, बहुत सारी आर्ट है, बहुत सारा आए हुए है, फिर उसका कुछ और निकालेंगे, आपको और हल देंगे ताकि आपका प्यार हमें चाहिए। ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग का फ्लायर हमारा लग जाएगा, अभी आज वेबसाइट के ऊपर लगा दिया जाएगा, लेकिन स्टोर में आज भी जाते हैं तो वही डीलें आपको ऑफर की जाएंगी। और कहते हैं ना अभी वो जो पिक्चर अभी बाकी है, अंदर की बात है, बहन भाई वाला जो हुज वाला डिस्काउंट होता है कि भैया वो मेरा वो क्या बनता है, तो वो कई बार वो कहते हैं ना वो तो बहुत वो अच्छा होता है, मतलब प्यार होता है, वो एक्चुअल में रियल प्यार होता है।
1: बिल्कुल
0: कहती है ना भैया मैं तो ये और 50 छुड़वाऊंगी, तो प्यार उस प्यार में भी बहुत बहुत वो सबसे बड़ी दुआ भी होती है, ना कि वो लालच के दोनों तरफ नहीं होता, वो हुज होती है हमारे तरफ, मतलब मुझे हिंदी में नहीं पंजाबी में तो हुज ही कहते हैं, कि मान होता है कि मैं बहन का कर रहा हूँ और बहन मुझे, कई बार हम भी कह लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो बहन जी आप 20 फालतू दे दो, और आप प्यार से दे देते हैं, रिश्ता बना रहे, ये प्यार बना रहे। आप आए मिड्डा फर्नीचर, आपके अपना स्टोर है जैसे आपने शुरू में कहा था, जैसे यूएस स्टोर दिस इज, तो पहले आपको वो वाइब मिलनी चाहिए
1: जी,
0: मेरे कहने से नहीं,
1: बहुत
0: मेरे
1: जरूरी
0: कहने को तो हर बंदा अच्छा है, जब आपका दिल कहे ना कि हमें लग रहा है कि मेरा स्टोर है, मुझे लग रहा है कि हमें ये डील अच्छी मिल रही है, हमें यूं लग रहा है कि प्राइसें भी बहुत अच्छी हैं, जब आपको सारी चीजें में प्रूव हो जाए तब तो फिर तो हमारा हक बनता है कि आपका वैल्यूएबल बिजनेस आप हमें देंगे। तभी तो मैं कहता हूँ ना, एक बार आए तो सही, आजमाए तो सही, अपना बनाए तो सही, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 एंड मिड्डा MIDHA furniture.com इज द वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 416-901-2810 लंदन में धूमधाम से सॉफ्ट ओपनिंग के बाद इस 30 तारीख को ये शो, ये जो स्टोर है ये आपके को डेडिकेट कर दिया जाएगा, लेकिन सारी लोकेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं पवन जी इस सेल्स में?
0: जी बिल्कुल, चेन वाइड जो सेल रहेगी, ब्रैम्पटन, मिसिसाजा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन में तो होगी, और बिल्कुल चारों पांचों स्टोर
1: आपके
0: हैं, और बिल्कुल सारों पे एक ही फॉर्मेट होएगा, और आपके लिए डील्स डील्स डील्स एंड गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट एंड प्राइस ऑलवेज लोएस्ट प्राइस इन द कनाडा की गारंटी देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच,
1: अमेजिंग, थैंक यू पवन जी, थैंक्स अ लॉट। और कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक और 1978 की स्मैशिंग हिट डॉन से ये गाना।

0: मस्ती की रेलगाड़ी 416-569-7812 मैं हूँ शिवानी आपके साथ देओल ट्रैवल की डील्स पे लिए चलते हैं। मिड जून से पहले आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए जो ऑफ़र है उसको अवेल करना चाहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ऑफ़र है। टोरंटो टू दिल्ली वन वे विथ टू लगेज $849 ओनली। आफ्टर मिड जून $999 में आपको मिल रहा है टू लगेज के साथ। और टोरंटो टू दिल्ली जुलाई में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। फिर से मैं बता दूं, टोरंटो टू दिल्ली वन वे $1049 विथ टू लगेज। लास्ट मिनट डील्स अवेलेबल हैं और इटोबिको में और ब्रैम्पटन दो ऑफिस से आपको सर्व करते हैं। कॉल कीजिए, इटोबिको में आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 905-588-5100, 905-588-5100। ब्रैम्पटन ऑफिस का नंबर 905-588-4200, that's 905-588-4200।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: लेक डेदा प्लांसी पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता एसडी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफरोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
2: Sean Express, making you bilkul rich.

0: मस्ती की रेलगाड़ी, मैं हूँ शिवानी आपके साथ। और दोस्तों, बड़ा खूबसूरत सा मौसम है, बहुत प्यारी सी शाम है, और हम आपके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, जिससे आप अपनों के साथ बहुत सारा अच्छा अच्छा सा वक्त गुजारते रहें। और अगर सेहत में थोड़ी सी नो, ये ज़िंदगी है, पहले वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था कि हमारा जो खाना होता था, हमारी जो लाइफस्टाइल होती थी, वो ज़्यादा एक प्योर होती थी, टाइम ज़्यादा होता था जो हम अपनों को देते थे। आजकल बड़ी भाग दौड़ का ज़माना है, लोगों के पास बैठकर ढंग से, इत्मीनान से, शांति से खाना खाने का भी टाइम नहीं है। बस जो भी मिलता है उसको खा लेते हैं, बस ऐसा लगता है कि बस एक मील ले लिया, दूसरे मील के इंतज़ार में जब आएगा तब देखा जाएगा। इस चीज़ की सीधा सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, लिहाजा किसी भी उम्र में कभी भी आजकल बीमारियाँ हो जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली सीरियस बीमारियां हो जाती हैं। अब घर का जब एक मेंबर बीमार होता है तो देखिए पूरे घर वाले जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि सबका जो अटैचमेंट उस इंसान के साथ होता है, सब चाहते हैं कि सेहत अच्छी बनी रहे। अब सेहत कैसे अच्छी बन सकती है? दवाइयां खाएंगे, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर से सेहत ख़राब हो जाएगी। और अगर हम नेचुरल तरीके से सेहत की बात करते हैं, पिछले 9 जनरेशन से आयुर्वेद और हर्ब्स गुरुजी, और पिछले 9 जनरेशन से उनकी पूरी फैमिली, उनके बड़े, उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स इसी प्रोफेशन में हैं। और मुगलों के टाइम में और राजा महाराजाओं के वक्त में उनके राज वैद्य हुआ करते थे, तो यहीं से गुरुजी ने सारा सीखा है। और रेयर रेयर जड़ी बूटियां लाते हैं, खुद दवाइयां बनाते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारियां हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं, और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बड़ी खुशी खुशी आते हैं और हम सबको खुश कर जाते हैं। 4374383399। गुरुजी, आपके मुस्कुराहट का राज क्या है, पहले तो ये बताइए। वेलकम टू द शो।
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी। आप ये बात बताया था वही सच्चाई है। क्या है, हमारा खाना पीना से हमारा हेल्थ इश्यूज आता है। आजकल खाना में सारा केमिकलाइज्ड खाना ज्यादा है, दूसरा रोजन का खाना ज्यादा है, और तीसरा हमारा जंक फूड ज्यादा है। ये तीन चीज ये स्लो पॉइजन है।
0: सही।
1: ये स्लो पॉइजन जब शरीर में एक एक बॉडी को एक एक प्रॉब्लम आता है, एक सारा को एक ही प्रॉब्लम नहीं आता है, वैसा हमारा कारण है। पहले देखिए 60-70 पहले लोगों को ताकत, अभी 30 एज का नहीं होता है, उसको ओनली खाना के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए क्या होता है, नेचुरल तरफ ग्राइंड वो कैसा भी एक दिन को मल्टी ग्रेन से लेना पड़ता है, तो बहुत अच्छा है। और वैसा प्रॉब्लम होता है, हमारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है ये केमिकल्स। देखो बहन जी, पहले 13-14 साल को बच्चे लोग मेच्योरिटी होता है, अभी 10 एज का 10 साल का बच्चा लोग बच्ची लोग मेच्योर हो जाता है, वो सारा हमारा वो क्या बोले केमिकल्स कहता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है उसी कारण से। और बड़ा लोगों को क्या होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाता है, वो आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट में लिगमेंट इतना कम हो जाता है, जॉइंट में वो यूरिक एसिड बैठता है, इस वजह से बॉडी में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो मसल्स भी वीकनेस हो जाता है, ताकत भी कम हो जाता है। उसके लिए हमारा पास है, मैं इसके लिए अच्छा अच्छा हर्बल्स हिमालय से, कच्ची हर्बल्स रूट्स हिमालय से, केरला से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से मैं लेकर आके उसको प्रोसेस करके लोगों को दे रहा है। उससे सारा बीमारी, स्किन को बीमारी है, बॉडी में हीट होता है, गर्मी होता है, और सिर में दर्द होता है, एसिडिटी होता है। अभी हमारा कनाडा में ये क्लाइमेट में थोड़ा बहुत लोगों को एलर्जी होता है, मिसिंग होता है, नोज ब्लॉक होता है, उसको लिए भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग ठीक हो गया। शिवानंद जी, आपको बात सुन के, आपको शो सुन के बहुत लोग आ गया था पहले से।
0: थैंक यू सो मच गुरुजी,
1: सारा लोग आपको आशीर्वाद देता है, आपको, शिवानी को, आमिर भैया को,
0: थैंक यू सो मच,
1: सारा लोगों को करता है बहुत संतोष। मेरे को भी उसको वो लोगों को मुंह से मेरे को ठीक हो गया वैसे बोले तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और गुरु जी, देखिए ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि गुरु जी की जो सेवा भाव है उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इतनी लंबी लाइनअप गुरु जी के यहाँ रहती है। तो गुरु जी के यहाँ तो लोग लाइन लगा के बस अपनी दुख दर्द दूर करने आते हैं, तकलीफ़ दूर करने आते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। और बड़ी कन्वीनियंटली 4 दिन ब्रैम्पटन में होते हैं। देखिए आज थर्सडे है, तो आज से लेकर संडे तक गुरु जी ब्रैम्पटन में होंगे और मंडे ट्यूसडे वेंसडे गुरु जी स्कारब्रो में होते हैं। तो आपको कहीं पे भी उनसे मिलना है तो इन दिनों के हिसाब से आप अपने डे प्लान कर सकते हैं। एक नंबर हमेशा अपने पास रखिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने जान पहचान वालों को दीजिए, क्योंकि जब वो अच्छे रहेंगे तबीयत से तो आप भी अच्छे रहेंगे। तो सबकी तबीयत अच्छी हो, सब दुख दर्द से और तकलीफ़ों से दूर रहें, उसके लिए सिर्फ 10 नंबर के फासले पर आपके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो जड़ से आपकी बीमारियां ख़त्म करेगा। 437-438-3399 गुरु जी का नंबर है, 437-438-3399। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
1: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam, Sanjeev Puri.
7: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain, jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
6: You will get full refund if super visa is declined.
7: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
8: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
9: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
10: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
8: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

और इसी के साथ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर आपसे विदा, और इस गाने के साथ छोड़े जाती हूँ आपको. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. मैं शिवानी अब लेती हूँ आपसे इजाज़त. नंबर ज़रूर बता दूँ, 416-569-7812. झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था. मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझको कि मुस्कुरा रही है वो. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है. वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है. अपनों को हमेशा अपने पास रखिए, सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाई, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। रोज आंख खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। रोज आंख खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो भी है प्रेम। कितनी मोहब्बत है तुमसे ये कहना नहीं आता, कितनी मोहब्बत है तुमसे ये कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं तुम बिन रहना नहीं आता। हाँ जी बिंदर भाइयों, कौन कहता है मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती। जिगर होना चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए। प्रेम की अद्भुत बातें, ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009
1: Dr. Neel Gajjar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
5: वाह मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे। व्हाट इज द रीजन?
6: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
5: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
7: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनिएंटली ओपन 24/7।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
8: जी मित्र भाइयों, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन, जाने माने शायर डॉक्टर बशीर बद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 91 इयर्स की एज पर इस दुनिया को अलविदा कहा। बशीर बद्र साहब को दिल से सलाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उनके चुनिंदा शीर हम जरूर सुनना चाहेंगे। उन्होंने लिखा कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता वही हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात। और उन्होंने एक और शेर में जिंदगी की बात करते हुए खूबसूरती से लिखा कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। आजी मित्र भाइयों, यानी कि दिल की जो मासूमियत, जो मोहब्बत होनी चाहिए, उसे पहचानने में या उसे बनाने में जिंदगी या बरसों बीत जाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। यानी कि उन्होंने मेहनत पर भरोसा करना, इस बात पर हमेशा जोर दिया, किस्मत हमेशा बदल सकती है मेहनत और विश्वास से। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो कभी शर्मिंदा ना हो। यानी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, एक दूसरे से दूरियां और नजदीकियां बनती रहती है, लेकिन दूरियां जब बने तो मोहब्बत की वो बातें मत भूलना, ताकि फिर से मिलो तो एक दूसरे के प्रति मलाल रहे। उन्होंने लिखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हां जी विंद्र भाइयों, कितने किलोमीटर चले ये नहीं देखा, लेकिन चलते ही गए, कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मंजिल तक पहुंचे। डॉक्टर बशीर बद्रजे की मंजिल लोगों का दिल था और वहां तक वो जरूर पहुंच गए। और उनका एक शेर आखिर में सुनाना चाहूंगा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जी बेंद्र भाइयों, बशीर बद्र साहब दिल से याद करते हैं, सलाम करते हैं। ये हिडो वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए। और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट्स।
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
13: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
14: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
15: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
16: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
17: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं जिसमें खांसी जुखाम बुखार स्लिप एंड फॉल वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस फ्यूनरल इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
18: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस। कॉल करें 416-660-8545।
19: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% ਤੇ $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
4: Radio Voice, aapki pehli choice, 416-660-8545.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कर्जा हो गया है, ऑल डेट सॉल्यूशंस के सिद्दीक जी से मुलाकात करें। कर्जे की फिक्र है, ऑल डेट सॉल्यूशंस के सिद्दीक जी से मुलाकात करें। और कर्जे से बाहर आना है तो ऑल डेट सॉल्यूशंस के सिद्दीक जी से मुलाकात करें। नंबर टू कॉल इज 4166710577 4166710577। मल्टीपल लोकेशन से आपकी सेवा में। एक लोकेशन का एड्रेस जरूर बताना चाहेंगे, 155 रेक्सडेल बुलेवर्ड सूट नंबर 704 इन इटोबी को। बिंद्र भाइयों, सीधे चलते हैं सिद्दीक जी के पास। सिद्दीक जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए रेडियो वॉइस में आपका तहे दिल से स्वागत है। प्लीज हमारे श्रोताओं को आज किस बात पर एजुकेट करना चाहेंगे? ओवर टू यू सर।
6: चेतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल, अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई कर्जों का इश्यू है, चाहे वो छोटे कर्जे हैं या कर्जे ज़्यादा हैं, पर्सनल कर्जे हैं, बिजनेस के कर्जे हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीरियस लें, इग्नोर ना करें, क्योंकि मैंने ये पिछले 25-26 सालों में देखा है कि ज़्यादातर लोग जब उस पर छोटा कर्जा होता है उन पर, तो वो इसकी केयर नहीं करते, मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और उस वक्त रियलाइज करते हैं जब डीप डेट में चले जाते हैं। तो आप इस टाइम का इस बात का खास ख्याल रखें कि अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया ना हो आपका, चाहे वो $5 $10 इंटरेस्ट में जा रहे हैं, उसको भी आप बचा सकते हैं अगर आप कॉल करें। नंबर है 416-671-0577 416-671-0577 पे कॉल करके, चाहे आप फोन से इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना। आए, इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप घर बैठे किसी फैमिली फ्रेंड से मशवरा करके मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे तो आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा इंटरेस्ट में, आप डीप डेट में भी जाएंगे और क्रेडिट भी आपका ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड का है, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं, या इनकम टैक्स का मामला है CRA के साथ पर्सनल, या बिजनेस का GST आउटस्टैंडिंग है, पेरोल वे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, या कोई हैस कैप्सिबल लोन लिए थे पे नहीं कर सके वापस, या कार ट्रक जैसे फाइनेंस किया था पेमेंट नहीं कर सके उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं, या कोई प्री कंस्ट्रक्शन कंडो या घर बुक किए थे जो प्राइसेस कम हो गई हैं तो आप क्लोज नहीं कर सकते और बिल्डर आपके पीछे आ रहा है, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं 416-671-0577 416-671-0577। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर आपको ज़रूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊँगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दूँगा। दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूँगा तो इस चीज़ की भी मैं गारंटी करता हूँ कि जो आपसे वादा करूँगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। और अगर इसमें आपका क्रेडिट ख़राब होता है या ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको। हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में, अगर उस पर आप एनरोल होते हैं, मेरे एडवाइस पे अमल करते हैं तो बहुत जल्द आपको वापस क्रेडिट मिल सकता है। इसलिए अगर आप एक कर्जा है चाहे छोटा या ज़्यादा, परेशान ना हों, नंबर है 416-671-0577। लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्काब्रो में है मार्कमैन अलेक्जेंडर के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सल के पास, मिसिसागा में है डिक्सी 401 के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बुवेड के।

4176-671-0577 alldeadsolutions.ca website. ये हिडो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
5: यहां से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
6: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस. कॉल करें 416-660-8545.
11: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com. गुरुलक्ष्मी

एंड हियर वी मीट अगेन ऑन द डे जो खिला खिला है मस्त मस्त रूप से। तापमान बहुत बहुत अच्छा रहा इस दिन भर में और तड़पा गया कहीं कहीं हमें कि झूमती बरसात दर्शन दे दे कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे और सूरज को दिखा दो भाई ठेंगा रे। अपना भी क्या होता है ना वैसे कि तसल्ली ही नहीं होती, गर्मी होती है तो बारिश चाहिए होती है, बारिश होती है तो धूप चाहिए होती है ना। वी आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर वट वी आर लैकिंग, राइट? सो ऑन दिस लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट भाई वट वी हैव वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड वेदांत ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि ना मानो तो जिंदगी एक लंबी कठिन एंड समटाइम्स मे बी बोरिंग सी रह गुजर सी, और मानो और जियो तो जिंदगी खूबसूरत खुशनुमा दो पल की।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my RealCo, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: On your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Today's trends and trolls. Kuch seedhi baat, kuch golmol.

मैं तो बस फॉलो करती और आप लोगों से शेयर करती थी कि आज के कुछ चर्चाफुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है। तो भाई सबसे पहले ऑन्टेरियो सरकार का प्लान फॉर प्रोविंशियल एक्सपेंशन, जिस पर से ताज़ा ताज़ा पर्दा उठाया है फोर्ड ने, जहां कनाडा डिफेंस पर अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहा है टू मीट नाटो टारगेट्स, वहीं फोर्ड ने सोच लिया कि ये मैसिव फेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ना ऑन्टेरियो ही सिक्योर कर ले। यानी 2035 तक 43,000 से ज़्यादा नौकरियां, मोर मनी इन इकोनॉमी एंड मोर मिलियंस टैक्स रेवेन्यू में ये आइडिया है। ऑन्टेरियो का आइडिया ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सप्लाई का हब इसे बना दिया जाए। चर्चा में है देन यूएस एंड ईरान वॉर का स्टेटस, लुक्स लाइक ए टेम्परेरी एग्रीमेंट इज देयर, जिसमें करंट सीज फायर अगले 60 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नथिंग ऑफिशियल येट, क्योंकि ना तो अभी ईरान के किसी लीडर ने कंफर्म किया है, ना ही ट्रंप ने कोई साइन किया है। हालांकि ट्रंप ने लेटली ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स है, सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, हम देख लेंगे कोई करेगा। तो ओमान ने सबकी तरह अगर बिहेव नहीं किया तो उड़ा दिया जाएगा। दैट्स रियली अ धमकी। देन चर्चा में है कनाडा की स्वीडिश साप ग्लोबल आई प्लेन डील की बात जो हो रही है, जो उन्होंने अमेरिकन बोइंग E7 के ऊपर चुनी। एज पर पब्लिक कोई कह रहा है कि क्या भाई हमने बड़े भाई यूएस को क्या हम धोखा दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि भाई आफ्टर ऑल दोज यू नो कनाडा इज 51st स्टेट जाइब इतने टाइम से, और जो भी टैरिफ वेरिफ का चल रहा था गेम, किसी भी दोस्ती के लौंडे छोड़ा कहाँ है गुंजाइश। चर्चा में है ओलिविया चाओ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यू नो सेकेंड टर्म के लिए, जो मेयर की सेकेंड टर्म के लिए वो लड़ेंगी चुनाव, उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है। चर्चा में है क्लाउड ओपस 4.8 जो बना है ऑन ओपस 4.7, कहा जा रहा है कि ये शार्पर जजमेंट के साथ है, मोर ऑनेस्टी लिए है अबाउट इट्स ओन प्रोग्रेस, इंडिपेंडेंटली ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है, इसे कोई सुपरविजन नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करते हुए मल्टीपल टास्क कर सकता है और फास्टर है, चीपर है, यस अपनी गलती मान लेता है, दैट्स अ रेयर थिंग है ना ह्यूमंस में भी। देन ट्रेंडिंग इज दैट्स अ सैड न्यूज, हॉकी लीजेंड जो है जिन्होंने 4 बार स्टेनली कप भी जीता, क्लॉड लिमिट्स 60 वर्ष की उम्र में हमें छोड़ के चले गए हैं। एंड ऑल्सो बशीर बद्र साहब की न्यूज ट्रेंड हो रही है, रिनाउंड उर्दू पोएट है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, वो भी 91 की एज में हमें छोड़ के चले गए हैं। वेल बशीर बद्र साहब को जैसे मैंने कहा मैं बहुत पढ़ती आई हूँ, और कुछ इनकी लाइंस तो आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, जहाँ वो लिखते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: 35 Resolution Drive, Brampton, in Walmart Plaza. Call 905-460-8888. That's 905-460-8888.
1: Serving from two locations. Best service, best price, Specs Express ke saath.
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
3: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate savings sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th ko apne calendar mein mark kar lo. Don Valley North Hyundai par hamari team baat karti hai Hindi, Urdu, Punjabi aur Tamil mein. Visit kariye donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave aur Denison Street,
4: North Hyundai, doing business your way.
3: Member of Wayne's Auto Group.
2: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: रिमाइंडर, आज 6 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव मनोजा जी विद द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है और एक कहानी भी सुनाएंगे हमेशा की तरह। तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय माय रियल को, द रियल स्टेट कंपनी।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Martville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Martville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Martville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: काव्य होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana, up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.com.
4: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, May 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
6: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
3: अहा, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: जी हाँ, दैट्स अ नंबर आयशा मुनव्वर जी को कॉल करने के लिए 416-428-2165। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके कर्जे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं फटाफट फुर्र हो जाएंगी। वेल, कॉल करें, पर जब तक आप करते हैं कॉल, एक क्विक सी मुलाकात मैं करा देती हूँ यहीं पर विद आयशा मुनव्वर। आयशा जी, वेलकम एंड ओवर टू यू।

0: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए हैं और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं. तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, बैंक्रप्सीज की भी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स. अगर किसी का प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं. सो वी कैन एडवाइज यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं. आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएँ और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएँ. ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग कैप्ट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज हम आप ही की कम्युनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी. और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको. तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स. सो वी आर प्रोफेशनल्स और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती है दैट सूट्स यू द बेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है. फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं. आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफ़र की हों, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहाँ से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली. एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारे ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता. मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूँ. तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फ़ोन मेरा बिजी आ रहा है, तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ताकि आराम से कंफर्टेबली टाइम देके हम आपकी सिचुएशन को डिस्कस करें और सॉल्यूशंस को वर्कआउट करें. एंड वन कॉल विल मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, दैट आई गारंटी. सो माई फ़ोन नंबर इज़ 416-428-2165. अगेन इट्स 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
1: थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच. वेल ये थी आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ. 416-428-2165 उनका नंबर है. एज आई सेड, अगर अपनी ज़िंदगी में कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं या लग रहा है कि शायद आ जाएं, तो भाई फटाफट टाइमली एक्शन लें और उस समस्या से बाहर निकल जाएं. उनको कॉल कर लें, लंबा अनुभव है और अपनी ज़िंदगी के लिए खुशियों का रीसेट बटन आप दबा सकते हैं वंस यू कॉल हर. 416-428-2165.

That was from 2018 ki film comedy social drama thi Batman, which was also inspirational in its own way and a true story par based thi, jahan pe Akshay was playing the Batman lead character. Character tha ye jo kahani thi basically unki thi, jinhone Bharat ke Tamil Nadu ke rural areas mein जो सैनिटरी नैपकिन्स थे उनको लो कॉस्ट पे बनाया था, जिससे गरीब महिलाएं भी इन दिनों में हाइजीन मेंटेन कर सकें अच्छे से. मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कितनी अजीब बात होती है ना कि नेचुरल फिनोमिनन होता है फिर भी इतना टेबू, इतना स्टिग्मा अराउंड रहता है इसके, और लोग बात जब करते हैं इसके बारे में फुसफुसाते हुए करते हैं, हिचकिचाते हुए करते हैं, जैसे कि कोई सीक्रेट अफेयर हो. अब जहाँ बात ही करना भारी हो वहाँ हाइजीन के बारे में खुलकर कैसे इंतज़ाम हो, कैसे बात की जाए, फिर तो सोच ही लो, है ना. वेल, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज का दिन इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे एंड इंटेंट इज वेरी क्लियर कि एंड पीरियड पॉवर्टी एंड एम्ब्रेस इट्स पॉजिटिविटी एंड ऑनर एवरीथिंग अबाउट दिस बॉडी.

और आप विनर बन सकते हैं आज, जैसे कि हमने किया था लास्ट थर्सडे को अनाउंस हर घर कुछ कहता है सेगमेंट में। संजीव जी हमारे साथ जुड़ते हैं, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम रियल को, माय रियल को, और वहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं एक, और कुछ और बातें भी बताते हैं, एक मज़ेदार सा रैपिड फायर भी रहता है। आज आप ध्यान से सुनेंगे अगर उस स्टोरी को, तो आपको गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा, और गिफ्ट कार्ड होगा ये टिम हॉटन्स का, तो एक अच्छा सा गिफ्ट कार्ड आपको मिलने वाला है। कॉफ़ी आपकी इस वक्त जीत सकते हैं आप कुछ फ्री कॉफ़ीज। तो नंबर रहेगा स्टूडियो का 4165930055, बस आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है, उसी में से आंसर आपके लिए निकल आएगा। वैसे उनका नंबर सेगमेंट के बाद रहता है 4168437600, पर स्टूडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर रहेगा 4165930055। जुड़िएगा ज़रूर।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 647-453-5353।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स It deserves.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Retro in Metro, Nukkad Classics.

एंड अ क्विक रिमाइंडर अगेन, संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रॉम माय रियल को फॉर द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है. आप हमारे साथ ट्यून इन रहें, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी आपके लिए तैयार होगी ज़रूर उनके पास आज भी. और आज तो एक और चीज़ है आपके लिए, एक आसान सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको उस कहानी में ही मिल जाएगा. तो ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जीत सकते हैं एक अच्छा सा गिफ्ट कार्ड भी. स्टूडियो का नंबर 4165930055 फॉर यू टू पार्टिसिपेट.

0: हर घर कुछ कहता है।
1: घर की बात संजीव मनोचा के साथ,
0: ब्रॉट टू यू बाय माय रियल को द रियल एस्टेट कंपनी, एवरी थर्सडे 6 PM ओनली ऑन फिल्मी नुक्कड़। ऑलराइट, फिल्मी नुक्कड़ पर आपका वापस स्वागत है। मैं हूँ स्वाति, साथ हैं पायस्विनी और साथ में है संजीव मनोचा जी फ्रॉम माय रियल को, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं। हर थर्सडे 6 PM हमारे साथ जुड़ते हैं, एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है। और आज तो साथ में एज आई जस्ट अनाउंस्ड आपको कहानी के साथ साथ एक गिव अवे भी मिलेगा। तो कहानी आज की ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर उसी कहानी में छुपा होगा। अगर कहानी ध्यान से सुन ली तो यू विल नो द आंसर एंड यू कैन विन समथिंग वेरी नाइस, एक अच्छा सा गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं। और उसके लिए स्टूडियो का नंबर अभी नोट कर लें, 4165930055 फॉर यू टू पार्टिसिपेट टू विन दिस क्वेश्चन एंड सेगमेंट एज वेल। वेलकम सर।
2: थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, और फिल्मी नुक्कड़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, और क्या बोलते हैं कि नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमचो।
0: अच्छा चलें, पहले आपका नंबर से शुरुआत करती हूँ। स्टूडियो का नंबर तो आप लोगों के पास है ही, 4165930055 टू पार्टिसिपेट एंड विन। और साथ में संजीव जी का नंबर रहता है सेगमेंट के बाद, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, 4168437600। अच्छा संजीव जी, इस सेगमेंट की ब्यूटी मुझे पता है क्या लगती है
2: जी?
0: कि इस सेगमेंट में हम एक आप बहुत ही मुश्किल सी बात, एक बहुत ही मुश्किल सा उलझा हुआ सा जो एक कॉन्सेप्ट होता है रियल स्टेट से रिलेटेड, वो इतनी प्यार से कहानी के, ना बच्चों को जैसे समझाते हैं कहानी के जरिए, एक सिंपल सी कहानी के जरिए आप सबको समझा देते हैं। मुझे लगता है कि लेमन के लिए, जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत आसान रहता है समझना, और जिसको समझ में भी आता है उसके लिए उसे रिटेन करना आसान रहता है जब आप कहानी के जरिए किसी एक पॉइंट को समझते हैं। और इतने हंसी खेल में हम लोग कितनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कॉम्प्लीमेंट देने का। इनफैक्ट ये तो आपके साथ आपकी सोबत का असर है।
0: बस फिल्मी नहीं हुए अभी आप।
2: फिल्मी नहीं हुए। तो आज का किस्सा शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ये जो किस्सा है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है
0: जी,
2: प्रेरित नहीं आधारित है। हाँ। लेकिन पात्र इसमें सभी काल्पनिक हैं।
0: चले
2: ठीक है
0: जी।
2: और ये जो चीज़ है इसमें ये रिसेंट किस्सा हुआ था, रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटेरियो में और कोर्ट में कुछ आर्बिट्रेशन केसेस चलते हैं। तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे हमें और बायर्स को सेलर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि एक $5 की हुई गलती किसी को $7,500 $7,500 तक का भी नुकसान करवा सकती है।
0: हाँ, जिसे हम कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं,
2: गिलास थोड़ा बारह आना। हाँ। बिल्कुल। और वो $5 का अगर कुछ खा लेता तो शायद $7,500 का गिलास नहीं तोड़ना पड़ता
0: जी,
2: उसको
0: बिल्कुल।
2: तो किस्सा कुछ यूं है कि एक प्रॉपर्टी मार्केट में आई, लिस्टिंग एजेंट ने MLS के ऊपर लिखा कि इस प्रॉपर्टी में इसकी जो स्क्वायर फीटेज है दैट इज बिटवीन 2,000 to 2,500 स्क्वायर फीट।
0: ओके
2: ठीक है। और प्रॉपर्टी में हार्डवुड फ्लोरिंग लगी हुई है बेडरूम्स में।
0: अच्छा
2: ठीक है जी। बायर का एजेंट गए बायर को दिखाने के लिए, आफ्टर डूइंग द ब्रोकर यू नो बायर रिप्रेजेंटेशन अग्रीमेंट, वहाँ दिखाने गए, प्रॉपर्टी पसंद आ गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, ऑफर हो गई और ऑफर एक्सेप्ट हो गई, अच्छा हो गया। अब क्लोजिंग से पहले वो लोग गए अपनी वॉक थ्रू पे। आपको याद होगा पिछले सेगमेंट में हमने कहा था कि हम अक्सर 2 या 3 विजिट कर लेते हैं,
0: कर
2: जो इंस्पेक्शन नहीं होती है। हाँ। वॉक थ्रू होती है, उसमें बेसिकली पर्पज वो होता है कि हम मेजरमेंट लेनी है, देखना है प्रॉपर्टी सेम कंडीशन में है कि नहीं। तो वॉक थ्रू पे गए तो वहाँ पे बायर को कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये हार्डवुड फ्लोर तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ और लग रहा है, शायद लेमिनेट है, क्योंकि आजकल क्या है कि अलग अलग तरह की फ्लोरिंग आ गई है, ऐसी ऐसी फ्लोरिंग भी आ गई है कि आपको देखने से पता नहीं लगता कि वो हार्डवुड है, लेमिनेट है या LVP है, वाइनल फ्लोरिंग है। जी आप कुछ कहना चाहते
0: हैं? जी मैं कहती तो डील हो चुकी है उसके हाँ, बाद की विजिट है ये।
2: जी जी जी, डील हो चुकी है, ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, क्लोजिंग से कुछ दिन पहले की ये बात है। ठीक है, क्लोजिंग की वेट हो रही है। तो जो बायर का एजेंट है उन्होंने सेलर के एजेंट को कॉल किया, पूछा कि साहब ये हार्डवुड फ्लोरिंग तो नहीं है, ये तो लेमिनेट है। तो बोले कि हाँ है तो लेमिनेट फ्लोरिंग। तो बोले आपने MLS में क्यों लिखा हार्डवुड फ्लोरिंग? कहते गलती हो गई, इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज एन एरर,
0: ह्यूमन एरर।
2: हाँ ह्यूमन एरर, ओके। तो बायर के एजेंट ने बायर को एडवाइस किया कि देखो साहब, अब तो सिर्फ दो चार दिन ही रह गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो चलो जी, बात ख़त्म हुई, बायर की क्लोजिंग हो गई, घर में आए। आने के बाद में करीब एक महीने के बाद में उनको एमपैक की तरफ से, जो म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी असेसमेंट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी आती है जिसमें उनको प्रॉपर्टी की डिटेल बताती है और उसमें बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी की स्क्वायर फीटेज है, दैट इज नॉट बिटवीन 2000 टू 2500 स्क्वायर फीट, दैट इज बिटवीन 1500 टू 1700 स्क्वायर।
0: ओह, दैट्स अ बिग थिंग,
2: दैट इज डेफिनेटली। नाउ द केस गोज टू रिको एंड टू कोर्ट। उसमें होता क्या है कि जो बायर के एजेंट हैं, अब सेलर के एजेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, सेलर के एजेंट के साथ तो जो हुआ होगा हुआ होगा, डेफिनेटली उनको भी पेनल्टी लगी। जो बायर के एजेंट हैं उनको $7,500 की रिको की तरफ से पेनल्टी लगी,
0: जबकि उन्होंने कोई गलत नहीं, फ्रॉड किया या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
2: जी नहीं दी, लेकिन
0: उन्होंने सही
2: उनकी
0: भी नहीं दी।
2: गलती ये रही कि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश भी नहीं की।
0: ओह, इंटरेस्टिंग।
2: कोशिश, ठीक है। अब कोर्ट का ये कहना था, रिको का ये कहना था कि देखिए साहब, ऐसा है कि आपने ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर नहीं की। एमपैक में जो हमारे रियल्टर रिसोर्सेज होते हैं, हमारे रिसोर्सेज में एक रिपोर्ट होती है जिसमें से हम स्क्वायर फुटेज निकाल सकते हैं एमपैक की रिपोर्ट से। वो रिपोर्ट $5 की होती है।
0: अरे बाप रे,
2: टैक्स लगा के 565 समझ लो।
0: अरे
2: ठीक है, तो वो रिपोर्ट में पता लग जाता है कि अबव ग्रेड स्क्वायर फुटेज कितनी है, बिलो ग्रेड कितनी है। तो भाई साहब जो बायर के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने शायद वो $5 बचाए, या वो उनको लेजीनेस आ गई तो उन्होंने नहीं किया,
0: या उन्हें लगा रहे कि बीच में पड़ेंगे तब डील डन हो गई है, फिर बीच में ना रुक जाए,
2: कहाँ जाएंगे, ये वो सब करके किसी तरह से उन्होंने वहाँ पे अलगर्जी कर दी। और साथ में जब बायर ने कहा कि ये लेमिनेट फ्लोरिंग है, हार्डवुड फ्लोरिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब तो अब कुछ नहीं कर सकते। दैट वॉज ए वेरी रॉन्ग एडवाइस। ही कुड हैव यू नो रेफर्ड हिम टू सम प्रोफेशनल, टू अ लॉयर, एंड सो दैट, क्योंकि अब बात होती है कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो बॉल जो है वो लॉयर के पास चली जाती है। एज अ रियल्टर बैक एंड पे हमारा रोल रह जाता है कोऑर्डिनेशन का और बाकी इन्फॉर्मेशन का, राइट। तो रिको ने ये फाइंड आउट किया कि देखो साहब, आपने प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस नहीं की, जो आप कर सकते थे, जो आप पूरी हेल्प कर सकते थे, वो नहीं की। तो यू स्टैंड फॉर अ $7,500।
0: तो जहाँ जो चीज $5-6 में हो जाती है, लाइक ऑलमोस्ट 15,
2: अपना पार्ट तो वो कर ही सकते,
0: अपना पार्ट कर सकते, और क्रेडिबिलिटी बची रहती, कहीं इसमें क्रेडिबिलिटी भी आपने खोई है।
2: जी,
0: और 1500 times more आपको पैसे देने भी पड़ गए।
2: Unfortunately, yes. तो मतलब अब कमीशन उनकी या उनके कितनी कॉम्पेंसेशन बनी होगी वो तो अलग बात है। लेकिन ये
0: आप विश्वास खोते हैं मार्केट में,
2: विश्वास खोते हैं। पर वही बात है कि कई दफा ये हो जाता है कि जब आप, और मैं खासकर अपने बायर्स को जो भी मार्केट में है या सेलर क्लाइंट है, मैं उनको ये भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई शक है, सवाल पूछें, रियल्टर से सवाल पूछें। और मिस्टर रियल्टर्स अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप भी पूछें, आप ब्रोकर मैनेजर से पूछें, आप रिसोर्सेज से पूछें, आप पता लगाएं, कोशिश करें। क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि आपने कोशिश की, आपके पास में ट्रैक है। अगर वो कह देते कि हाँ मैंने ये सब किया था, तो डेफिनेटली हो सकता है उनकी पेनल्टी कम होती या लगती ना। लेकिन उन्होंने कोशिश भी नहीं की वो जानने की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एज ए बायर एज ए सेलर, आपके कोई सवाल हैं उनका पता करें। और वो घर कह रहा था कि भैया मैं लेमिनेट फ्लोरिंग हूँ, मैं हार्डवुड फ्लोरिंग नहीं हूँ,
0: आपने पहले ध्यान नहीं किया।
2: आपने ध्यान नहीं
0: वो
2: दिया,
0: कह रहा था, घर तो साफ है, सामने है, वो कह रहा है कि मेरी स्क्वायर फुटेज आप देखें, मैं उतना नहीं हूँ, आपने ध्यान नहीं किया।
2: और अंदाज जो जब हम करते हैं ना, अभी भाई देखें, आप इतने साल हो गए, हमें भी 20 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए, घर में घुस के समझ में आ जाती है कि घर 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर है या 1500 स्क्वायर फीट का। 500 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा करता है, 600 स्क्वायर फीट, राइट। तो वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, एक्सपीरियंस से चीज़ें समझ में आती हैं,
0: राइट। तो यहाँ पे तो हम एक्सपीरियंस संजीव मनोजा जी से बात कर रहे हैं इस वक्त हर घर कुछ कहता है सेगमेंट में। नंबर उनका रहता है 4168437600। स्टूडियो का नंबर आपके सवालों के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए इन द कॉन्टेस्ट रहेगा 4165930055। अच्छा संजीव जी, सवाल क्या है हमारे श्रोताओं से जिन्होंने कहानी ध्यान से सुनी है? पहले तो मैं इसका शीर्षक बता देती हूँ। इसका शीर्षक मुझे लगता है कसौटी एक प्रोफेशनल की, खरे उतरे नहीं है ना, खरे नहीं उतर पाए वो, तो कसौटी पे खरे नहीं उतरे, तो वह मैं शीर्षक इसको दे सकती हूँ। बाकी सवाल हमारे श्रोताओं से ये रहेगा, कौन सी दो प्रॉब्लम्स इस घर में दिखी, जो घर कह रहा था कि मुझ में है, मुझे ध्यान से देखो, तो कौन सी दो प्रॉब्लम्स दिखी, उनमें से आप अगर एक भी आपने ध्यान से सुनी है, जो प्रॉब्लम निकली बाद में, जो पेपर पे नहीं थी लेकिन निकली, गलत रिप्रेजेंटेशन था, तो वो आप प्लीज़ हमें बताएं। स्टूडियो का नंबर 4165930055। आप जीत जाएंगे एक अच्छा सा गिफ्ट कार्ड। एक चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहें फिल्मी नुक्कड़।

0: घर कुछ कहता है।
1: घर की बात संजीव मनोचा के साथ,
0: ब्रॉट टू यू बाय माय रियल को द रियल एस्टेट कंपनी, एवरी थर्सडे 6 PM ओनली ऑन फिल्मी नुक्कड़।
2: चलो मैं एक एक करके क्विकली कोशिश करती हूँ आप सबके कॉल्स लेने की। लेट्स सी, अगर सही जवाब भी मिल गया मुझे तो मैं कुछ और पूछते हुए आपके कॉल्स लेती रहूँगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जितने में भी मैं कॉल्स ले पाती हूँ। पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, आप आंसर बताएंगे।
3: हाय,
2: व्हाट्स योर नेम?
3: यस, माय नेम इज सुषमा।
2: जी सुषमा जी, आंसर बताएं।
3: हाँ, मैंने इसमें दो चीजें जो इन्होंने पूछी हैं, एक तो उनको हार्डवुड फ्लोरिंग वाली प्रॉब्लम आई कि वो वाजंट अ हार्ड, और सेकंड इनको जो स्क्वायर फुटेज वाली प्रॉब्लम थी।
2: चलिए आप होल्ड पे रहें, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपकी डिटेल्स हम लेते हैं, आप प्लीज होल्ड पे रहिएगा और आपकी डिटेल्स हम लेंगे थोड़े सेगमेंट के बाद। नेक्स्ट कॉलर जी, आप बताएं आपने क्या सुना।
4: हेलो,
2: आपका नाम बताएंगे।
4: जी, मेरा नाम भाविक है।
2: जी भाविक,
4: जी इसमें प्रॉब्लम थी स्क्वायर फुटेज की जो उन्होंने गलत बताई थी, और दूसरी इशू थी हार्डवुड फ्लोरिंग जो गलत लिस्ट किया था उन्होंने।
2: चलिए परफेक्ट भाविक, बिल्कुल राइट आंसर। और आप होल्ड पे रहे, आपकी डिटेल्स हम लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
5: आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई।
2: हेलो, आपका नाम बताएंगे। हाँ जी, आपका नाम बताएंगे सर।
6: मुर्गन
2: जी, आपसे क्वेश्चन चेंज करना चाहूंगी मैं, इज इट ओके? आपने जी, आप मुझे बताएं मैंने टाइटल क्या दिया कहानी को।
6: क्या हो गया?
2: व्हाट वाज द टाइटल आई गेव टू द स्टोरी?
6: टाइटल
2: नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुनी आपने, सिर्फ संजीव जी की बात सुनी, क्योंकि वही काम की बात हो रही थी।
6: संजीव का बात सुना।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ काम की बात हो रही थी। चले ये अच्छा है। चले संजीव जी का पूरा नाम बता दें।
6: संजीव मनोहर जी।
5: मनोहर,
2: चले मनोहर,
5: क्लोज क्लोज क्लोज है मनोज। चले मैं
2: मनोचा जी, चले आपने चले आप होल्ड पे रहे, आपकी डिटेल्स हम लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर।
7: हेलो जी।
2: हेलो जी, व्हाट्स योर नेम?
7: संदीप नाम है जी मेरा।
2: संदीप जी,
7: संदीप जी नमस्कार, और स्वाति जी नमस्कार।
5: नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं?
7: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरा पहले एक एक डाउट पहले आप ही बता दे, सवाल आप बाद में मुझसे पूछ।
2: अच्छा ठीक है।
7: मुझे बताओ कि जब उससे उसको तो चलो पेनल्टी हो गई रियल्टर को,
5: हाँ जी,
7: जो बायर था वो तो बेचारा लॉस में रह गया।
2: क्लाइमेक्स गड़बड़ आ गया, क्लाइमेक्स गड़बड़ा दिया आपने कहानी का।
5: नहीं देखें, अब ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बताया है जो रिको में केसेस आते हैं उनके हवाले से, ठीक है। अब बायर का इसमें ये रोल रहता है कि बायर का अगर उसको कुछ अपना नुकसान पूरा करना है तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू टॉक टू दी लॉयर एंड ही कैन ऑलवेज सू द पार्टीज। अगेन आई एम नॉट अ लीगल कंसल्टेंट, सो मैं कोई आपको यहाँ पे सभी सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम द ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ माई रियल कोइंक, मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ, ये कोई लीगल सलाह नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है। क्योंकि अगर कुछ ऐसी केस है, बायर अगर रिको में रिपोर्ट करता है या सेलर रिको में रिपोर्ट करता है, तो बायर और सेलर को वो पेनल्टी वाले पैसे नहीं मिलते हैं, वो पैसे जाते हैं पेनल्टी रिको को। लेकिन अगर उनको अपनी तरफ से कुछ कॉम्पेंसेशन लेनी है तो देन दे विल हैव टू गो थ्रू द लॉयर एंड टू द कोर्ट।
2: वो कई बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती सर, पर ऐसा होता है ना कि जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो यू आर नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर हैप्पी एंडिंग, यू आर लुकिंग के भाई यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ और होना चाहिए था, राइटियसनेस की बात हो जाती है। चले अब अपना आंसर बताएं हमें, मुझे बताएं मैंने टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या बताया था।
7: टाइटल आपने दिया था कसौटी
2: क्या बात, मेरी बात भी कोई सुनता है संजीव जी?
5: संदीप जी,
2: संजीव जी,
5: ओ हाँ संजीव जी,
2: मैं दोनों से ही बात कर रही हूँ।
7: अभी हम संजीव जी की बात भी सुन रहे हैं।
2: चले संदीप जी आप होल्ड पे रहे, मैं डिटेल्स लेती हूँ। नेक्स्ट कॉलर।
8: हेलो।
2: हेलो जी, आपने स्टोरी ध्यान से सुनी?
8: जी।
2: अच्छा मुझे बताएं, एक क्वेश्चन मैं फिर आंसर क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, कहाँ की रिपोर्ट पे कहते हैं कि आप डिटेल्स निकाल सकते हैं? जैसे वो कहते हैं ना $5 की रिपोर्ट आती है वो निकाल लेते तो 7500 का फाइन नहीं लगता, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो।
8: ध्यान से तो नहीं सुना लेकिन थोड़ा सा सुना था, वो मैं थोड़ा बिजी था।
2: हाँ।
8: अच्छा, वो मेरा ख्याल है म्यूनसिपैलिटी की एक वेबसाइट होती है, उसमें उस डिपार्टमेंट में जाके हम ये पता करते हैं।
5: जो रियल्टर्स हैं, रियल्टर्स के जो रिसोर्सेज हैं उनमें एक रिसोर्स होता है, उसको हम एमपैक रिपोर्ट्स बोलते हैं या प्रॉपर्टी लाइन स्टोर बोलते हैं।
8: हाँ, वही एमपैक। मैंने सुना
5: वहाँ से वो रिपोर्ट ले सकते हैं, पूरे रिसोर्सेज की एक्सेस रहती है रियल्टर्स को, सो इट्स क्वाइट ईजी।
8: अच्छा, मुझे दो चीजें जरा पूछनी थी, फोटो सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप बता सकें।
5: बोलिए।
8: अच्छा, पहले तो ये कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी कस्टमर नीड्स टू नो अबाउट द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ मच इज द स्क्वायर फीट एग्जैक्ट, एंड नंबर टू हाउ मच इज व्हाट आर द overall structure about the foundation, everything is accurate or not, okay? And regarding the is lamination or is there lamination or hardwood or what? The third thing आपने जो कही थी वो पता नहीं मैंने miss कर दी। वो ये तीन चीजें ठीक है या नहीं है, क्योंकि with the naked eye we can't say we are not so much experienced, so how come I डिटरमिन कि ये क्या है, लैमिनेशन है या वो है, जैसे कपड़ा मार्केट में होते हैं।
5: मैं समझ गया आपकी बात, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपको कि देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। प्राइमरली ये इन्फॉर्मेशन MLS जो होती है, MLS की लिस्टिंग के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेलर का एजेंट उसको अपलोड करता है, दैट इज़ वन सोर्स। सेकेंडली जो बायर का एजेंट है, इफ़ यू आर वर्किंग विद अ बायर एजेंट, तो बायर एजेंट से आप ये सवाल कर सकते हैं, ही शुड ऑल्सो बी नॉलेजेबल एंड यू नो लुकिंग एट द फ्लोरिंग और लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे कैन ऑलवेज आस्क द सेलर एजेंट। उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यूजली कंडीशन रखते हैं होम इंस्पेक्शन की। तो जो होम इंस्पेक्टर होते हैं, दे आर क्वालिफाइड होम इंस्पेक्टर, सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर्स। 99.9% ऑफ द टाइम्स यू विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट।
8: हम पर्सनली नहीं कर सकते, कस्टमर किसी वेबसाइट पे जाके एग्जैक्ट स्क्वायर फिट क्या है और दूसरी इन्फॉर्मेशन।
5: जी, आप वो भी कर सकते हैं, आप सिटी की वेबसाइट पे जाके, रिसोर्सेज हैं वहाँ से, आप ये चीज़ें निकलवा सकते हैं सिटी से बात करके, एंड डेफिनेटली यू एज अ कस्टमर ऑल्सो हैव दोज रिसोर्सेज। बस ये है कि आपके रियल्टर के पास में वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं चीज़, जो आप अपने रियल्टर को बोल सकते हैं तो वो तुरंत निकाल सकते हैं।
8: आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, वो जो हम स्क्वायर फिट एग्जैक्ट पता करते हैं।
5: आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए और हम प्रोग्राम के बाद में बात कर सकते हैं डिटेल में। मेरा नंबर है 416-843-7600
8: 416-843-7600 7600। अच्छा, तीसरी बात ये कि उसने लॉयर ने से क्यों नहीं बताया उसने,
2: ये कहानी में पेच है।
5: किसने लॉयर को नहीं बताया, एजेंट ने?
8: हाँ, मतलब
5: तो वही बात हो गई ना, इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि आपने प्रॉपर सर्विस नहीं की, आपने इसको गिव अप कर दिया कि नहीं साहब अब तो जो हो गया सो हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको।
8: ये काम तो लॉयर का है ना, लॉयर प्रोटेक्ट करता है, लॉयर साइन करता है, लॉयर को के पास जाना चाहिए उसको।
5: जी जी,
8: और कि भाई उसको पेनल्टी,
5: अब उनको याद रहेगा ना, एक बार $7500 दे दिया वापसी।
2: देखिए, कहानी किससे गड़बड़ियों से ही होते हैं कि ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ, वही कहानी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू जी। एक कॉलर और ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो, हम क्या, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको नहीं सुन पा रहे क्योंकि
9: Hi.
2: What's your name?
9: सुषमा। I'm holding for.
2: Oh, you're holding. चले hold पे रहें, मैं बस आपको quickly आपसे बात करती हूँ। और इस वक्त संजीव जी का नंबर मैं फिर से दे देती हूँ, 416-843-7600। अगर इस कहानी से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है इस कहानी में कि एंडिंग कुछ और होनी चाहिए थी या इसमें कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए थे, तो आप उनके साथ कहानी बुन सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल ले लेती हूँ मैं, चले क्विकली। हेलो जी। हेलो
10: हेलो,
2: हाँ जी, क्विकली अपना नाम बताएंगे।
10: मनीष
2: जी। हाँ, तो आपने कहानी में जो सुना, मुझे फिर से बताएं कि कौन सी वो जगह थी जहाँ पे वो जाकर $5 की रिपोर्ट ले सकते थे, जो कि जिसकी वजह से उन्हें $7500 देने पड़े फाइन में। अभी बताया संजीव जी ने दोबारा।
11: रिको की कोई वेबसाइट में कोई है?
5: नहीं, रिको की वेबसाइट तो वो तो रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो एमपैक की वेबसाइट पे जाके उनके पास एमपैक का रिसोर्सेज होते हैं उनके पास में, तो वहां से वो ले सकते हैं।
2: चलें, आपको याद रहेगा हमेशा एमपैक का। मैं मुझे पता है मैंने सवाल बीच में बदल दिया, आप तो कुछ और उत्तर देने वाले थे क्योंकि पहले क्वेश्चन कुछ और था, बीच में मैंने पेपर बदल दिया, पर चले कोई बात नहीं।
5: अच्छा, अगर लीक नहीं किया आपने एग्जाम।
2: हाँ, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो अभी हम चलते हैं, बस एक क्विकली एक लिस्टिंग अगर आप बताना चाहें सर,
5: जी, बिल्कुल,
2: और
5: बिल्कुल।
2: उसके बाद मैं आपसे लूंगी विदा।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, और जिन लोगों का हम कॉल नहीं ले पाए उनके लिए सॉरी, बिकॉज टाइम की कमी है सेगमेंट में,
2: और पर अगले थर्सडे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे,
5: डेफिनेटली ये चीज़ हम करते रहेंगे। जाते जाते मैं लिस्टिंग शेयर करना चाहूँगा।

0: 6 बेडरूम 5 बाथरूम लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बना हुआ है,
1: प्रीटी न्यू,
0: ठीक है, वेरी न्यू। दो कार का इसमें गैराज है, बेसमेंट सेपरेट एंट्रेंस के साथ में है, और जैसे मैंने कहा कि लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, और मोर देन 3000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग बेसमेंट। अब मैं पहले कह रहा हूँ इंक्लूडिंग बेसमेंट,
1: यहाँ पे बता रहे स्क्वायर फीट के साथ इंक्लूडिंग बेसमेंट,
0: इंक्लूडिंग बेसमेंट। और अगर आप खाली ऊपर ऊपर की स्क्वायर फुटेज की बात करो तो दिस इज मोर देन 2200 स्क्वायर फीट, अराउंड 2200 स्क्वायर फीट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखनी है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 416-843-7600। और एक प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिल्टन में, इट्स अ सेमी डिटैच 2-story house, 4 bedroom, 3 bathroom, फिनिश्ड बेसमेंट, 6 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये भी, सिर्फ 6 साल पुरानी प्रॉपर्टी, और 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर की ये प्रॉपर्टी है, सेमी डिटैच जैसे मैंने कहा, टोटल 2600 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग बेसमेंट,
1: राइट,
0: ओके अगेन। तो इसके लिए भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, बहुत ही वाजिब प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, वेकेंट है, रेडिली अवेलेबल है पोजिशन के लिए, एंड दिस इज इवन लिस्टेड लाइक आई मीन एट अ वेरी गुड प्राइस। मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600। आप मुझे कॉल कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी है। इसके अलावा और भी कहीं आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो मेरे पास में बायर इंसेंटिव भी हैं और सेलर एडवांटेज प्रोग्राम भी हैं।
1: जी, बायर इंसेंटिव और सेलर एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में मैं बताती रहती हूँ अपने शो में, तो अगर आपको फिर भी जानना है मोर अबाउट दोज तो संजीव जी को आप कॉल कर सकते हैं 416-843-7600। थैंक यू संजीव जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: Exclusively picked.

एंड ट्रेंडिंग टुडे इज हैशटैग हम तुम डे फॉर 2004 की यशराज बैनर्स हिट फिल्म हम तुम। वेल, फिल्म का नाम इनिशियली कहते हैं वाज डिसाइडेड टू बी न जाने कब प्यार हो गया टू लॉन्ग, बट थैंकफुली बाद में छोटा सा हम तुम रख दिया गया। फिल्म वाज एंटरटेनिंग विद सेफ स्क्वर्की कैरेक्टर एंड सो कॉल्ड टॉम क्रूज स्टाइल वाला लुक, हेयर स्टाइल वाला, एंड यस जतिन ललित का अच्छा सा म्यूजिक, रोमांटिक एंड यूथफुल।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव। चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ। Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: Ghar kahin bhi lena hoa.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
4: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markampur,
6: doing business your way.
5: A proud member of Wayne's Auto Group.
7: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkar. It's the free time.
8: खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊंगा अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। और एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूं, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊंगा। जब बरसना है तो सूरज की तरफ क्यों जाऊंगा, इन मोहब्बत के पहाड़ों को भिगो जाऊंगा। तलवों को मेरे चूमेगी, जाते जाते बदलियां भेज दे मैं ओढ़ के सो जाऊंगा।
7: वेल, बशीर बद्र साहब की थी ये शायरी, आप उन्हीं की आवाज़ में सुन रहे थे। अब मुझे लगता है आज उन्हीं की जो लाइंस हैं कि अजब चारगाह हूँ, दिन रात जलता हूँ मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे बस। वेल, उम्दा शायर थे जिनके बुझ जाने से जो उर्दू पोइट्री में वो चराग जला के गए वो हमेशा जलता रहेगा। मॉडर्न उर्दू पोइट्री में एक ग्लोरियस चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो गया। उन्होंने जितना भी लिखा उसके बाद उन्हें मास का पोएट कहते थे, क्योंकि उर्दू पोइट्री और जो कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स होते थे ना, उसको वो आम जनता तक सिंपल वर्ड्स में पहुंचा देते थे। बात प्यार इश्क मोहब्बत की हो या गहरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े की, बहुत ग्रेसफुली लिखते थे, कहते थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रही थी और हमेशा मैंने नोटिस करी है इनकी शायरी में एक लेसन छुपा होता है हर छोटे शेर में। जैसे कि ये शेर कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला समंदर नहीं रहता। एंड लेसन, वेल, ट्रस्ट बट नॉट टेस्ट, इसी की बात कर रहे थे। साथ में अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे रखें कायम बड़े बड़े लोगों के बीच भी, उसकी बात कर रहे थे। जैसे इनका ये शहर जहां वो लिखते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यहां वो बात कर रहे थे कि खुद पर विश्वास रखो और बस उसी विश्वास पर डटे रहो। जैसे कि ये शेर जहां वो लिखते हैं दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेसन, नेवर लीव योर मॉरल्स, वैल्यूज एंड एथिक्स, ग्रेस दुश्मनी में भी रखें। जैसे ये शेर जहां वो लिखते हैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लेसन, जब तक मंजिल मिल ना जाए रुको नहीं, भटको नहीं, बीच में कहीं पॉज नहीं लो। जैसे कि ये शेर, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। लेसन, हर किसी का जो सक्सेस होता है उसके पीछे उसका हार्डवर्क स्ट्रगल भी होता है, आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि ये शेर, मोहब्बत के दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। लेसन, ऑनेस्टी हर चीज़ में रखें। और जैसे कि ये शेर, कहते हैं कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ीं, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। लेसन राइट कम्युनिकेशन।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th. विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
0: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया.
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का. मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी. पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है. अब बारी आपकी. कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600.
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट myrealco.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Winters में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
7: He's breaking through the midfield.
8: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: Follow us on Instagram. It's RJSwati_Toronto. Marks the death anniversary of one of the pioneers of Indian cinema as producer and director, jinki most appreciated works mein actually aati hai 1957 ki Mother India. Awards ki ladi lagi thi is film ke liye, hum sabhi jante hain, do national awards, Filmfare awards bhi, and this even got a nomination at Academy Awards for Best Foreign Language Film. Baat kar rahi hu main Mehboob Studios ke, Mehboob Productions ke, Mehboob Khan sahab ki. अब यूं तो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें हिट रोमांटिक फिल्म्स आती हैं जैसे कि अंदाज, आन, अमर एंड इवन अनमोल घड़ी, पर मदर इंडिया की बात अलग है ना. इनका फिल्मों में आना अगर मैं देखती हूँ तो इत्तेफाक नहीं था, हालांकि शुरू से सोचा था ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं था. ही यूज्ड टू वर्क एज अ हॉर्स शू रिपेयरर एक अस्तबल में, और लकीली उस अस्तबल से घोड़े सप्लाई होते थे फिल्मों में. एंड ही फाउंड इट फैसिनेटिंग कि एक दिन एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी विद द प्रोड्यूसर कि मुझे भी फिल्मों से जुड़ना है. बस प्रोड्यूसर चंद्रशेखर थे, उन्होंने टैलेंट स्पॉट कर लिया ये कहते, और उन्हें ये कह के उनके ओनर से ले आए कि छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे साथ आने दो इन्हें. बस फिर क्या था, एक्स्ट्रा से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक सारे काम मन लगा के किए और सीखे भी. और फिर वो दिन भी आया जब सोलो डायरेक्टर बने वो हिट फिल्मों के और अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला. दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद द सॉन्ग जो महबूब खान साहब की आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया से है. हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल फ्रॉम मी टू यू.

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए हमें तआवुन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। रबते के नंबर है 9052571342।

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसी के लिए इब्तदाई माहिदा तय पा गया है। हुकाम ने BBC को बताया कि इस नए जंगबंदी माहिदे की अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप या ईरानी क़यादत ने मंजूरी नहीं दी है। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर फिदा हुसैन मालकी ने दावा किया है कि अमरीका ने ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कहा है कि अमरीका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन में अमरीका ने ईरान पर दूसरा हमला किया है और ईरान ने जवाब में अमरीका के फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उधर तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बंदर अब्बास के इलाकों पर अमरीकी हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन और अक़वामे मुत्तहिदे के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। वजीर खारजा इसहाक डार कल वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार ने चीनी वजीर खारजा वांग यी से आज न्यूयॉर्क में मुलाकात की जिसमें खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम तकबीर 28 मई पाकिस्तान की तारीख का अजीम और फैसला कुन दिन है और आज रात से गैस की कीमत में 3 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 416-593-0003 हमारे स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 201 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफ़र के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉगिन हो जाइए। आज के रेट है 201 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। थर्सडे है, मीठा फर्नीचर से परमीरा साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आलम लॉ ऑफिस से आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ होंगे। ब्रामटन टीवी अप्लायंसेस से सुल्ताना साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वक्त हुआ तो ICS इमिग्रेशन से MD भाई से भी आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे प्यारे सामने, इस कायनात का दस्तूर भी अजीब है। ये बातनी कायनात इतने पुरेसरार है जितना इंसान का अपना बातनी वजूद। बातिन में इरादा हो और ज़ाहिर इस इरादे के मुताबिक अमल पैरना शुरू हो जाता है। मसलन जहन या दिमाग इरादा करे तो आज़ा हरकत शुरू कर देते हैं। अगर दिल में मोहब्बत आ जाए तो ज़ुबान में शाइस्तगी आ जाती है। अगर बातिन गुस्से में आए तो ज़ाहरी वजूद के चेहरे पर तेवरी और नफ़रत का इजहार होना लाजमी है। बातिन मसरूफ़ इबादत हो तो ज़ाहिर मासूमियत का पैकर बन जाता है। इस तरह ये पुरेसरार बातनी कायनात साहिबान इरादा की कायनात है। वहाँ जो फैसले होते हैं वो ज़ाहिर की दुनिया में फिर ज़ाहिर हो जाते हैं। वहाँ दुआएँ होती हैं और ज़ाहिर में तासीरें मैसर आती हैं। वहाँ इरादे बदलते हैं तो यहाँ ज़माने बदल जाते हैं। वहाँ मिजाज बदलते हैं, यहाँ हुकूमतें बदल जाती हैं। बस वहाँ कुन की जलवागरी है तो यहाँ फयकून की कारफरमाई है। पुरेसरार लोगों की पुरेसरार कायनात सबके सामने है, लेकिन सब पे आशकारा नहीं है। इसमें दाखिल होने का कोई हतमी असूल नहीं है, बस नसीब और मंशा इलाही है। जिसका नसीब बेदार हो गया वो साहिब इसरार हो गया। जिसको मंशा इलाही मैसर हो उन्हें आहे सहरगाही मैसर होती है। आहे सहरगाही इस कायनात और बातनी कायनात में राबते का मोतबर ज़रिया है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: रेड पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003 24 घंटे हमारे नशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से भी लाइक कीजिए। ट्यून इन पे हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी तमाम आई पी टी बॉक्सेज जादू बोल जूम बॉस के साथ साथ एपल टी वी अमेजान फायर टी वी रोको टी वी के साथ साथ ऊबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारे नशात देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से पे जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरनेट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन नशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशात जो आप सी एम आर 101.3 एफएम पे देखते हैं, हमारे टीवी पे भी आपके लिए बराह रास्त नशर की जाती हैं। आप आई पी टी वी बॉक्सेस के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे ऐप के थ्रू हमारी नशात दो घंटे देख भी सकते हैं। सुनते तो हैं, देख भी सकते हैं। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तला भट्टी 647-295-7861। आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, साइन करना है, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे। जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक से डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, तला भट्टी 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 एफएम में आपका होस्ट है दोस्त अरशद भट्टी हूँ।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।

0: बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
1: इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंस।
0: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजविक स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki guarantee hamari।
4: Apne pyar

0: फाइनेंशियल इंक के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वेरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 4169012810। इट्स 4169012810। ये लॉग इन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
2: जी हाँ, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे आपको मिलेगा। मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी 5 लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज, और 3075 वंडरलैंड रोड साउथ, यूनिट डी, लंदन ओंटेरियो की इनकी लोकेशन है। आपको हर तरह का फर्नीचर, ब्रांडेड फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी है। और अभी आपके इल्म में है कि 5th लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, तो तमाम ही लोकेशन पर स्पेशल डिस्काउंट है। 10-30% आपको डिस्काउंट मिलेगा फॉर श्योर, अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी जितने भी स्टोर्स हैं, मेन स्ट्रीम के स्टोर्स हैं। रेगुलरली इनकी इंपोर्ट है, कंटेनर्स रेगुलरली आ रहे हैं, मार्जिन अपना ज़रूर रखते हैं, लेकिन आपको भी फ़ायदा देते हैं। आप अच्छे फर्नीचर की तलाश में हैं, ड्यूरेबल फर्नीचर की तलाश में, तो एक बार मेटा फर्नीचर किसी भी लोकेशन पे ज़रूर तशरीफ ले जाइए। फोन मेरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। मेरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
3: थैंक यू भट्टी साहब। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले तो भट्टी साहब, आपको आज बात हो रही है, वैसे ईद कल थी और ईद की
2: आज भी ईद है जी। बहुत ईद भी आज भी ईद है, 3 दिन ईद चलेगी।
3: अच्छा, 3 दिन ईद चलेगी।

0: बाकी रहे, आपका अपने जो कहते हैं ना अपने बच्चों परिवार के साथ प्यार बना रहे और इस भाई के साथ भी प्यार बना रहे और कहते स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, धन धान्य से भरपूर हों और भगवान आपको इतना धन दे, इतनी बरकत दे कि अपना लालच भी है ना बीच में कि इतनी बरकत दे कि आप अपने घर का फर्नीचर बदल
1: करें।
0: और जब फर्नीचर बदल डालने की बात आए तो फिर इस भाई को याद रखें, मिड्डा फर्नीचर। तो चलो मतलब ये तो लालच की बात मैंने कही, लालच नहीं है, आपका प्यार है भट्टी साहब और मैं मुझे आपका बहुत प्यार मिलता है, तो उस प्यार का जो आप प्यार को पानी दे रहे हैं, इस पौधा ग्रो भी कर रहा है। तो जैसे आपने कहा पांचवी लोकेशन हमारी सैटरडे को 3075 वंडरलैंड रोड साउथ लंदन में खोलने की जो हमारा खुल रहा है, आज भी लंदन ही आए हुए हैं तो वो तैयारी की जा रही है। तो ये प्यार पाके अच्छा मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो चेन वाइड हमारी सेल होगी हर स्टोर पे, हर परचेज के साथ आपको गिफ्ट का भी हमने मतलब आपको चॉइस देंगे कि एक्चुअली की हमने रखा जरूर है कि 500 से 1000 तक ये गिफ्ट के ऑप्शन है, 3 आपको ऑप्शन दी जाएंगी, आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि मैं कुछ भी ऐसे 5-10 डॉलर वाले की चीज ले लूं, उसे $100 की बता के दे दूं, जो आपके घर में जरूरत हो तो आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं कि टेबल लैंप चाहिए तो ले लें, मेमोरी फोम का जो पिल्लो अमेजोन पे $99 का मिलता है ना, तो मतलब या 149 का मैंने देखा है, तो 99 का तो मैंने होलसेल पे हमने लिया है किसी से, 149 की रिटेल है, तो मतलब वो वाला पिल्लो अगर हमने देंगे तो गिफ्ट अगर लेकिन आप कहते नहीं भाई मैं पिल्लो तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, फिर हम टेबल लैंप भी देंगे, आप कहते टेबल लैंप नहीं चाहिए, हमने कहा ये वाली और ऑप्शन है, तो गिफ्ट दिल से मांग, आप मांग नहीं रहे हैं हम आपको दे रहे हैं। तो मिड्डा फर्नीचर चाहता है कि आपका प्यार मिले और फ्लायर हमारा अपलोड हो जाएगा, मैट्रेसेस डिस्प्ले पे आ गई है, 365 डेज की स्लीप वारंटी आपको देने जा रहे हैं, तो डील्स भी हैं, 2779 मैंने अभी डाला, किसी बहन भाई का कैसे आप सस्ते हैं, तो मैंने डाला गूगल पे, कम से कम उसकी प्राइस लगी हुई थी 1699, हमारा लगा हुआ है 1199। तो ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, ChatGPT बोल रही है। तो मिड्डा फर्नीचर पे आपको आना है और आज भी आए, कल आए, परसों आए और रोज आए, आपका प्यार चाहिए। और मेरे जो बड़े भाई सुन रहे हैं वो फोन उठा के अगर मुझे आके आगे दे जाएंगे तो मुझे उनका सिर पे हाथ रख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, छोटों का गुड विशेस अच्छी लगेंगी, बहनें तो देवियां होती हैं, उनका प्यार पाके बहुत अच्छा लगता है, तो देवियां तो कहते हैं बड़ी बहनें माँ समान होती हैं, तो आपका एज ए फैमिली आप हमें प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये प्यार और लंबा हो और गूढ़ा हो, बनता रहे। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस तो आपके प्यार की वजह से पहले चल रहा है और बन रहा है, तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, जी हाँ आपका वैल्यूएबल बिजनेस भी चाहिए, और हमारी तरफ से प्राइसेस कम होंगी, क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विस और डिलीवरी टाइम पे होगी, ये आपसे वादा है। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 4169012810, 4169012810 metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। अमरीका ईरान जंगबंदी में तौसी के माहदा हो गए हैं, अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है। उधर बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने एक और ख़बर दी है कि ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अखबार के मुताबिक तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में जुमेरात को उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें अहल खाना और सरकारी अदारों ने शिरकत की। दीगर ज़राए से तहाल इसकी तस्दीक बरतानवी अखबार की इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर इब्तदाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए थे। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की पूरी टीम, टोरंटो 360 टीवी की पूरी टीम और हमारे तमाम संस्थान की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का दूसरा दिन है, 3 दिन ईद चलती है और आज भी पाकिस्तान में तो खैर 3 दिन कमाल के मामलात रहते हैं, यहाँ भी मैंने देखा कि थोड़ी बहुत गहमा गहमी ईद के वाले से मिलजुल आना जाना जो है वो आज भी हमने देखा कि कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रूर हो रही थी। तो चलिए इस वक्त आपको ले चलेंगे आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ।

कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है, किस तरह मान ले? तुमने देखा नहीं, सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से

करते हुए पांव उठता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है असली सफर तो मुसाफिर की आंखों में फैला हुआ ख्वाब है, किस तरह मान ले। तुमने देखा नहीं उम्र के इस सराबे अजल खेज में ख्वाब तो ख्वाब है। हम खुली आंख से जो भी कुछ देखते हैं वो होता नहीं। रास्ते के लिए रास्ते की तरह आदमी अपने ख्वाबों को भी काट देते हैं, लेकिन सुलगता हुआ रास्ता फिर बिगड़ता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं।

0: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001। लाइसेंस नंबर 12374।
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
5: ये जनाब ब्रैम्पटन अप्लाइंसेस डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है, डॉट सी वेबसाइट है, और बोवेड जकूजी का इंटरसेक्शन है, और कमाल कमाल के आपको यहाँ पे डील्स मिलती हैं। हमारी कम्युनिटी की अप्लाइंसेस के बारे से देखें तो बहुत बड़ी ये शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम है, और स्पेशल डील्स आती हैं हमेशा ही। सुल्तान साहब जो हैं ख़ास तौर पर इनकी परिचय, फिर क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड बहुत ज़्यादा जब सेल्स होती हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सुल्तान राना साहब ब्रैम्पटन टी वी अप्लाइंसेस से हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक।
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत हमारे लिसनर्स को, आपके कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे लिसनर्स को ईद मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ईद है, खुशी के दिन है, और कोई ज़बरदस्त डील्स टीवी किससे शुरू करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी डील्स बताएं हमारे सुनने वालों के लिए।
6: जी भट्टी साहब, क्योंकि सैमसंग कंपनी जो है जी फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो सैमसंग ने ये गारंटी की है कि हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर में कुछ एक तो एक्सक्लूसिव डील्स हैं जो ब्रैम्पटन टीवी पे मिली हैं, जिसमें मैं एक डील देने जा रहा हूं बिग स्क्रीन टीवी में 85 इंच, ये भी क्यूएलईडी है, क्वांटम डॉट क्यूएलईडी सैमसंग का $2000 वाला, सिर्फ $1299 में।
5: जबरदस्त,
6: $700 आप 85 इंच पे सेव करेंगे जी। 55 इंच लेना है तो भी आपको $399 में मिलेगा। 65 इंच लेना है तो भी आपको $699 में मिलेगा। तो बिग स्क्रीन टीवीज को जब प्रमोट किया जा रहा है, प्राइस रिड्यूस करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो फिर एडवांटेज उन कस्टमर्स को भी है जिन्होंने 55 या 50 इंच टीवी लेने हैं या 65 इंच टीवी लेने हैं। जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। या हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी डील्स भी मिलेंगी, और फिर वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है वो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप 98 इंच का बिग स्क्रीन टीवी अगर सेलेक्ट करेंगे $3500 वाला, सिर्फ $1999 में मिलेगा। $1500 आप 98 इंच सैमसंग टीवी पे सेव करेंगे और ये 1999 भी सिक्स मंथ में आपने पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन $3,000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं जी, नो इंटरेस्ट, फ्री होम डिलीवरी। बोवेड एंड चिंकूजी पे है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
5: 905-450-2828 इनके रास्ते के नंबर है। अच्छा, अप्लायंसेस में बताइएगा कि उसमें भी कोई स्पेशल डील चल रही है?
6: बिल्कुल जी, और खास तौर पे भट्टी साहब, मैं उन कस्टमर्स को, उन लिसनर्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जिनको न्यू घर की क्लोजिंग जिनकी सर पे आ गई है, क्योंकि बहुत सारी क्लोजिंग्स हो रही हैं। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो आज हमारी डिलीवरियां स्केड्यूल हो रही हैं फॉर टुमारो, जो के वेलन स्टोनी क्रीक एरिया में है।
5: ओके,
6: उसके बाद हमारी डिलीवरी स्केड्यूल हो रही है जी किचनर कैम्ब्रिज एरिया में, फिर हमारी डिलीवरी स्केड्यूल हो रही है इस वक्त मार्कम, एजेक्स एंड पिकरिंग में। तो जो भी कस्टमर इस वक्त ये बंडल पैकेजेस ले रहे हैं, जिनके घरों की क्लोजिंग्स आ गई हैं या हो रही हैं, वो जरूर इन बंडल पैकेजेस का फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें कोई 10, 20 या 30 नहीं, 40% का डिस्काउंट है जो इस वक्त एक्सक्लूसिव ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, अगर थ्री पीस किचन बंडल की बात करें तो सिर्फ थ्री पीस किचन बंडल ही $5,000 वाला $29.99 में लेके $2,000 आप किचन में सेव कर लेंगे जी।
5: सही।
6: और उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ड्री में स्टैकेबल वाशर एंड ड्रायर या साइड बाई साइड वाशर एंड ड्रायर फ्रंट लोड लेना चाहते हैं $2,200 वाला, $1,499 में लेके $700 आप लॉन्ड्री पे सेव करेंगे और $2,000 किचन में सेव हुआ, तो फाइव होम अप्लायंसेस पे $2,700 की सेविंग होगी। फ्री होम डिलीवरी है, 905-450-2828 हमारा नंबर है जी। बिल्ट इन किचन लेना है अगर तो भी मिस नहीं करना, क्योंकि जब 40% का डिस्काउंट मिलेगा तो बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन बॉश कंपनी का जर्मन ब्रांड है, आपको $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में। और अगर आप 48 इंच या 42 इंच पैनल रेडी फ्रिज लेना चाहते हैं जो कि $13,000-$14,000-$14,000 के हैं, सिर्फ $9,900 में आपको 42 इंच पैनल रेडी फ्रिज। और अगर आप डिशवॉशर लेना चाहते हैं सिंगल पीस, कई दफा आपको डिशवॉशर की जरूरत पड़ती है स्टेनलेस स्टील की, तो वो आपको इस वक्त मैं $1,900 वाली $499 में सिंगल पीस डिशवॉशर भी मिलेगी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
5: 905-450-2828। और लॉन्ड्री का भी बता दीजिए जाते जाते कि उसमें कुछ स्पेशल डील्स हैं
6: जी। बिल्कुल भट्टी साहब, इसमें टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $1,099 में पेयर मिलेगा, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $2,500 वाला $1,799 में मिलेगा, जिसमें वॉशर भी स्टीम, ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ है, और अल्ट्रा फ्रेश वेंट सिस्टम विद अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी, जिसमें आप किंग साइज कंफर्टर या किंग साइज ब्लैंकेट यू कैन वॉश इन अ सिंगल लोड, ये भी आपको $2,500 वाला सिर्फ $1,699 में मिलेगा। तो $500 से लेके $800 तक लॉन्ड्री सेक्शन में गारंटी आप सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें और डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी वेबसाइट से ले सकते हैं। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
5: और कोई भी आप परचेज करते हैं वो पेमेंट आप 6 महीने में कर सकते हैं?
6: बिल्कुल जी, एनीथिंग। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी चाहिए 32 इंच से लेके 98 इंच तक, ऑल साइज ऑफ टीवी अवेलेबल है। सोनी ब्रेविया मॉडल चाहिए, सोनी ब्रेविया 5 या सोनी ब्रेविया 8 चाहिए, तब भी आपको लोएस्ट प्राइस के साथ साथ 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है। होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में भी कुछ भी परचेज करें आप 6 मंथ में पे करेंगे और हम फ्री डिलीवर करेंगे आपको और आपकी फुली मैन्युफैक्चरर्स वारंटी कवरेज होगी, वन ईयर पार्ट्स एंड लेबर इन होम सर्विस।
5: 905-450-2828 इनके रब्ते के नंबर है, ब्रैम्पटन अप्लाइंसेज डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है, 801 बोवे ड्राइव, बोवे चंकोजी का इंटरसेक्शन है, आप तशरीफ ले जाइए, वीकेंड पे जाके इस डील्स का फायदा उठा लीजिए। सुल्तान साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे बात
6: करेंगे। बहुत शुक्रिया,
5: इंशा नंबर नोट कीजिए 905-450-2828। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 24 घंटे, हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रेसिट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
7: You're listening to CMR FM 101.3।
8: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
9: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
8: न्यूज के हम तावन देते हैं आईकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आईकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500, इट्स 437-425-2500, आईकॉन इवेंट स्पेस।
10: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी